0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मैत्री मजूमदार का गायन, राग था भटियार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम चिंतन।
1: शुभ प्रभात। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता राजा राम मोहन रॉय के विचार। आलेख है संध्या रानी का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
2: राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उनका उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। यही कारण है कि उनको बहुत ही कम उम्र में अनेक भाषाओं का ज्ञान हो गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था। वहां कुछ सालों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। दरअसल उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। समाज में अंधविश्वास, छुआछूत, जातपात, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, महिलाओं में शिक्षा का अभाव और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने जमकर विरोध किया था। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका सबसे अहम रही है। उस समय समाज में ऐसी परंपरा थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी पति के साथ चिता पर जल जाती थी। उसको धर्म का नाम दिया जाता था, लेकिन इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता था। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी भी अपने पति के साथ चिता पर जल गई थी। इसका प्रभाव राजा राम मोहन राय के मन पर बहुत अधिक पड़ा और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि अब इस बुराई का अंत करके ही रहूंगा, ताकि ऐसी घटना किसी दूसरी महिला के साथ ना हो। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। इसका परिणाम ये हुआ कि अंत में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। राजा राम मोहन राय महिलाओं की शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी, तब तक वे अपने अधिकारों के बारे में नहीं समझेंगी, क्योंकि वे जानते थे कि समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब देश का हर नागरिक शिक्षित हो। इसके लिए उन्होंने अपने धन से कॉलेज खोला, जहां अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई होती थी। इसके अतिरिक्त वे चाहते थे कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही वे बहुविवाह के बहुत बड़े विरोधी थे। दरअसल उस समय समाज में पुरुष कई कई विवाह करते थे। सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, क्योंकि उस समय छुआछूत और अंधविश्वास का बोलबाला था। वे देश के पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता का साधन माना था। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी समर्थन किया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया था।

0: और धर्म को मानवता की सेवा का श्रेष्ठ साधन बताया था। उन्होंने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया था। उनका मानना था कि अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्ति पाने के लिए तर्क का सहारा लेना बेहद जरूरी है। राजा राम मोहन राय ने विदेशी उत्पादों के उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का समर्थन किया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके। उनके विचारों ने सिर्फ भारतीय समाज को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति भाग 49 बाल कांड।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया।

श्रोताओं, अभी आप संगीतिका कार्यक्रम में करण किशोर मिश्रा से भजन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 7:30:29 और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

श्रोताओं, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में मैं कुसुम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। कहते हैं दोस्तों, हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज़ खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत ही सुन सको। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में।

श्रोताओं, अभी आप कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज़ में सुन रहे थे फिल्म 1942 और लव स्टोरी से ये प्यारा सा गीत। दोस्तों, जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो, ये अंदाज है जीने का, ना रहो खुद उदास और ना किसी को उदास रहने दो। जी हाँ, संगीत में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि उदासी क्षण भर में चली जाती है, और इसीलिए हमें संगीत सुनना बहुत पसंद होता है।

श्रोताओं, अभी आप किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कल आज और कल से ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं सभी कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। दोस्तों, मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर में वो मोती हैं दोस्तों जिनसे इंसान की पहचान होती है। जी हाँ, हमारे बोल हमारे शब्द ही हैं ना जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। हमारे शब्द जो होते हैं वो सुकून भी दे जाते हैं और दूसरों को हर्ट भी कर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखिए कि आपके जो शब्द हैं, आपके जो बोल हैं, वो दूसरों को हीलिंग का ही काम करे, उससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे या दिल ना टूटे।

श्रोताओं, अभी आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्यारा सा गीत सुन रहे थे। फिल्म थी आप आए बाहर आए। दोस्तों, जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी खुद की पहचान बनाना है, किसी दूसरे का अनुसरण नहीं करना। सबके पथ सबके रास्ते अलग अलग हैं और हमें जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। किसी का अनुसरण नहीं करना, क्योंकि सबकी अपनी जीवन की दिशा और दशा होती है, उसी के मुताबिक हमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। फिल्म है, बाजीगर और कलाकार है पंकज उदास।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतो भरी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं ना, इंसान की जो सोच होती है ना दोस्तों, उसे बादशाह बना सकती है। ज़रूरी नहीं कि उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हों। ज़िंदगी में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि दुनिया उन्हें सलाम करती है। किसी इंसान की असली ताकत उसकी डिग्री नहीं, उसका आत्मविश्वास, मेहनत और सोच होती है। अगर सोच ऊँची हो तो छोटा इंसान भी बड़ी पहचान बना जाता है। जिसकी सोच बड़ी होती है दोस्तों, वो हर मुश्किल को अवसर बना लेता है। डिग्री सिर्फ कागज़ का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मविश्वास, कर्म और सकारात्मक सोच इंसान को असली बादशाह बनाते हैं। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि बड़ी सोच ही बड़ी मंजिल तक ले जाती है। सफलता पहले इंसान की सोच में जन्म लेती है दोस्तों, फिर उसकी मेहनत उसे हकीकत बनाती है। यदि हम अच्छा सोचेंगे, हमारी जो सोच होगी सकारात्मक होगी, तो ज़रूर हमें मंजिल मिलेगी। और जिस इंसान के पास सीखने की शक्ति होती है ना दोस्तों, हार न मानने का जज्बा और खुद पर विश्वास होता है, उसे दुनिया की कोई भी कमी नहीं रोक सकती।

दोस्तों, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा शिक्षक है तो वो है समय। समय इंसान को सब सिखा देता है, बड़ी बड़ी किताबें भी जो नहीं सिखा पाती। कभी खुशी देकर, कभी संघर्ष देकर, कभी इंतज़ार करवाकर समय हर पल इंसान को मजबूत और समझदार बनाता है। और दोस्तों, ये समय ही है जो हमें कह रहा है कि और नहीं, बस हमारे कार्यक्रम का समय यहीं संपन्न होने वाला है, ये भी इशारा दे रहा है। तो अपनी होस्ट और दोस्त कुसुम को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को है, कुछ ही देरों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुँच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75 लाख

0: 63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
6: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
7: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
6: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
0: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
8: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं

0: मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकान असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के अरकान असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तो लैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी ज़रई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इकदामात का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएज के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफबरदारी की तकरीब हफ्ते के रोज़ 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज़ से ही शुरू हो गईं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नबीन और मुतअद्दिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीरे आला और नायब वज़ीरे आला को भी तकरीब के लिए मदऊ किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएज की मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वज़ीर दाखला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4,000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। क्योंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकान असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिल का वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या ना देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरत हाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टियों ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जुमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का ये फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबरा एम के स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकान असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और कहा कि मौजूदा सियासी गैर यकीनी के हालात में गैर मुतवक्को फैसले भी सामने आ सकते हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजिमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर तो लैम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निज़ाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में कलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान तआवुन व इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों के सनतकार, सरमायाकार और पेशेवराना अफराद जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों से वाबस्ता हैं, एशिया के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइक के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमराह 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भी है। सदर तोलैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दिसा नाइके की दावत पर कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की क़यादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलम्बो में श्रीलंका वियतनाम तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, तहकीक और स्टार्टअप इको निज़ाम में तआवुन और इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब डॉक्टर वू हाई क्वान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इख्तराई इको निज़ाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तराई मराकज से मुतालिक तआवुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाती इश्तराक का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चेंबर के चेयरपर्सन डॉक्टर एम जे खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मियारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज़्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़राई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तराई सफ़र और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज़्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अबू जहबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर मुमलिकत और खसूसी एलची रीम अल हाशमी और फ्रांस की यूरोपी और खारिजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेन्स शामिल थे। वजारत खारिजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकत दारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाइहा अमल के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का ये कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ईरान जंग के खात्मे के लिए अब 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीका की तजवीज का जायजा ले रहा है। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची ने मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलात पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाजे है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने ये ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में ये कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौम फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तजारती उमूर से मुतालिक एक विफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीक़ाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तोसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तोसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और अवाम की यकजहती की अलामत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए BJP के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निज़ाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर।

समय हुआ है सुबह के 8:45 और 16 सेकंड। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे इंदिरा मुखर्जी से ठुमरी राग मिस्र भैरवी और राग दादरा राग मिस्र पीलू।

0: अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में सुन रहे थे इंदिरा मुखर्जी से ठुमरी राग मिश्र भैरवी और दादरा राग मिश्र पीलू। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: है महात्मा गांधी और उनका तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। आलेख और वाचन रामानुज सिंह सुंदरम।
1: विश्व के इतिहास में अनेक महापुरुषों ने अपने अपने अनेक महान कार्यों से अपने इतिहास रचे हैं। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने भी पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम, सत्याग्रह जैसे अनमोल विचार प्रदान किए हैं और शांति का अद्भुत मार्ग दिखाया है। उनके संपूर्ण जीवन का संदेश था प्रेम, शांति, अहिंसा, सद्भाव, समानता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन और स्वाभिमान। वे सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतीक थे। उनके विचार सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, प्रेम, साहस और आत्मिक नैतिक बल पर केंद्रित थे। उनकी सादगी और सत्याग्रह द्वारा अहिंसक विरोध उन्हें विश्व के अन्य नेताओं से अलग करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। उन्होंने आगे कहा कि उनके साहसी विचार युगों के लिए प्रेरणादायक हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। महात्मा गांधी का प्रभाव केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि तत्कालीन विश्व राजनीति पर उनका गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। उन्होंने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और हिंसा के विरुद्ध संघर्ष के लिए सत्याग्रह और अहिंसा का नया अनमोल विचार विश्व को दिया। औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों के लिए प्रेरणा। महात्मा गांधी का औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सत्याग्रह, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आंदोलनों ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विश्व के अनेक देशों की स्वतंत्रता के मार्ग प्रशस्त किए। उनके विचारों का प्रभाव वियतनाम में हो ची मिन्ह पर भी पड़ा। एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक देशों में मुक्ति संग्राम के आंदोलन जोर पकड़ने लगे। उन्होंने आत्मबल के द्वारा निहत्थे राष्ट्रों में जन जागरण के प्रयास किए और साबित किया कि एक निहत्था राष्ट्र भी अपने आत्मबल के द्वारा बड़े साम्राज्य को झुका सकता है। वैश्विक अहिंसा और शांति का संदेश। वैश्विक शांति आंदोलन युद्धों को समाप्त करने, हिंसा कम करने और विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। ये आंदोलन अहिंसक प्रदर्शनों, परमाणु निरस्त्रीकरण और गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से संघर्षों को सुलझाते हैं। इसमें नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं जो संघर्ष की रोकथाम, मध्यस्थता और परमाणु विरोधी अभियानों पर काम करते हैं। महात्मा गांधी के वैश्विक अहिंसा और शांति के संदेश से अहिंसक विरोध, शांति सभाएं, कूटनीति, जागरूकता अभियान और शांति प्रिय राजनेताओं के समर्थन से विश्व को एक नई दिशा मिली। आज ये आंदोलन न केवल युद्ध रोकते हैं बल्कि मानव अधिकारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जमीनी स्तर पर शांति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में ये आंदोलन जलवायु परिवर्तन, महामारी और सामाजिक असंतोष जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक अहिंसा और शांति के संदेशों से विश्व के देशों में विश्वास और अभय के वातावरण बने। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, जिसका प्रभाव बाद में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं पर पड़ा। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष 1912 से 1994 तक एक लंबा और हिंसक अहिंसक मिश्रित आंदोलन था, जिसका नेतृत्व नेल्सन मंडेला और ANC ने किया। गौर शासकों की नस्लीय भेदभाव की नीतियों के विरुद्ध जनता ने सत्याग्रह,

0: हड़ताल सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से 1994 में लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध खूब संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें काफ़ी वक्त जेल में व्यतीत करने पड़े। स्मरणीय है कि नेशनल पार्टी की सरकार ने आधिकारिक तौर पर काले और गोरे लोगों को अलग करने के लिए कठोर कानून बनाए थे, जिसमें सार्वजनिक स्थानों को अलग करना, मिश्रित विवाह पर रोक और काले लोगों को गरीब इलाकों में रहने के लिए मजबूर करना शामिल था। अमेरिका में अधिकार आंदोलन का प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के विचारों से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने गांधी जी की तकनीकों को अपनाकर नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया। यह आंदोलन मुख्य रूप से 1950 और 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक संघर्ष था। इसका उद्देश्य संस्थागत नस्लवाद, कानूनी अलगाव, भेदभाव और मताधिकार से वंचित करने जैसी कुरीतियों को समाप्त कर अश्वेत नागरिकों के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन ने अमेरिका को बदल दिया। आंदोलन के कारण शिक्षा में कानूनी अलगाव को समाप्त करके सार्वजनिक स्कूलों का पुनर्गठन किया गया और दक्षिणी अश्वेतों को भी मताधिकार प्राप्त हुए। साम्राज्यवाद पर नैतिक प्रभाव। गांधी जी का आंदोलन अहिंसक, जन केंद्रित और नैतिक संघर्ष था। उन्होंने सत्याग्रह, सत्य की शक्ति और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जो सीधे तौर पर साम्राज्य की सत्ता और शोषणकारी नीतियों के खिलाफ थे। भारत में 1930 में डांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक जन आंदोलनों से अंग्रेजी साम्राज्य की नैतिकता पर गंभीर सवाल उठे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की मांग मजबूत हुई। यहाँ तक कि ब्रिटिश जनता के मन में भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति पैदा हुई। महात्मा गांधी ने राजनीति की दिशा बदली। उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ने के सार्थक कार्य किए। उनका मानना था कि धर्म के बिना राजनीति विनाशकारी होती है और धर्म के साथ राजनीति सृजनात्मक होती है। गांधी जी के विचारों के गहरे प्रभाव पश्चिमी देशों के विचारकों और दार्शनिकों पर पड़े। वे उन्हें आध्यात्मिक नायक के रूप में देखने लगे। दुनिया प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों से जूझ रही थी। आपस में अविश्वास का माहौल था, भय का वातावरण बना हुआ था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने नैतिक राजनीति का माहौल पैदा कर सकारात्मक संदेश दिया। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रभाव अप्रतिम है। समूचे इतिहास में राजनीतिक क्षेत्र में मनुष्य के संबंधों में इतनी शिद्दत के साथ सत्य, अहिंसा, न्याय, मनुष्यों के भाईचारे जैसे बुनियादी नैतिक मूल्यों को लागू करने अथवा उन्हें मान्यता दिलाने वाला कोई और उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा के माध्यम से विश्व राजनीति को एक नई राह दिखाई। न्याय और नैतिकता के आधार पर राजनीतिक सत्ता की वकालत की। सन 1947-48 तक महात्मा गांधी एक भारतीय नेता से बढ़कर एक वैश्विक नैतिक मार्गदर्शक बन चुके थे। उनके विचारों की गूंज से विश्व के अनेक राष्ट्रों में नवजागरण के स्वर स्पंदित हुए। विश्व की राजनीति में एक नवीन सार्थक आयाम निश्चित हुए और मानवता के प्रति सत्ता और राजनीति में नए दृष्टिकोण उदय हुए।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी और उनका तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। आलेख और वाचन

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा अभी आपने सुनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

तेरी मेरी एक जिंदड़ी, हुणे असी इस फिल्म दा गीत सुनिया। इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक दा समां हुण खत्म हुंदा है। असी उम्मीद करदे हां तुहानू साडा अज दा प्रोग्राम पसंद आया होवेगा। हुण रविंदर नू इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीपन दास गुप्ता, कोलकाता।
1: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार

0: को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Subhadra Ramachandran. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The first BJP government in West Bengal will take oath tomorrow, the 25th of Boishak, at the Brigade Parade Ground. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central leaders may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number of 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the

श्रोताओं, अगर आप भी हमें मेल करना चाहते हैं और अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं तो आप हमें ipradiodelhi@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। देखते हैं अगली फरमाइश किसकी आई है। अगली फरमाइश आई है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी की। ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म गाइड का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चनाताई गुंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडाने। अगली फरमाइश आई है कवर कॉलोनी बड़वाहा से, बड़वाहा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली की। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु

आइए अब सुनते हैं फिल्म मेरे हजूर फिल्म का गीत आप सब श्रोताओं के पसंद पर। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन। अगली फरमाइश आई है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। अगली फरमाइश आई है पूजा अभय सिंह, किशन सिंह, आशा राजौरिया, अजय ज्योति राजौरिया, मंथन नारन, शिवा राजौरिया और मांगी नगर, जय अभय ससोती। अहमदाबाद से इन्होंने हमें मेल किया है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रितिका और बलबीर सिंह। आइए सुनते हैं इन सब श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

0: रुख से जरा नकाब उठा दो।
1: श्रोताओं, बहुत से श्रोताओं की हमसे शिकायत रहती है कि हम उनका मेल शामिल नहीं करते हैं। वैसा ही एक मैसेज आया है मोहम्मद सईद अब्बासी जी का। इन्होंने लिखा है कि सिस्टर जी, अगर हमारा मेल नज़र आए तो शामिल कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब्बासी जी, हमें भी आपसे शिकायत है कि आपका मेल हमने सबसे पहले शामिल किया था, लेकिन आपने कार्यक्रम ध्यान से नहीं सुना। अगला मैसेज आया है फारूक अली खान का। ये लिख रहे हैं, आदाब, हम भी आपको सुन रहे थे, किसी भी गीत में शामिल करें जी, शुक्रिया। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा जी, हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। अगला मैसेज आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार का। अब्बासी जी बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन इनका हमने पहले ही नाम शामिल कर लिया था और गीत भी। अगला मैसेज आया है रामेश्वर का। ये लिख रहे हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन मीना जी को सप्रेम नमस्ते, आपको भी हमारा नमस्ते। हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, हमारा भी मेल शामिल कर लें जी। आपका मेल हमने शामिल कर लिया है। और ये हमें लिख रहे हैं, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार। अगला मेल आया है बुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन का। अगला मेल हम शामिल कर रहे हैं पूनम गनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित का। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आए दिन बहार के से, जिसे गाया है आशा भोसले ने। पसंद किया है आप सब श्रोताओं ने। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीषा पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान। डांगरी से बाबू राम और जयपाल। खलीफों की बाबड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और अगली फरमाइश आई है मैसेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया एक ही बार मैसेज पढ़े ताकि सभी श्रोताओं के नाम हम पढ़ सके। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक। चलिए आप सब श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो आपको अभी सुनाएंगे। हम पहले मेल देखते हैं कि किन किन का मेल आ चुका है। ग्राम पजौनिया, जिला जलौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, ये लिख रहे हैं कि मीना चौहान जी, बार बार मैसेज करता हूँ लेकिन एक बार वालों को ज़्यादा तवज्जुब नहीं दी जाती, आपको बड़े लगन से सुनता हूँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बड़े लगन से सुनते हैं लेकिन बार बार जो मैसेजेस करते हैं उन लोगों की वजह से कई लोगों के मैसेज वाकई ही शामिल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और अगला जो मैसेज आया है वो लिख रहे हैं कि वो समय दूर नहीं जब ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, कुछ लोगों ने अपना अधिकार जमा रखा है। पहले आकाशवाणी सबकी संपत्ति हुआ करती थी। राजू अग्रवाल, केशव पंकज, निर्मला चौधरी, वास हिसार, हरियाणा से। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, जिनके मैसेजेस सामने आते हैं हम लोग पढ़ते हैं। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से फिर से ये मैसेज रिपीट हो रहा है। अब आप ही बताइए कि हम कैसे किसी का मैसेज पढ़ लें, क्योंकि मैसेज तो बार बार ही पढ़े जाते हैं ना। बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, नमस्कार बहन जी, हार्दिक अभिनंदन, हमें भी शामिल कर लीजिए बहना जी, हमने आपको शामिल कर लिया है, ये लिख रहे हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, जवाहर नगर उदयपुर, देखिए फिर से रिपीट हो रहे हैं मैसेजेस, चौधरी वास से राजू अग्रवाल, प्रियांशी चौधरी और वाश। अगली फरमाइश आई है दतौरी तैलीवाल उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की, दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी की, वार्ड नंबर एक पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी का, ये सुनना चाह रही हैं फिल्म जानी दुश्मन का गीत जी। आपको जानी दुश्मन का गीत अभी सुनाएंगे। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया।

अगली मेल आई है राजू अग्रवाल, केशव चरणदास चौधरी वास की। ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम खराब करने वालों के बार बार नाम बोले जाते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपका पहले भी नाम पढ़ लिया है और अब भी मैंने आपका नाम पढ़ लिया है। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया, जलंधर से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि ये दोस्ती फिल्म का गाना सुनना चाह रहे हैं, तो आपको दोस्ती फिल्म का गाना हम अभी सुनाएंगे। अगला मैसेज आया है पाडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे का। अगला मैसेज आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां का, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। फिर से रिपीट मैसेजेस, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल मल्होत्रा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमें मैसेज कर रहे हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु, ये भी फिर से मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। हार्दिक नमस्कार अभिनंदन बहन जी, आप हमारी ईमेल को बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमारा ईमेल भी शामिल करें, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये लिख रहे हैं गांव चौधरी वास हरियाणा से मांगे राम स्तौर, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। मुझे उम्मीद है कि आपकी शिकायत दूर हो चुकी होगी। अगली फरमाइश आई है, नमस्कार जी, हम फरमाइश नहीं भेज रहे हैं क्योंकि गोल्ड के पुराने श्रोताओं की ना तो फरमाइश पूरी होती है और ना ही नाम लिए जाते हैं। ये लिख रहे हैं प्रकाश गोगिया जी। मैडम जी नमस्कार, ज़रा एक नज़र हमारे मैसेज पर भी डाल दें, इनायत होगी। ये लिख रहे हैं हजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया, राजू अग्रवाल, केशव, निर्मल, प्रीति चौधरी वास हिसार से। कुछ पागल साथी सभी जगह प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, इसी प्रोग्राम में उनकी आदत बिगड़ चुकी है। अगला मैसेज हम ले रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। ये इन्होंने हमें मैसेज किया है शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, और भी इनके साथ साथी हैं पीयूष सिक्का, गोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का जी। तो चलिए सुनते हैं आप सब श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख की। अगली फरमाइश आई है रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान की। ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म पाकीज़ा का गीत। हम आपको पाकीज़ा का गीत ज़रूर सुनवाएंगे। और अगला जो मैसेज आया है वो लिख रहे हैं कि प्यारी बहना आदरणीय प्रिय प्रसारक दीदी जी मीना चौहान जी, आपको हमारा प्यार भरा आदाब जी, आपको भी आदाब। किसी भी सदाबहार नगमे में हमारा नाम शामिल कर दें जी ज़रूर। ये मैसेज हमें किया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। अगला मैसेज आया है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े का। हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं सुल्तान सिंह तरार, कपिल देव तरार, हिमानी झकार। अगला मैसेज हमें लिखा है मीना जी नमस्कार, चौधरी वास हिसार से राजू अग्रवाल, केशव पंकज ने। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशब अब्बासी। मैडम जी हमारा भी मेल शामिल कर दीजिए। कनॉट प्लेस दिल्ली से लिख रहे हैं माहिरा मलिक, हिबा, आयसा, जोया, जैनब, मरियम, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनीर सिंह और शुभदीप सिंह का। ये मैसेज आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से। अगला मैसेज आया है आर्यनगर कोलका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल का। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। और चलिए आप सब श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना ने भी हमें मेल किया है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीपन दासगुप्ता, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई FIR कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य

0: मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों की दिल की धड़कन रहा है।
1: आकाशवाणी भारत की धड़कन था।
0: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Rajendra Prasad in 1951. The Prime Minister today wrote an article in the National Daily Paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath as a symbol of India's civilizational strength and resilience. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said that the Modular Range Extension Kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. It is aimed at enhancing the lethality and accuracy of low-cost weapon to neutralized ground-based targets. The Enforcement Directorate has registered a case against Games Craft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to the suicide committed by the victims. The directorate conducted search operations at 17 locations across Karnataka and the National Capital Region yesterday, linked to the Games Craft Group, its founders and employees. BJP Central Observer for West Bengal and the Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into

महीने पिपली पिंगा सैया झूटने आईया मिठे मिठे बोल बोल के दिल नू चिणगा लाइया झूटे झूट गईया सब करनू प्यार दिया तरहाइया झूटे झूट गईया सब करनू प्यार दिया तरहाइया ओ जद झूटा झूटन दी आई मैं ततड़ी दी वारी के टुट गई तड़क।

इसके साथ ही सबरस कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 11:30 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम सुरमंजरी का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सलीम कुमार का सितार वादन। ये पेश कर रहे हैं राग गुजरी तोड़ी।

0: सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे सलीम कुमार का सितार पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्त, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन टीएआरए हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएआरए हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर

0: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारादिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first President Rajendra Prasad in 1951. The Prime Minister today wrote an article in a national daily paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath a symbol of India's civilizational strength and resilience. He said the temple's journey represents a movement from destruction to creation and shows how faith and culture can survive even after repeated attacks and hardships. The Prime Minister remembered the role of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, in rebuilding the temple after independence. Mr. Modi said Patel had strongly believed that the reconstruction of Somnath was a national duty. The West Bengal BJP Legislature Party will meet in Kolkata this afternoon to elect its leader. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah will be present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. The swearing-in ceremony of West Bengal's first BJP government will be held at Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial. The Enforcement Directorate has registered a case against Games Craft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs

घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड के 100.1 MHz पर, और आप हमें सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर।

दोस्तों बात करते हैं आकाशवाणी के खूबसूरत सफर की, यानी कि 90 वर्ष पूरा होने की सफर की। जून 2026 आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है और दोस्तों ये एक मील का पत्थर है। आज इस उपलक्ष्य में 8 मई को एक मैराथन का आयोजन किया गया और ये मैराथन दिल्ली के आकाशवाणी के परिसर से आरंभ हुई। इसमें आकाशवाणी के वरिष्ठ अफसरों सहित कई युवाओं और स्टाफ ने भी अपना भाग लिया और हिस्सा लिया। अत्यंत उत्साह के साथ मैराथन संपन्न हुई। तो हम आपके लिए आकाशवाणी से जुड़ी कई जानकारियां रोज लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ यानी राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण आकाशवाणी से।

अभी आप सुन रही थी बातों बातों फिल्म से की, जिसे गाया था लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। और दोस्तों, आज बहुत सारे दिवस हैं। पहले बात करते हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस की। आज के दिन हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, ताकि इस अनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, रोकथाम को बढ़ावा दिया जा सके और इससे पीड़ित लोगों के लिए यानी समान देखभाल और कार्रवाई की जा सके। इस साल की थीम है अब और छिपा।

0: अनदेखे लोगों की खोज, अनदेखे लोगों का समर्थन, शीघ्र निदान में सुधार और उपेक्षित रोगियों की सहायता पर केंद्रित है। ये अभियान प्रारंभिक जांच और निदान की कमी को दूर करता है। तो आइए सुनते हैं आज एक विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर डॉक्टर रोहित कपूर से रश्मि कुकरेती की बातचीत।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, ये कार्यक्रम है घर आंगन। मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती और आज है 8 मई और आज का दिन एक विशेष दिन है। आज है विश्व थैलेसीमिया दिवस और हम आपको बता दें कि थैलेसीमिया खून से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है और ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचती है। तो ये सब बातें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर रोहित कपूर। डॉक्टर रोहित कपूर बच्चों के रक्त संबंधी कैंसर विशेषज्ञ हैं, यानी कि पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर रोहित कपूर आपका FM गोल्ड के स्टूडियो में।
2: नमस्कार। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है। इसमें बेसिकली बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्लड जो होता है वो बनता नहीं है, तो इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि कम होता है बच्चों में। सो ऐसे में बच्चों को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। सो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर रक्त ना बनने की वजह से जो बच्चे होते हैं उजले उजले लगते हैं, कमजोर होते हैं, खाना पीना में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। सो बच्चों की तीली बढ़ने लगती है क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो वहाँ पे एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस करने लगती हैं। सो जो थैलेसीमिया है एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कुछ कम्युनिटीज के अंदर कॉमन है, जिनके अंदर जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है वो सही से उत्पन्न नहीं होता है और बच्चे कमजोर दिखते हैं और जनरली 6 मंथ्स की एज में डिटेक्ट होता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या कारण होते हैं ये थैलेसीमिया जब बच्चों को हो जाता है, और अगर बच्चे को ये थैलेसीमिया है तो माँ बाप को कब पता चलता है, क्या लक्षण उनको दिखाई देते हैं बच्चों में?
2: जो थैलेसीमिया है बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इंडिया की सर्टेन कम्युनिटीज है जिसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉमन है, जैसे कि लोहाना, सिंधीज, पंजाबीज, भानुशालीज, ये सारी कम्युनिटीज के अंदर जनरली जीन जो होता है हीमोग्लोबिन का कैरियर्स होते हैं, जिनके अंदर अगर शादी होती है सेम जेनेटिक कैरियर्स में तो ये डिसीज उत्पन्न हो सकती है, जिसे थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। जो थैलेसीमिया मेजर होता है उसकी जो उत्पन्न होता है वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है, जिसमें बीटा ग्लोबिन जीन या अल्फा ग्लोबिन जीन की म्यूटेशन हो सकती है। सो अब जो थैलेसीमिया है उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है बर्थ पे तो बिल्कुल ठीक लगता है, पर इवेंचुअली जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो बहुत कमजोर सा होता है, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं लेता और बहुत पेल सा लगता है बच्चा, उसका स्प्लीन बढ़ने लगता है, बहुत इरिटेबल होता है, काफी लेथार्जिक हो जाता है बच्चा, और जैसे कि कहते हैं रेगुलर बच्चों की तरह उसकी ग्रोथ नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया मेजर की आपने बात की, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर में क्या फर्क होता है?
2: थैलेसीमिया मेजर होता है उसके अंदर जो दोनों जीन्स होते हैं जो मदर और फादर से आए हुए होते हैं वो दोनों म्यूटेटेड होते हैं, जो बीटा ग्लोबिन चेन जीन होता है, और थैलेसीमिया माइनर जिसे थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं उसमें जनरली एक जीन नॉर्मल होता है। इन लोगों का जो हीमोग्लोबिन होता है थोड़ा नॉर्मल हीमोग्लोबिन से कम होता है, बट ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं और इनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। इनके बीच में एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी होता है, बट उसके अंदर जनरली हम हाइड्रोक्सीयूरिया नाम की दवाई देते हैं, जब वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाते हैं देन वी ट्रीट देम एज थैलेसीमिया मेजर ओनली। और एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया जनरली इतनी इंपॉर्टेंट डिसीज नहीं है और इसके अंदर हमें इन यूट्रो एक्चुअली बच्चों की डेथ हो जाती है अगर 4 जीन म्यूटेटेड हो, जनरली माइनर अल्फा थैलेसीमिया नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं।
1: यानी कि थैलेसीमिया माइनर दवाइयों से भी ठीक हो जाता है।
2: यस।
1: थैलेसीमिया मेजर में आप बता रहे हैं कि बार बार खून देने की जरूरत पड़ती है, पर उसमें भी जीन थेरेपी अगर की जाए या स्टेम सेल से अगर उसकी इलाज किया तो उसमें भी अपार संभावनाएं हैं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये कब तक पता लगने की संभावना होती है कि इस प्रकार के जो लक्षण समझ में आने लग जाते हैं?
2: जो इस तरह के लक्षण है अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज में पता चलने लगते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जब बच्चा जिसके साथ पैदा होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है जैसे जैसे कम होता है और एडल्ट हीमोग्लोबिन आता है तो ये डिसीज दिखने लगती है, क्योंकि एडल्ट हीमोग्लोबिन की चेंज को डेवलप होने में इस कंडीशन में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उन्हें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे ईजिली पता चल सकता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं। कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी इन बच्चों को होता है डेवलप, तो इन दो कंडीशंस को हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वर्सेस थैलेसीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें पता चल सकती है।
1: अगर आपके पास कोई माँ बाप इस प्रकार के बच्चे साथ आते हैं जिसमें कि उन्हें लग रहा है कि ये सारे लक्षण हैं, तो आप लोगों का जो इलाज रहता है या जो सलाह रहती है क्या रहती है?
2: जो थैलेसीमिया है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सारे ऑर्गन सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका मेंटल ग्रोथ, उसका फिजिकल ग्रोथ, उसका जो जनरल डेवलपमेंट होता है, जैसे माइलस्टोन होते हैं, जैसे बच्चे जब भागते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, तो वो थोड़ा डिले होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है बच्चे को, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे में हम जो मदर फादर को समझाते हैं कि जो बच्चा है उसे हीमोग्लोबिन जो बढ़ नहीं रहा है उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है, एवरी 28 डेज बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है जिससे उनकी ग्रोथ सही हो, क्योंकि उनको ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन डिलीवरी होगी तभी उनकी ग्रोथ होगी, तभी उनका जो इरिटेबिलिटी होगी वो कम होगी, उनकी जो लेथार्जी होगी कम होगी, जो पैलर है, जो बच्चे लेथार्जिक है वो इम्प्रूवमेंट होगा उनके क्लिनिकल स्टेटस में।
1: ऐसी दवाइयां नहीं है कि जो है वो खून चढ़ाने की जरूरत ना पड़े, केवल दवाइयों से ही सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता?
2: कुछ दवाइयां डेवलप हुई हैं जो कि बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर यूज करी गई है, बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज ही हैं। सो वो दवाई दी जाती है बच्चे को और देखा जाता है कितना हीमोग्लोबिन उसका बढ़ रहा है आफ्टर यू नो सर्टेन डोजेस। अगर उसे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता तो उसकी डोज इंक्रीज करके देखते हैं कि हायर डोज पे हीमोग्लोबिन बढ़ता है या नहीं। जस्ट बेसिकली ट्रांसफ्यूजन की नीड जो होती है वो दवाई कम नहीं करती, पर ट्रांसफ्यूजन की जो ड्यूरेशन होती है वो बढ़ा देती है। मतलब अगर 4 हफ्ते में ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है तो वो 8 हफ्ते में मिलने लगेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन लंबे समय तक सर्कुलेशन में रहेगा और मेंटेन रहेगा उस दवाई से। बट इसका जो इलाज है वो क्यूरेटिव इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बाहर जो इलाज किया जाता है वो जीन थेरेपी है। वो एक जो जीन खराब है उस जीन को इंट्रोड्यूस बच्चे की उसमें सिस्टम में कराया जाता है जिससे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगे। और ट्रांसप्लांट में ये होता है कि जो हेल्दी बंदा है उसकी स्टेम सेल्स लेकर हम बच्चे के अंदर डालते हैं जिससे कि वो नया ब्लड शुरू से बनाए। इसे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। और एक और इलाज करा जा सकता है, जो लोग ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर पाते तो उन्हें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने पड़ते हैं और आयरन कम करने की दवाइयां साथ के साथ उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन ओवरलोड होने की समस्या होती है और उससे ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
1: आप कह रहे हैं कि खून चढ़ाना पड़ता है लेकिन इलाज भी आप बता रहे हैं, तो क्या इसका इलाज मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब किया जाता है कि जब तक वो थोड़ा सा ताकत तो हो शरीर में? कब तक इंतजार करना पड़ता है माँ बाप को कि हमारा बच्चा एक सामान्य जीवन बिता सके?
2: जो बच्चा है एक्चुअली बिल्कुल अपना सामान्य जीवन बिता सकता है। इसका इलाज अगर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से करें तो एज अर्ली पॉसिबल हो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा उतने ज्यादा एंटीबॉडीज ब्लड के अगेंस्ट बनेंगे, उतना ज्यादा आयरन ओवरलोड होगा और उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस, लिवर की कॉम्प्लिकेशंस, एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस जिसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, हाइट छोटी रहती है बच्चों की, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मुंह के फेस के चेंजेस, ये सारे चेंजेस डेवलप होने लगते हैं। उससे पहले अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे और स्टेम सेल्स देकर क्योर करेंगे और फुल मैच डोनर अगर हमें मिलता है तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस।
1: तो ये फुल मैच डोनर कौन हो सकता है?
2: जो फुल मैच डोनर होता है वो जनरली मैच सिबलिंग डोनर मतलब भाई या बहन होता है, और डीएनए हमें एचएलए टाइपिंग करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, मतलब हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे हम मैच करते हैं कि फुल 12x12 मैच हो, जो अगर डोनर है तो उसके सबसे बेस्ट आउटकम्स हैं। जो मदर एंड फादर हैं जनरली हाफ मैच होते हैं, मतलब जो बच्चा है 50% मदर से जीन्स आते हैं, 50% फादर से जीन्स आते हैं, तो इसे कहते हैं हैप्लो आइडेंटिकल हाफ मैच। तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी करे जा सकते हैं, लीस्ट टॉक्सिसिटी में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और आउटकम्स भी अच्छे हैं, बट एज अर्ली एज 7 ईयर्स ऑफ एज के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे तो बेस्ट आउटकम्स हैं। 7 साल के ऊपर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं,
1: क्योंकि भाई बहन हो तो सबसे अच्छा।
2: यस, अगर भाई बहन हो तो सबसे अच्छा, अदरवाइज हम जो डीएनए की जो रिपोर्ट होती है अपनी रजिस्ट्री में डालते हैं जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर उस डीएनए के जो पोटेंशियल जो मैच अनरिलेटेड डोनर हो अगर भाई बहन नहीं है तो उसको हम स्टेम सेल्स को मंगाकर हम बच्चे को दे सकें, ये भी पॉसिबल है।
1: थैलेसीमिया बीमारी ना हो ये क्या रोका जा सकता है? क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं अगर ये पहचान में आ जाए कि वंश में कभी ऐसी बीमारी हुई है, जेनेटिकली ऐसी समस्या कभी रही है या नहीं भी हो, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए डॉक्टर साहब?
2: जो थैलेसीमिया है बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इसमें जो मेनली जो थैलेसीमिया ट्रेट होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन A2 की कंसंट्रेशन जो होती है 3.5 से ऊपर होती है और वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो इजीली डिटेक्ट हो सकता है कि ये बंदा थैलेसीमिक ट्रेट है। तो ये एक बेसिक HPLC टेस्ट से भी हो सकती है, पर अगर किसी की फैमिली में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है तो हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए देखने के लिए किसी तरीके का थैलेसीमिया सिंड्रोम तो नहीं है, जिससे कि बच्चों के अंदर जो थैलेसीमिया है वो डेवलप ना हो। और क्लोज निट मैरिजेस जैसे कि कॉन्सेंगनस मैरिजेस होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि दो जीन जिनके अंदर म्यूटेशन है वो क्लस्टर हो सकते हैं और थैलेसीमिया मेजर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है ऐसे केसेस में। सो जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग, कॉन्सैंगनस मैरिज, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि यूज़ करे जा सकते हैं देखने के लिए कि फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ थैलेसीमिया ना हो। और अब नई चीज़ें उत्पन्न हुई हैं जैसे कि

0: एमनियोसेंटेसिस, क्रोनिक विलर सैम्पलिंग, अगर लगता है कि बच्चे को थैलेसीमिया होने के चांसेस हैं तो जो एमनियोसेंटेसिस एक जांच करी जा सकती है जब बच्चा बॉर्न भी नहीं हो, और चेक करा सकते कि उसे थैलेसीमिया सिंड्रोम है या नहीं, एंड अगर नहीं होता तो प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यूड, अदरवाइज यू नो समटाइम्स इफ इट इज थैलेसीमिया मेजर बिकॉज जो चाइल्ड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोलॉन्ग लाइफ चाहिए होंगे उसे, प्री मैरिटल काउंसलिंग बड़ी नेसेसरी होती है चेक करने के लिए कि थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है मदर और फादर, जो कि थैलेसीमिया मेजर सिंड्रोम को दे कैन गिव राइज टू द चाइल्ड।
1: यानी कि इस प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत है, अगर काउंसलिंग हो जाए तो ये बीमारी से बचा जा सकता है।
0: प्रिवेंटिव है।
1: डॉक्टर साहब, क्या संदेश देंगे ऐसे परिवारों को जिसमें इस प्रकार का जो थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है?
0: जो थैलेसीमिया से ग्रसित फैमिलीज हैं और जिनके बच्चे थैलेसीमिक्स हैं, उनको सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि अगर ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी के लिए उनके पास फंड्स नहीं है तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो दवाई होती है जिससे आयरन कम होता है वो वाली दवाइयाँ रेगुलरली लें, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें, कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ती है, वाइटामिन डी रिच डाइट लेनी पड़ती है, आयरन रिच प्रोडक्ट्स को कम करना पड़ता है क्योंकि ब्लड से ही आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो वाइटामिन सी जो होता है उससे आयरन कम होता है बॉडी में, तो ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए और उनको अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए, साथ के साथ रेगुलर जांचें करानी चाहिए जैसे कि रेगुलर हाइट वेट मेजरमेंट, 7 साल के बाद एको कराना पड़ता है कि हार्ट का कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लिवर का MRI आयरन ओवरलोड देखने के लिए, कार्डिक MRI देखने के लिए कि T2 स्टार MRI देखने के लिए कि हार्ट में ओवरलोड तो नहीं रहा आयरन का, 10 साल की उम्र के बाद एंडोक्राइन वर्कअप कराना पड़ेगा क्योंकि वहीं से हाइट और वेट और एंडोक्राइन डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर भी आयरन डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे हाइट वेट थायराइड पैराथायराइड नाम के जो हॉर्मोन होते हैं उनकी टेस्टिंग करनी पड़ती, बोन मिनरल डेंसिटी की टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो रेगुलरली हर ईयरली कराएं, वायरल मार्कर्स हर ईयरली चेक करना होता है, हाइट और वेट रिलेटेड की रेगुलर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही वो रेगुलर चेक करना पड़ता है, 16 ईयर्स की एज पे पैराथायराइड हार्मोन की टेस्टिंग करनी पड़ती है और साथ के साथ ग्रोथ चार्ट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और ये भी चेक करना पड़ता है कि रेगुलरली T2 स्टार MRI हो रहा है या नहीं हो रहा, जिससे कि
1: यानी कि
0: आयरन ओवरलोड
1: लगातार डॉक्टर के अपने परामर्श लेते रहें, वो जैसा जैसा कहें उस प्रकार की जांचें करें, उस प्रकार का भोजन लें। तो डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि एक क्या सामान्य जीवन थैलेसीमिया से जो पीड़ित हैं वो बिता सकते हैं?
0: बिल्कुल, जो थैलेसीमिक बच्चे हैं वो बिल्कुल सामान्य जीवन बिता सकते हैं, उन्हें अपनी दवाइयों के साथ बहुत रेगुलर रहना पड़ेगा, उनको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, उनको एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, जो आयरन कंटेनिंग फूड्स हैं उनको कम करना पड़ेगा, मच विटामिन डी, कैल्शियम, जिससे कि बोन उनकी ठीक रहे क्योंकि फेशियल डिफॉर्मिटीज इसके अंदर कॉमन होती हैं, तो विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रेगुलर एंडोक्राइन वर्कअप, एंडोक्राइन टेस्टिंग, हाइट वेट जो डेवलपमेंट होता है जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट होता है उनको मद्देनजर रखकर देखना पड़ेगा कि उनका आयरन चिलेशन अगर जितना बेटर होगा, जितना कंप्लायंट होगा मेडिसिन का, उतनी आयरन ओवरलोडिंग कम होगी और उतना हेल्दी लाइफस्टाइल वो कर पाएंगे। अभी भी भारत के अंदर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक अपकमिंग फील्ड है और आउटकम्स तो इसके अच्छे हैं, बट स्टिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक स्ट्रेटेजी है टू मेंटेन एडिक्वेट ग्रोथ, दिस इज व्हाट वी वांट कि जिससे ऑक्सीजन रेगुलरली पेशेंट को मिलते रहे, उनकी ग्रोथ ठीक रहे।
1: बहुत बढ़िया। डॉक्टर रोहित कपूर, आप हमारे स्टूडियो में आए, गोल्ड के स्टूडियो में, और विश्व थैलेसीमिया दिवस यानी 8 मई का जो ये दिवस है इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे गोल्ड में बुलाया गया और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हमने चर्चा करी है और बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी।

और दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज हमारा खास विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और अब बात करते हैं कुछ विश्व रेड क्रॉस दिवस की। विश्व रेड क्रॉस का जो संघर्ष हो आपदाओं और चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने वाले स्वयं सेवकों और कर्मचारियों को सम्मानित करने पर केंद्रित है। आज के दिन मनाए जाने वाला ये दिवस करुणा, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा की रक्षा पर बल देता है। इस साल की थीम है मानवता को जीवित रखना है। जी सुनिए बसेरा फिल्म से गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

और अब बात करते हैं कुछ आज के दिवस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित ये अभियान सरकारों और गैर सरकारी संगठनों निगमों के साथ आता है ताकि सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें कम किया जा सके। इस बार की थीम है एक सुरक्षा बयान दे, सुरक्षित पैदल चलने, साइकिल चलाने, जीवन के लिए सड़कें और गति धीमी करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हर दिन हमारे पास किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जाने के कारण होते हैं, चाहे हम काम, स्कूल या मनोरंजन के लिए घर से निकलें। हालांकि सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वहां पहुंचना। गति धीमी करके हम अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाते हैं। जब दुनिया इस अभियान को अपनाएगी तो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और हम बहुत से लोगों की जिंदगी को बचा पाएंगे। खुददार फिल्म से गीत लता किशोर की आवाज में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। बुजुर्गों के संस्कार जीवन का आधार, बड़ों के संस्कार यानी बुजुर्गों से मिले संस्कार ही जीवन का आधार होते हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से हमें सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान मिलता है, जो एक सफल जीवन जीने के लिए जरूरी है। बुजुर्गों की सीख हमें एकता और सम्मान के महत्व को भी सिखाती है और बुजुर्गों से हमें संस्कार, अच्छे आचरण, नैतिक मूल्यों और जीवन जीने की कला का ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान हमें सही और गलत के बीच अंतर करने और अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। बुजुर्गों के पास हमारी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें अपनी विरासत से अवगत कराते हैं। बुजुर्गों के जीवन का भरपूर अनुभव होता है। वे अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखकर हमें मार्गदर्शन देते हैं। वो एक दूसरे के साथ प्यार, सहयोग से रहने का महत्व समझाते हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनकी दुआएं हमें सफलता और सुख प्रदान करती हैं। सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म है अग्नि परीक्षा।

और दोस्तों बात करते हैं सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन। भारत में बुजुर्ग आबादी लगातार बढ़ रही है और इस वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जा रही है। और इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बुजुर्गों को मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले न्यूनतम आयु वाले वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा के पात्र होंगे। पेंशन राशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी, जिससे किसी प्रकार की देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती। ये पेंशन उनके दैनिक खर्चों जैसे भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी।

और दोस्तों, बुजुर्ग मजबूत नींव होते हैं परिवार के। जन ही तो लिखा है हर दीवार पे घर की, और वो नहीं मांगते कोई भी अनमोल उपहार। जन्नत मिल जाती है अगर मिल जाए थोड़ा सा प्यार। बुजुर्ग हर घर की परंपरा के हैं आधार, और शान में ही रहता है परिवार, करें सदा इनका सम्मान। जी हाँ, हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है, उन्होंने ही तो सिखाया प्यार और रिश्तों को हमेशा अपनाना है। और दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

और हमारी खड़ी दोस्तों धीरे धीरे नहीं चल रही हैं। अब हम यही कहना चाहते हैं कि हम यूँ ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। इसी कामना के साथ सिमरन कौर।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ

साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिस्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: economic stability and highlighted the nation's significant contribution to international prosperity. The minister made these remarks during an address to representatives from various sections of Surinamese society in Suriname.
1: India contributes to the 17% of the total global growth. We help to de-risk the international economy. We help to give more possibilities. We are creating more options. We are today negotiating and concluding more free trade agreements for countries to avail of it. And along with that, we are trying to create a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, as far-reaching as possible.
0: The Enforcement Directorate has registered a case against Gamescraft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to suicide committed by the victims. Minister of State for External Affairs Keerthivardhan Singh has said India's approach to migration is guided by the core operational principles of protection of migrants, comprehensive governance across the migration life cycle, and strong international cooperation. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है हम आपको हर रोज इंतजार, प्रोग्राम एक ही फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, दोपहर की सुनहरी धूप हो, लंबा सफ़र हो और साथ में पुराने गीतों की मीठी सरगम, तो दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। आज की इस फिल्मी महफिल में हम आपको लेकर चलेंगे 1957 की उस यादगार यात्रा पर। यहाँ सड़कें भी कहानी कहती हैं, हवाएं भी संगीत सुनाती हैं और एक मुसाफिर की मुलाकात प्यार से हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज ये कार्यक्रम एक खास अभिनेता की फिल्म लेकर आया है। गीत आप सुनेंगे और हमेशा की तरह आप पहचान ही जाएंगे कि आज हम कौन सी फिल्म लेकर आए हैं। फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि आज इस सफ़र में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और हमेशा की तरह आप भी मेरे हम सफ़र बन सकते हैं अपने संदेशों के ज़रिए। संदेश भेजने का जो तरीका है आपको पता ही है, लेकिन हमारे जो नए लिसनर्स हैं उनके लिए हम बता दें, हमारा मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। फिलहाल आशा जी की आवाज़ में आपको इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुनवाती हूँ। अंदाज़ा लगा कि जल्दी से जवाब भेज दीजिए, उसके बाद इस सफ़र में इस फिल्म की ढेर सारी बातें और गीत आप तक पहुँचाऊँगी।

फिलहाल तो आपको सोना नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसमें रोमांस भी है, रोमांच भी है, और संगीत को इस खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है कि आज भी इसका हर गीत, हर दृश्य दिल में ताजगी भर देता है। अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में थी। तो पुरानी यादों की उस सड़क पर फिर से हम निकल पड़ते हैं जहाँ मुस्कुराहटें हैं, शरारतें हैं, और साथ है SD बर्मन के अमर संगीत का जादू। फिल्म है 1957 की 9/2/11। देवानंद द्वारा निर्मित ये फिल्म एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी और इसे रोड मूवी की श्रेणी में भी रखा गया था। ये उनके भाई विजय आनंद की पहली निर्देशित फिल्म थी। 1934 की अमेरिकी फिल्म इट हैपेंड वन नाइट इससे आंशिक रूप से ये फिल्म प्रेरित थी, और इस फिल्म में नजर आए थे देवानंद, कल्पना कार्तिक, मदनपुरी, शशिकला और जीवन। फिल्म का संगीत जो आप सुन रहे हैं SD बर्मन साहब ने दिया था, और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे।

1957 में रिलीज हुई एक शानदार रोमांटिक एडवेंचर फिल्म है, जिसे हमने आपको बताया निर्देशित किया था विजय आनंद ने। मुख्य भूमिका में देवानंद थे जो कि मदन के किरदार में नजर आए थे, कल्पना कार्तिक ने राखी और एक और किरदार इन्होंने निभाया था। इसके अलावा जीवन सुरजीत के किरदार में नजर आए थे, मदनपुरी राधेश्याम राधे के किरदार में थे, शशिकला नीता के किरदार में थी, कृष्ण धवन कुलदीप बने थे, ललिता पवार कुलदीप की माँ बनी थी। इसके अलावा जगदीश राज, हेलेन जिन्होंने बहुत सुंदर डांस किया था, टुनटुन जो एक मकान मालकिन के किरदार में थी, ये सब इस फिल्म में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी थे। 1957 में बनी एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी और उनके छोटे भाई यानी कि देवानंद की छोटे भाई उन्होंने विजय आनंद ने इस फिल्म को निर्देशित किया था। और आप जानते ही होंगे कि जो कल्पना कार्तिक हैं वो देवानंद साहब की पत्नी भी थी। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं, हम है राही प्यार के, आंखों में क्या जी, जो आप सुन ही रहे हैं। और हम है राही प्यार के बस अब कुछ देर में ही मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। इन गीतों को अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, रफ़ी साहब ने। और गीतों में सबसे ख़ास बात पता है क्या थी, उसमें सफ़र की मस्ती और आज़ादी की खुशबू दोनों नजर आती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं हम आपको बताएंगे, फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म से किशोर दा की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत।

फिल्म 9-2-11 इससे जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। 9-2-11 फिल्म की शूटिंग जब कर रहे थे तो इस फिल्म में उनके साथ जो देवानंद साहब थे उनके साथ कल्पना कार्तिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही थी और आगे चलकर वो देवानंद साहब की पत्नी भी बनी थी। फिल्म का डायरेक्शन देव साहब के भाई विजय आनंद कर रहे थे और देव साहब खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म 9-2-11 की शूटिंग दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर चल रही थी और एक बार फिल्म की पूरी यूनिट मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में शूटिंग कर रही थी। शिवपुरी इलाका शायद आपने सुना होगा, वैसे आपको बता दूं कि मेरा होम टाउन वही है, तो रात को उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। ये वो दौर था जब डाकुओं का बहुत शोर था। पूरी टीम एक गेस्ट हाउस में रुकी थी, तभी एक रात देवानंद के कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। देव साहब ने अंदर से पूछा, कौन है? तो आवाज़ आई, हम हैं बगर सिंह। ये सुनते ही देव साहब के होश उड़ गए और उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने बड़ी बड़ी मूछों वाला बंदूक लिए एक आदमी खड़ा है। इससे पहले देवानंद साहब कुछ कह पाते, बगर सिंह ने देव साहब की एक तस्वीर उन्हें दिखाते हुए कहा कि आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ये सुनकर देव साहब की जान में जान आई और उन्होंने अपनी तस्वीर पर ऑटोग्राफ करके उन्हें बगर सिंह को दे दिया। इतना ही नहीं, जाते जाते बागी बगर सिंह ने देव साहब से कहा कि देव साहब, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना, और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। तो ये वो किस्सा था, शायद देवानंद साहब इस किस्से को कभी भी नहीं भूले होंगे। 9-2-11 फिल्म थे वो विजय आनंद की पहली हिंदी फिल्म थी और इसमें उन्होंने अपने भाई और बाद में जो हीरोइन थी, बाद में उनकी जो भाभी बनी, उनको लिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक हॉलीवुड फिल्म इट हैपन वन नाइट से काफ़ी इम्प्रेस थी और देवानंद अगर इस फिल्म में नहीं होते तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि वो उन्होंने इस फिल्म की जो पटकथा थी उसकी बारीकियों पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया था। हर चीज़ को उन्होंने अपने हिसाब से, जब तक कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक उन्होंने उसमें सुधार करते रहे, और उसके बाद जब ये फिल्म बनी तो लोगों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया।

होती हूँ और तारूफ दे खामोशी हो।

आशा जी और गीता दत्त की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म 9/2/11 कहानी है मदन नाम के एक बेफिक्र नौजवान की जो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में जीता है। उसे एक कार को दिल्ली से मुंबई ले जाने का काम मिलता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी लड़की की जो लड़के के भेष में उनके साथ सफ़र करती है। रास्ते में दोनों के बीच नोकझोंक मस्ती और धीरे धीरे प्यार पनपता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सच्चाई सामने आती है। पहचान धोखा और प्यार का असली इम्तिहान इस फिल्म में दिखाया गया है। असली रोड ट्रिप ये फिल्म जो एहसास दिलाती है क्योंकि फिल्म की शूटिंग जो थी वो असली लोकेशन पर ही हुई थी और पूरी फिल्म एक रोड पर ही नेचुरल तरीके से फिल्माई गई थी, इसीलिए इसको रोड मूवी भी कहा जाता है। देवानंद का जो कैजुअल और चार्मिंग अंदाज था इस फिल्म में लोगों ने इतना पसंद किया कि वो युवाओं के आइकन बन गए थे। विजय आनंद की ये शुरुआती फिल्मों में से एक थी, लेकिन उन्होंने अपने कैमरे का जो एंगल था और कहानी कहने का जो अंदाज था उससे अपनी एक अलग पहचान बना ली। कल्पना कार्तिक एक लड़के के भेष में इतनी खूबसूरत लगी थी और जब वो सफ़र करती हैं उस दौर में ये वेशभूषा और एक लड़के के अंदाज में उनको एक हीरोइन को दिखाना काफ़ी दिलचस्प भी था और एक नया कॉन्सेप्ट भी था। ढेर सारे संदेश भी पहुंच रहे हैं, बस कुछ ही देर में उन संदेशों को मैं शामिल करूंगी।

0: हमारे साथ अजीत भाप सर, प्रमीला भाप सर और सनी जी जुड़े हुए हैं वीरन गांव गुजरात से। अगला संदेश हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम इंदिरा और सार्थक शर्मा का आया हुआ है। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी जुड़े हुए हैं। लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, नूर, गुलराल, अभिराज जी हमारे साथ हैं। पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवानगन जी हमारे साथ हैं। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरब, ज्योति रानी, गुरमत कौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार दुर्गा जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास सुरेश जाघव, अनीता, सोनल जी का नेहरू चौक पैठन से आया हुआ है। देवशंकर तामोरी, अजय देव, मास्टर अल कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। प्रदीप द्विवेदी जी देवरिया यूपी से हमारे साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और राजकुमार डूंडी जी, प्रमोद कुमार डूंडी जी गांव फरासी जिला हिसार से जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, मास्टर अल कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालो से हैं। अगला संदेश जो हमारे पास पहुँचा है ये पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, फालसिका पंजाब से भूषण खेड़ा जी और उनके परिवार वालों का आया हुआ है। नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल और परिवार के सभी सदस्य हैं। सुदर्शन मुखी जी ने बड़े बहुत ही सुंदर स्टाइल से हमें लिखा है इस फिल्म का नाम 9/2 और 11। और अगला जो संदेश है जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा का है। चंडीगढ़ से अनीता अनेजा, बिमल अनेजा जी हमारे साथ हैं। डी वी राणा नेहरू बयार दिल्ली से हैं। राजकोट से परवीन बाबू, रेशमा, शकीला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जी हैं। बटिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली जी हैं। और अगला संदेश संबलपुर काकिर से फागुन राम, ज्योति ओचस्वी जी का है। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र, सुधार, मनोज, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक। कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हैं। ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास संदीप मक्कर जी का आया हुआ है जो जालंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, परदीन और परिवार के सभी सदस्य हैं। मुकेश कासलेकर जी तहसील बरुण, अमरावती, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखिया, अनीता जी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं हमारे साथ। और पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बन्ने ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली जी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पाट डिंगिया जी हमारे साथ हैं। हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी का एक और संदेश है। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित जी, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा, पूजा परिहार जी हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ इस सफ़र में, हमारे हम सफ़र बनने के लिए। दो संदेश और हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिर डार उर्फी जान यूसरा जी हमारे साथ हैं। एक और संदेश से है ये गाँव कुमार हेड़ा सहारनपुर से साइना हसन और सैयद मसरून जी।
1: अब न रुकेंगे तो दुखने लगेंगे।

तो दोस्तों 9-2-11 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सफर है, मस्ती है, प्यार है और जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देती हुई फिल्म है। ये पुराने सिनेमा का जादू है जब टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन असलीपन भरपूर था। उम्मीद करते हैं कि आज की ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकालिए और ज़रूर देखिए। फिलहाल मैं अब आपसे अनुमति लेती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई फिल्म के साथ। तो अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को ही कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: उर्दू समाचार साढ़े दिल्ली केंद्र तो।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावियां खबरां। पश्चिमी बंगाल च बीजेपी विधायक दल दा नेता चुनन लई आज दोपहर बाद कोलकाता च मीटिंग होएगी। रक्षा खोज ते विकास संगठन डीआरडीओ ते भारतीय हवाई फौज ने उड़ीसा दे तट तों टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारा रक्षा प्रणाली दी सफल परख कीती है। रेलवे ने रेल सुरक्षा ते जोर दिंदे उत्तरी रेलवे दे मुख रूटां ते कवच आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली दे विस्तार नूं मंजूरी दे दित्ती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व आर्थिक स्थिरता के थम वजों भारत की वध रही भूमिका और अंतरराष्ट्रीय खुशहाली विच देश के महत्वपूर्ण योगदान उजागर किया है। आईपीएल क्रिकेट विच अज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम च दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होगा। पश्चिमी बंगाल च बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने लई अज दोपहर बाद कोलकाता च मीटिंग होगी। केंद्रीय निगरान ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग विच मौजूद रहेंगे। ओ कोलकाता पहुंच गए ने। भाजपा ने हाल ही विच हुईयां विधानसभा चोणां विच इतिहासक जित दर्ज कीती जिस नाल सूबे विच टीएमसी दे 15 सालां दे शासन दा अंत हो गया। पश्चिमी बंगाल दी पहली बीजेपी सरकार दा सहुं चुक समागम कल कोलकाता दे ब्रिगेड परेड ग्राउंड विच होएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रधान नितिन नवीन ते सारे एनडीए शासित राज्यां दे मुख मंत्रियां दे सहुं चुक समागम विच शामिल होने दी उम्मीद है। रक्षा खोज ते विकास संगठन डीआरडीओ अते भारतीय हवाई फौज ने कल ओडिशा दे तट तों टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारा हथियार प्रणाली दी पहली परख उड़ान सफलतापूर्वक कीती। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान विच कहा है कि तारा देश दी पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो अनिर्देशित हथियार नूं सटीक निर्देशित हथियार विच बदलदी है। मंत्रालय ने दस्सिया कि तारा नूं डीआरडीओ दीआं होर प्रयोगशालावां नाल हैदराबाद रिसर्च सेंटर इमारत प्लस वलों विकसित ते डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य जमीन आधारित टीचे नूं नष्ट करने लई घट कीमत वाले हथियार की मारू समर्था ते शुद्धता नूं वधाउणा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली टेस्ट उड़ान लई डीआरडीओ हवाई फौज डीसीपीपी अते उद्योग नूं वधाई दित्ती है। उन्होंने इस नूं भारत दीआं स्वदेशी रक्षा समर्थावां नूं अगे वधाउण विच इक महत्वपूर्ण घटना दस्सिया है। रेलवे ने रेल सुरक्षा ते आधुनिकीकरण ते जोर दिंदे उत्तरी रेलवे दे मुख रूटां ते स्वदेशी तौर ते विकसित कवच आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली दे विस्तार नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस प्रोजैक्ट ते लगभग 362 करोड़ रुपए दी लागत आएगी। इस तहत फिरोजपुर ते जम्मू डिवीजनां ते अहम हिस्सिआं विच लगभग 1478 किलोमीटर लंबे रेल मार्गां ते कवच सिस्टम स्थापित कीता जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि प्रोजैक्ट तहत फिरोजपुर डिवीजन विच लगभग 241 करोड़ रुपए की लागत नाल 1000 किलोमीटर तो वध पटरी ते कवच स्थापित किया जाएगा। जम्मू डिवीजन विच जलंधर सिटी जंक्शन, जम्मू तवी, श्री

0: ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ।
1: ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਖਾਨਪੁਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 60-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1959 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
0: IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ BJP ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੇਂਜ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਵਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की BJP कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। DRDO और भारतीय फजाइया ने मुल्की में तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैनुल अक्वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात की यकीन दहानी में मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल ना हो। और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल BJP कानून साज पार्टी आज सहपहर अपना लीडर मुंतखब करने के लिए कोलकाता में मीटिंग करेगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। BJP ने रियासत के हालिया असम्बली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में TMC का 15 साल दौर हुकूमत खत्म हो गया। मगरबी बंगाल की पहली BJP हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखला अमित शाह, BJP सदर नितिन नबीन और BJP के जेर इकतदार तमाम रियासतों के उजराए आला हलफ बरदारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फजाइया ने मजीद फासले तक मार करने वाले छोटे हथियार तारा की पहली आदमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। यह तजर्बा कल उड़ीसा के साहिल से कुछ दूर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पहली आदमाइशी परवाज पर DRDO, भारतीय फजाइया, DCPP और सनत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई हथियारों की तरक्की के मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मार करने की दूरी में इजाफे वाला यह हथियार तारा मुल्क में ही तैयार किया गया ऐसा पहला ग्लाइड हथियार निजाम है, जो बगैर रहनुमाई वाले हथियार को बारीक निशाने वाले हथियार में बदल देता है। वजारत ने बताया कि तारा को हैदराबाद के तहकीकी मरकज इमारत प्लस और DRDO की दीगर लेबोरेटरीज ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद कम कीमत वाले हथियार की बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचकर दुश्मन को हलाक करने की सलाहियत में इजाफा करना है। यह हथियार तरक्की और इसके बड़े पैमाने पर तैयारी से मुतालिक शराकतदारों और दीगर भारतीय सनतों ने तैयार किया है और इसे बड़ी तादाद में तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज डेस्क से सौम्य शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
2: वजीर आजम नरेंद्र

0: करने का शर्फ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका अहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1,000 पूरे होने के सिलसिले में किया गया था। वजीर आजम ने सोमनाथ को भारत की तहजीबी कुव्वत और मजबूती की अलामत करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर के सफर से तबाही से लेकर तख्लीक तक की एक तहरीक की अक्कासी होती है और इससे यह जाहिर होता है कि बार बार के हमलों और मुश्किलात के बाद भी किस तरह अकीदा और सकाफत बरकरार रह सकते हैं। वजीर आजम ने आज़ादी के बाद मंदिर की तामीर नो में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का ये मानना था कि सोमनाथ की तामीर नो एक कौमी फ़र्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नज़रिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1,000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने क्याम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे।
1: इसी तरह की मैराथन और वॉकाथॉन का इनेकाद आकाशवाणी के मुल्कगीर नेटवर्क ने भी किया था, जिसके तहत 90 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िदा इन तकरीबात में अवामी सरगर्मी और लोगों तक पहुंचने को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मैराथन से लोगों तक चुस्त दुरुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुँचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इस महीने मुल्क भर में 232 आकाशवाणी मरकजों पर मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबात मुल्क की खिदमत में अवामी नशरियात के तौर पर आकाशवाणी के तआवुन के हिस्से के तौर पर मनाई जा रही है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका की तजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज़ करके इकदामात किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद ये फैसला सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओन देर लेन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफैन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि एक ऐसे निज़ाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज
1: टू अवेल ऑफ इट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
5: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
6: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
5: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
7: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
8: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
5: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3

0: से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:30:17 हो रहे हैं। समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत सभी लिसनर्स का एक ही कलाकार कार्यक्रम का। सफर मनीषा के साथ तय होगा आज आपका, तो सभी लिसनर्स को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, एक ही कलाकार में आज बात उस अभिनेत्री की जिसने नायिकाओं को सिर्फ ग्लैमर नहीं, गरिमा, संवेदनशीलता और सशक्त नारी का पक्ष दिखलाया। 80 से 90 के दशक में जिसने मराठी सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्मों में अपनी खूबसूरती और सहज अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें उनके चाहने वालों ने सादगी और प्रतिभा का सुंदर संगम माना। मराठी थिएटर से लेकर बॉलीवुड तक और फिर अमेरिका में नई जिंदगी का सफर, लेकिन कला से रिश्ता उनका कभी नहीं टूटा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर उनके अभिनय से सजे इस गीत के साथ।

है ना फिल्म में, ये जो अंदाज था अश्विनी भावे का इस गीत में, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ये गीत सुना, और जो चाहने वाले फिल्म जगत के हैं वो अश्विनी भावे के अभिनय को कभी भुला नहीं सकते हैं। 7 मई को मुंबई में जन्मी अश्विनी भावे ने अभिनय की शुरुआत स्कूल के दिनों में थिएटर से की। कहा जाता है कि मंच पर उनकी पकड़ इतनी स्वाभाविक थी दोस्तों कि कम उम्र में ही उन्होंने लोगों का ध्यान अपने अभिनय की तरफ खींच लिया था। इस तरह उन्होंने मराठी रंगमंच और फिल्मों से अपने करियर की मजबूत नींव रखी। स्कूलिंग के साथ साथ थिएटर गगन भेदी से शुरुआत और फिर मराठी डेब्यू शाबाश सुनबाई जो 1986 में हुआ, फिर जल्द ही आशी ही बनवा बनवी 1988 में जो उनका रंगमंच रहा, और कलाट नकलट जो 1989 में जैसे अभिनय के मंचों के साथ फिर वो फिल्मों में और फिर मराठी सिनेमा के शीर्ष पर पहुंचने वाली अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार किया। आरके फिल्म्स की हिना जो 1991 में आई, राज कपूर के सपनों की इस फिल्म में जिसे राज कपूर के निधन के बाद रणधीर कपूर ने पूरा किया, और इस बड़े प्रोजेक्ट में अश्विनी ने चांदनी का किरदार निभाकर राष्ट्रीय पहचान हासिल की। लेकिन दोस्तों, सीमाओं से परे प्रेम की कहानी और अश्विनी का सधा हुआ अभिनय भले ही फिल्म की मुख्य भूमिका में यानी कि नायिका जेबा बख्तियार के लिए उसके समतुल्य नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो अभिनय किया उसमें अश्विनी की उपस्थिति इतनी प्रभावी रही कि हिंदी दर्शकों ने उसे खूब सराहा और आज भी उनके उस अभिनय को नहीं भूल सकते हैं। फिलहाल हम सुनते हैं उन पे फिल्माई गई एक अगली फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और इसे सुनते ही आप भी अश्विनी जी के उस सधे हुए अभिनय के दर्शन करने लगेंगे। आप वहां खो जाएंगे जहां वो एक सजीव चित्रण में अपना अभिनय परोसती थीं।

जी हाँ दोस्तों, आप इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार से। और आज हम जो गीत आपको सुना रहे हैं 90s के क्लासिक प्लेलिस्ट में शामिल वो हिस्सा वो गीत हैं जिसमें अभिनेत्री अश्विनी भावे की लोकप्रियता ने शिखर को छुआ है। और अश्विनी भावे की बात करें तो उन्होंने इस तरह कई फिल्मों में काम किया जैसे मीरा का मोहन, सैनिक, परंपरा, बंधन जैसी कई फिल्मों में अपनी छाप बनाई। सैनिक में अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी को खासा पसंद किया गया। उनका अभिनय अक्सर ग्लैमर से ज़्यादा भावनात्मक गहराई के लिए सराहा गया। और दिलचस्प बात ये भी रही कि उन्होंने कई बार ऐसे किरदार चुने जिनमें भारतीय नारी की मजबूती और संवेदनशीलता साफ नजर आती थी। तो चलिए सुनते हैं उनके अभिनय से सजा एक और खूबसूरत सा गीत जो आपको लेकर चलेगा उसी खूबसूरत दुनिया में जब उनके खूबसूरत अभिनय के जलवे बिखरे होते थे।

हालांकि अश्विनी भावे, जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, भारतीय फिल्म की वो अदाकारा जिन्होंने 80 और 90 के दशक में फिल्मी जगत में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने विवाह के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी दोस्तों, और अमेरिका जाकर मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविज़न की पढ़ाई शुरू कर दी थी। यानी उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं, सिनेमा की तकनीकी बारीकियां भी सीखी। बतौर अभिनेत्री उनका ये कदम उस दौर में काफ़ी अलग था, जब कई अभिनेत्रियां शादी के बाद पूरी तरह सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाया करती थीं। ऐसे समय में अश्विनी भावे ने खुद को नए रूप में विकसित किया। विवाह के बाद 2008 में उन्होंने कदाचित से फिर दमदार वापसी की, और सबसे खास बात कि इस फिल्म की वो निर्माता भी रहीं। एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा उम्र या दौर की मोहताज नहीं होती। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड भी दिया गया, और अश्विनी भावे अपने जीवन में सिर्फ अभिनेत्री के रूप में नहीं रहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया।

या कि वो अश्विनी को आज भी अपने दिल में मौजूद रखते हैं। देखिए, उनको पसंद करने वाले बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो इंतज़ार में हैं कि हम उनके बारे में भी जिक्र कर लें यहाँ, क्योंकि मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com पर वो सभी प्रतीक्षारत हैं। हमारे श्रोता साथियों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और अश्विनी भावे उनकी फेवरेट अभिनेत्री भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहजी बोखड़े, श्रीमती नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े, अंबेडकर चौकी वाकोडी से, और उनके साथ उत्तम जमदाडे और स्वराज जमदादे हैं। हमारे इन श्रोता साथी का भी हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम सुनने वाले और जिन्हें बहुत अच्छा लग रहा है उनमें हमारे साथी हैं चिरमिरी कुरासिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे, बहुत स्वागत आपका। उसी तरह छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसी तरह अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांढा से, और हमारे साथ हैं बुलंदशहर ऊपरकोट मोहल्ला से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बास और अबान अब्बासी और उनका पूरा अब्बासी परिवार। उसी तरह हमारे साथ हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रधान खुराना। जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, सुदर्शन मुखी हमारे साथ हैं, उनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांति नगर सोनीपत से, कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है। संदीप मकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारे श्रोता साथी जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारे हौसले को और बढ़ाते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं अश्विनी भावे की दोस्तों, क्योंकि अश्विनी भावे की जीवन यात्रा हमें सिखलाती है कि सफलता सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि निरंतर रहना है। भाषा कोई सीमा नहीं, प्रतिभा हर मंच में चमक सकती है और परिवार और करियर दोनों को संतुलित बनाया जा सकता है। ये हमें अश्विनी भावे ने अपनी जिंदगी में और अपने काम से हमें सिखलाया है। मराठी और हिंदी दोनों क्षेत्रों में उन्होंने परिवार, आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता जैसे विषयों को सिनेमा के भीतर जगह दी। बाद के वर्षों में डॉक्यूमेंट्री और सामाजिक विषयों से जुड़ाव कला को उद्देश्य के साथ जोड़ने की वो मिसाल बनती रहीं। उनकी यात्रा खासकर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन के अलग अलग चरणों में खुद को फिर से परिभाषित करना चाहती हैं। तो चलिए, चलते चलते ये अंतिम गीत इस कार्यक्रम का हम सुनते हैं अश्विनी भावे का। ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, सुनिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इन मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए NCERT से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा।
3: धार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
3: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
3: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
3: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
3: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
3: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
3: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
3: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
3: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।
3: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
3: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी

0: जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी,
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी, समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्तो पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।

0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार? कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर

0: इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक, कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
2: उमंग। दोस्तों आप अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी से और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3:29 और 59 सेकंड हो रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

सामीन, अभी आप उस्ताद अजीज अहमद खान वारसी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में कव्वाली सुन रहे थे। सामीन, रेड क्रॉस सोसाइटी की इंसानी खिदमात हैरान कुन है। अपने फर्स्ट शनाज अराकीन की जुमला काविशों और मुख्तलिफ कौमों के इश्तराक की बदौलत आज ये रिफाही तंजीम सबसे मुस्तहकम और इंसानी खिदमात के लिए वक्फ एक अजीम तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यह तंजीम हर मुल्क में सरकारी और गैर सरकारी इदारों के शाना बशाना मिलकर खिदमत खल्क का फरीजा अंजाम देती है। इसका बुनियादी मकसद बिला तफरीक रंगो नस्ल मजहब व मिल्लत हर इंसान की खिदमत करना है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करना, खुसूसन खून का अतिया करना, पनागाहें कायम करना, खुराक और ज़रूरी अशिया मुहैया करना वगैरह काम है। इसके कारकुनान रजाकाराना तौर पर अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। बकौल शायर, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रोबया। आइए सामीन, जाफ़र हुसैन खाबदानी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में कव्वाली सुनते हैं।

सामीन, अभी आप प्रभा भारती और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में कव्वाली सुन रहे थे। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम महफिल समा।

इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में आज नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुँच चुके हैं। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई, चिरुथैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपीआर उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। ये अमेरिका के व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए पेश है समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ

अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 4:10:24 हो रहे हैं। समय है लापता व्यक्तियों से संबंधित सूचना का। लापता व्यक्तियों में पहला नाम है दीपक का, जो सन ऑफ सुभाष हैं। ये मेरठ थाना मुंडाली के रहने वाले हैं। इनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। लिंग पुरुष, आयु 30 वर्ष, इनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है, इनका रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है। ये 28 फरवरी 2026 से लापता हैं और जिस दौरान ये गुमशुदा हुए हैं तब से ये पैंट शर्ट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर थाना मुंडाली, जनपद मेरठ में सूचना दी जा सकती है। गुमशुदगी में जो अगला नाम है वो है मनीषा का, जो डॉटर ऑफ सतीश हैं। ये ग्राम लिसाड़ी मेरठ की रहने वाली हैं। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। लिंग स्त्री, इनकी उम्र 23 वर्ष है और इनकी लंबाई 4 फीट 5 इंच है। इनकी आँखों का रंग काला है, इनके बाल भी काले हैं और इनका चेहरा गोल है, रंग इनका गेहुआ है और इनके शरीर की बनावट सामान्य है। इनके पहनावे के बारे में जानकारी है कि जिस दौरान ये गुमशुदा हुई हैं उस दौरान इन्होंने हरे रंग का सूट पहना हुआ है, लाल शॉल इनके पास है और पैर में इन्होंने स्लीपर पहने हुए हैं। वर्तमान में इनकी मानसिक स्थिति सही है लेकिन पूर्व में इन्हें मानसिक समस्या रही है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में इत्तला कर सकते हैं। इनसे संबंधित सूचना पाने पर एक नंबर भी है जिस पर आप सूचना दे सकते हैं। कृपया नंबर नोट कीजिए 7409234740। नंबर एक बार आप फिर से सुन लीजिए 7409234740। इनसे संबंधित जानकारी आप लिसाड़ी गेट मेरठ में दे सकते हैं। गुमशुदगी में जो अगला नाम है वो है शेख फरहान, पुत्र शेख सिराजुल हक, जो निवासी हैं 55 महावीर गली नंदराम चौक थाना कोतवाली मेरठ के। इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। इनका लिंग पुरुष है और ये 25 फरवरी 2006 से लापता हैं। इनकी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है। इनकी जो आँख है वो भी सामान्य है, बाल का जो विवरण है वो भी सामान्य है, चेहरा भी इनका सामान्य है, रंग सांवला है और शरीर इकहरा बदन है। इनका पहनावा अंतिम समय में जब इन्हें देखा गया था तब ये मेहंदी कलर की ट्राउज़र, पिंक कलर की टी शर्ट और पैरों में चप्पल पहने हुए थे। इनसे संबंधित सूचना प्राप्त होने पर आप एक मोबाइल नंबर है उस पर भी सूचना दे सकते हैं। कृपया नोट कीजिए 9690065675। नंबर एक बार फिर से सुनिए 9690065675। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना कोतवाली मेरठ में इत्तला कर सकते हैं। अगला गुमशुदगी के लिए जो नाम है वो है सोफिया का, पुत्र आसिफ के हैं ये और ये झुग्गी

जुबली गंज रजबन बड़ा बाजार थाना सदर बाजार मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी उम्र तकरीबन 15 वर्ष है और इनकी ऊंचाई 4 फीट 8 इंच है। इनकी आंखों का रंग काला है, बाल भी काले हैं, चेहरा गोरा है और रंग सांवला है। शरीर में इनकी आंख नाक कान औसत हैं और इन्होंने अंतिम समय में जब इन्हें देखा गया था तब सफ़ेद रंग की टी शर्ट, नीले रंग का लोअर और पैरों में सफ़ेद स्पोर्ट्स के जूते पहने हुए थे। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप जनपद थाना मेरठ में संपर्क कर सकते हैं, वहां सूचना प्रेषित कर सकते हैं। अगला नाम है साकिर का, जो पुत्र मोहम्मद शाहिद हैं। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। लिंग पुरुष है, उम्र इनकी 26 वर्ष है, ऊंचाई 5 फीट 4 इंच है, शरीर की बनावट सामान्य है, रंग गोरा है, आंख बाल काले रंग के हैं और चेहरा सामान्य है। इनकी आंख नाक कान औसत हैं। इनका पहनावा अंतिम समय में जब इन्हें देखा गया था तब इन्होंने नीला जीन्स पहना हुआ था, सफ़ेद शर्ट, काला जूता और पीली जैकेट इन्होंने डाली हुई है। ये 6 मार्च 2026 से 9 बजे से सुबह तब से ये लापता हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना सरधना मेरठ में सूचना दे सकते हैं। अगला नाम है श्रीमती आरती का, जो पत्नी है नेपाल सिंह और निवासी हैं ग्राम अमहेडा आदिपुर थाना गंगानगर मेरठ की। इनकी उम्र करीब 30 वर्ष है और लिंग इनका स्त्री है। इनकी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। इनका रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है। इनके बारे में इनके पहनावे के लिए सूचना है कि ये सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पजामी पहनी हुई हैं जब अंतिम बार इन्हें देखा गया था। ये 15 मार्च 2026 में तब से लापता हैं। इनसे संबंधित सूचना प्राप्त होने पर आप एक मोबाइल नंबर है उस पर सूचना प्रेषित कर सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 7078769011। नंबर फिर से सुन लीजिए 7078769011। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना गंगानगर मेरठ में इत्तला कर सकते हैं। अगला नाम है विलुप्त व्यक्ति का, श्री शिवम पुत्र राजकुमार, निवासी कसेरू बक्सर मवाना रोड थाना गंगानगर मेरठ। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। इनकी उम्र 25 वर्ष है, लिंग पुरुष है, इनकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच है, इनकी आंख का रंग सामान्य है, बाल भी सामान्य है, शरीर का रंग गेहुआ है और शरीर की बनावट सामान्य है। इन्हें अंतिम बार जब देखा गया था तब 16 मार्च 2026 को 11 बजे सुबह देखा गया था। उस दौरान इन्होंने काली टी शर्ट और काली जीन्स पहनी हुई थी। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर एक नंबर है जिस पर आप सूचना दे सकते हैं, 8449877862। नंबर एक बार फिर से सुनिए 8449877862। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर थाना गंगानगर मेरठ में इत्तला कर सकते हैं। और गुमशुदगी में ये अंतिम नाम है श्री गौरव का, पुत्र छोटेलाल, और ये निवासी हैं MDA फ्लैट साई ब्लॉक निकट देव अनंत अस्पताल गंगानगर मेरठ। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। इनकी उम्र 21 वर्ष है, इनकी आंखों का रंग सामान्य है, इनकी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है, चेहरा भी सामान्य है और इन्होंने अंतिम बार जब इन्हें देखा गया हरे रंग की सफ़ेद लाइन वाली टी शर्ट और हरे रंग की पैंट इन्होंने पहनी हुई है। इनके बारे में जानकारी आप गंगानगर थाना में दे सकते हैं। इसी के साथ गुमशुदगी से जुड़ी हुई सारी जानकारी समाप्त होती है। ये
आकाशवाणी दिल्ली का

0: employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन तथा सिपाही पायनियर के पद के लिए भर्ती आयोजित कर रहा है। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो सामान्यतः अपने संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी हैं। अभ्यर्थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन कुल रिक्तियां 9175, पुरुष 9996 और महिला 79 रिक्तियां। सिपाही पायनियर की 20 रिक्तियां उपलब्ध हैं जो पुरुषों के लिए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में अनुबंध के आधार पर प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए 2 सलाहकार विशेषज्ञ के पदों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक विवरण के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट nmcg.nic.in। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में तथा DCOs में प्रतिनियुक्ति अथवा अवशोषण के आधार पर वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए विधिवत माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर अपने आवेदन विधिवत माध्यम से अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, पद का विवरण, पात्रता मानदंड, वेतनमान, आवेदन और चयन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तों आदि के लिए देखिए वेबसाइट census.gov.in। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सक्रिय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में विभिन्न विभागों में एडजंक्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोई भी अंतिम तिथि नहीं है और आवेदन पूरे वर्ष किए जा सकते हैं। आवेदनों पर समय समय पर विचार किया जाएगा। विज्ञापन के प्रथम चरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। अंतिम तिथि के बाद जो आवेदन प्राप्त होंगे वो अगले चरण के लिए विचार किए जाएंगे। अधिक विवरण के लिए, विस्तार से जानने के लिए देखें संस्थान की वेबसाइट www.nitkkr.ac.in। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लोधी रोड नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन रिक्तियों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक डी वेतन स्तर 12, कुल पद हैं 12, जिनमें से 7 सामान्य वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सी वर्ग के लिए कुल 141 रिक्तियां उपलब्ध हैं और इनमें से 59 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और EWS वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं NIC की वेबसाइट पर, जिसका पता है recruitment.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही।
0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ मैगजीन परिक्रमा में। श्रोताओं, हम मई के शुरुआती दिनों में हैं और ये समय हमें बीते हुए दिनों पर विचार और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने का मौका देता है। ये मई महीना कई अवसरों की भी शुरुआत है, इसलिए जिन कामों को आप पिछले कई दिनों से टालते आ रहे हैं उन्हें अब पूरा करने की योजना बना सकते हैं। और आपको बता दें कि आज दो बहुत खास दिन भी हैं जिनका इस्तेमाल आप एक अच्छे काम के लिए कर सकते हैं। इसके बारे में आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
1: नमस्कार सर फिरोजी एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन चोपड़ा एंड सर फिरोजी। टुडे वेल सर फिरोजी वाज टॉकिंग अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन, आई थिंक। सो प्रोक्रास्टिनेशन, इट्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली एंड मैनेज टाइम एक्टिवली। यू शुड कंप्लीट टास्क सफिशिएंटली, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ब्रेक लार्ज प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड देन कंप्लीट योर टास्क।
0: बिल्कुल,
1: एग्जैक्टली, वी कैन डू दिस। एंड वी listeners, for you, for the program, we will first start with the selection of news. Our discussion segment, Dateline India, Sir Firuzi was talking about that as well. We have two topics which we will discuss in great depth, and reports, capsules and tributes will be there at the end of the program. First, we are beginning with the news headlines.
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक।
1: DRDO and Indian Air Force successfully conduct maiden flight trial of indigenous Tara glide weapon.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया।
1: US Court of International Trade declares Trump administration's 10% universal tariff levied on imports from India and other countries illegal.
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो।
1: एंड इन आईपीएल क्रिकेट, दिल्ली कैपिटल्स टू टेक ऑन कोलकाता नाइट राइडर्स इन दिल्ली दिस इवनिंग। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। टॉपिक नंबर वन, इट्स वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, which is celebrated to honor the essence of humanity and acknowledge those individuals, especially Red Cross volunteers, who contribute to their communities and continue to save lives worldwide. So the idea for World Red Cross and Red Crescent Day, it came about after the First World War, when an annual action that could take hold in the whole world, that would be a major contribution to peace, and it was discussed at 14th International Conference of the Red Cross. So 8th of May was eventually chosen because it is the anniversary of the birth of the founder of the International Committee of the Red Cross, Henri Dunant. The first International Red Cross Day, as it used to be known then, was celebrated on 8th May 1948, this year, 1948. So the official title of the day, it changed over time and became known as World Red Cross and Red Crescent Day in 1984, Sir
0: Firuzi. बिल्कुल शगुन, और विश्व युद्ध के अलावा भी मानव ये सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक पल आए जब विनाश और पीड़ा ने मनुष्य को उसकी सीमाओं का एहसास कराया, पर इन्हीं हालात के बीच करुणा, सेवा और सह अस्तित्व की एक ज्योति भी जली जिसने मानवता को नई दिशा दी। विश्व रेड क्रॉस दिवस इसी ज्योति का उत्सव है। और बात करें विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 की थीम की, तो इस वर्ष का विषय है मानवता में एकता, यानी यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी।
1: राइट, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन एम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। इट इज एक्चुअली टू इंस्पायर, टू इनिशिएट एंड टू एनकरेज ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज अंडर ऑल टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस। So programs conducted by the Red Cross Society can be broadly categorized into four parts, which includes the promotion of humanitarian principles and values, secondly, disaster response, third, disaster preparedness, and fourth, health and care. The Red Cross Society is based on seven principles, namely humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary, unity, and universality.
0: बिल्कुल शगुन, और मैं ऐसा मानती हूँ कि न सिर्फ किसी संगठन बल्कि जो पूरी दुनिया है, जो हमारा समाज है, उस पूरे समाज का ही आधार मानवता, निष्पक्षता और एकता होना चाहिए। और भारत में रेड क्रॉस की भूमिका की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के रूप में हुई। औपनिवेशिक काल से लेकर आज़ादी मिलने के बाद तक इस संस्था ने निरंतर मानव सेवा की गौरवपूर्ण

0: परंपरा को जीवित रखा है। देश के विभाजन जैसे त्रासदी के दौर में भी लाखों विस्थापितों को राहत दी, इन्हें पुनर्वास प्रदान किया और युद्ध काल में घायल सैनिकों की निस्वार्थ सेवा की। आज भारत में रेड क्रॉस का सशक्त और विस्तृत नेटवर्क राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर तक फैला हुआ है। हजारों समर्पित स्वयंसेवक सेवा और संवेदना की भावना से प्रेरित होकर निरंतर समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: So, philanthropy, this has been considered the most important human value in Indian tradition. The Indian Red Cross Society has been serving people for more than 100 years. It has shown its commitment through relief work during the natural disasters, also health emergencies. And we should note here that the Indian Red Cross Society is meeting about 10% of India's blood requirements through more than 100 blood donation centers and mobile campaigns across the country. The Indian Red Cross Society is playing an excellent role by safely collecting blood for those in need and promoting the culture of voluntary blood donation. Now we'll move on to the second dateline, the second topic. So every year on May 8, the world also observes World Thalassemia Day. This thereby raises awareness about this inherited blood disorder. It is dedicated to thalassemia patients who are battling the disease and remembers those who passed away. The day serves as a crucial platform to emphasize the importance of disease prevention, raise awareness, sensitize stakeholders as well, promote the early detection, and also to ensure quality care for those affected by thalassemia. The theme for this year's celebration, let's tell our listeners about the theme, Sir Firozi. Hidden no more, finding the undiagnosed, supporting the unseen. How great. This powerful theme highlights the millions of people, especially carriers and patients, who remain invisible to the healthcare system until a crisis strikes.
0: श्रोताओं, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचती है। इस रोग में शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसके रोगी को एनीमिया, कमजोरी, थकान और कई दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गंभीर रोगियों को जीवित रहने के लिए नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है।
1: जी सर फिरोजी, विल एक्सप्लेन। सो थैलेसीमिया इज अमंग द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स एंड दिस affects thousands of children and families across India every year, and this makes awareness about thalassemia extremely crucial, especially among young adults and couples, so that informed healthcare decisions can help reduce the number of children born with the disorder and also lessen the growing burden on families and the healthcare system, right?
0: बिल्कुल शगुन, और आपने बात की informed healthcare decisions की,
1: right.
0: तो आज जब मैं थैलेसीमिया पर रिसर्च कर रही थी तो उस वक्त मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े जिनमें बताया गया है कि कई स्टडीज में सामने आया है कि अब गर्भावस्था के दौरान यानी प्रीनेटल टेस्ट में ही थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन से जुड़ी दूसरी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी काफी शोध होना बाकी है, लेकिन ये इस बीमारी को कम करने के लिए हम सभी के लिए एक उम्मीद की तरह है। और कुछ और प्रयासों की बात करें शगुन, तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, ब्लड बैंक की सुविधाएं, डे केयर सेंटर, दवाएं, लैब सेवाएं और मानव संसाधन के प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता शामिल है।
1: ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज इन इंडिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज एंड अदर वेरिएंट हीमोग्लोबिन हैव बीन शेयर्ड टू असिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड दिस इंक्लूड्स थैलेसीमिया। So, the guidelines detail the strategies for management of thalassemia disease, including thalassemia major blood transfusion therapy with packed red blood cell. Other one is iron chelation for iron overload, monitoring and management of complication. And this iron chelation that I talked about, this is for especially for iron overload. The other one is psychological support as well, and non-transfusion dependent thalassemia.
0: और स्वास्थ्य मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत पात्र मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सीआईएल के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये योजना देश भर में फैले 17 सूचीबद्ध अस्पतालों में बीएमटी की सुविधा उपलब्ध कराती है। श्रोताओं एक बार आपको फिर बता दें कि थैलेसीमिया

0: कोरोना छुआछूत या फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये माता पिता से बच्चों में डिफेक्टिव जीन के जरिए आती है। दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी शगुन कहीं ना कहीं से लेकर जागरूकता की अब भी काफी कमी है। तो आज फिर हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस बीमारी के मरीजों के साथ भेदभाव से बचें और जिस भी स्तर पर मुमकिन हो इन्हें समाज में शामिल करें।
1: So now we'll move on. The announcement first that we're going to make is about our series People's Padma on Akashwani. So in our upcoming episode, listeners, we speak to Dr. Ramamurthy Sridhar, a pioneer in radio broadcasting in India. He will be honored with the prestigious Padma Shri. And to listen to the conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. So you can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
0: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे और हम सभी को इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर सुनना चाहिए।
1: लिसनर्स शुड लिसन इनटू इट।
0: और श्रोताओं, अब समय है आपको देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। कहाँ से शुरू कर रही है शगुन?
1: यस सर फिरोजी, विल हेड फर्स्ट टू गैंगटॉक। यूनेस्को हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टू डॉक्यूमेंट द इंडिजिनस इंजीनियरिंग हेरिटेज ऑफ द केन ब्रिजेस, and this is also known as Ru Suam, in the Khangchenjoga Biosphere Reserve in Sikkim. We have details, more details on this from our correspondent.
2: The Ru Suams are crafted by the Lepcha community from locally available materials such as bamboo, cane and wood. The engineering practice reflects a sophisticated understanding of ecological balance and structural resilience. The initiative aims to explore how these time-tested practices can inform contemporary approaches to climate adaptation and disaster risk reduction. It will also bring this engineering approach into global scientific and environmental discussions, supporting its integration into contemporary transdisciplinary knowledge cooperation. The Lepcha community holds a deep cultural and spiritual connection to nature. Their bridge-building practices reflect indigenous community needs and understanding of diverse environments and structural mechanics. Led by skilled community members who transmit knowledge orally across generations, these practices reflect careful stewardship of natural resources and harmonious coexistence between human and nature. The resilience of these structures was notably demonstrated during the glacial lake outburst flood of October 2023, when several cane bridges withstood the impact of the event and continued to provide critical connectivity to remote areas. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashwari News Gangtok for Parikrama.
0: भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक और प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव के सानिध्य में आज श्रद्धा और स्वाभिमान का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली 11 मई की यात्रा और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 गौरवशाली वर्ष इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को ऐतिहासिक बना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की उस सभ्यतागत अजेयता का प्रमाण है जो बार बार विनाश के बाद भी अपनी आस्था की शक्ति पर फिर से खड़ी हुई है। इस नवनिर्माण की नींव आजादी के तुरंत बाद रखी गई थी। 12 नवंबर 1947 दीपावली का वह ऐतिहासिक दिन था जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों का दौरा किया था और समुद्र के किनारे हाथ में जल लेकर इस भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया था। सरदार पटेल जी का मानना था कि सोमनाथ की बहाली केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि भारत के खोए हुए सांस्कृतिक आत्मविश्वास की वापसी है। जन भागीदारी और राष्ट्रीय संकल्प से कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में निर्मित यह मंदिर आखिरकार 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया गया। आजादी के 75 वर्षों के बाद जब भारत अपना अमृतकाल मना रहा है, तब सोमनाथ मंदिर भी एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। आगामी 11 मई को को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाला स्वाभिमान पर्व इसी विरासत और विकास के समन्वय का उत्सव है। इस विशेष अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रभास पाटन पहुंच रहे हैं। दिल्ली से आए तीर्थयात्रियों का दल यहां की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं को देखकर अभिभूत है। सरदार पटेल के संकल्प से शुरू हुआ यह सफर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक और भव्य स्वरूप ले चुका है। सोमनाथ की यह अजेयता सिद्ध करती है कि हमलावर मंदिर की दीवारें तोड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की अटूट श्रद्धा को कभी डिगा नहीं सकते। यह पर्व आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है कि विकास की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी विरासत और स्वाभिमान को कैसे अक्षुण्ण रखा जाता है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंड।
1: Now we'll focus on Goa. So commuters and tourists in Goa may soon trade road traffic for river breezes as the state advances its ambitious water metro project. Following a detailed feasibility study, officials are preparing to seek central assistance to transform the coastal state's aquatic transit landscape. A report.
4: River Navigation Minister Subhash Faldesai has announced that the state government aims to procure approximately 87 vessels to operationalize a comprehensive water metro system across Goa. This decision follows a high-level meeting between Chief Minister Dr. Pramod Sawant and experts from the Kochi Water Metro team. To ensure swift implementation, the state government plans to coordinate with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, within the coming week. The project is the result of a year-long study by the Kochi team, which involves surveying 111 kilometers of Goa's waterways to determine the most viable routes. The identified network includes critical stretches such as Panji to Narva, Beijing to Old Goa, Vasco to Koltaling, and Panji to Chapora. There are also ongoing considerations for extending the sea route from Chapora to Keri and Tirapol. Currently, water transport in Goa serves about 45,000 passengers daily, but officials estimate this figure will surge to over 1 lakh once the water metro is fully functional. Minister Faldesai emphasized that this central state collaboration will not only provide a durable and sustainable public transport system for residents, but also serve as a major landmark attraction for the state's tourism industry. For Parikrama, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
1: We are now focusing on Bengaluru. So this is the mango season where Karnataka State Mango Development and the Marketing Corporation has organized Mango and Jackfruit Mela at Lal Bagh and Cubon Park. The Mela will continue up to 17th of May. In the Mela, farmers will sell their produce directly to the customers. And we have more details on this from our Kava correspondent. Listen in.
5: The Karnataka State Mango Development and Marketing Corporation Managing Director T.R. Vedamurthy has informed that Mango and Jackfruit Mela to be held in Bengaluru at Kabban Park and Lal Bagh will provide consumers an opportunity to buy naturally ripened, carbide-free fruits directly from farmers. There are 50 stalls for the mango growers and 7 for the jackfruit growers to display and sell their produce. Badami, Mallika, Sindura, Raspuri, Kariyashad and Chalti mango varieties and jackfruit varieties of Rudrakshi, Shivratri, Ekadashi and Tubigere Lal Bagh Madhura varieties will be available for purchase at the Mela. The farmers from Ramnagara, Mandya, Tumkuru and Uttarakannada will participate in the Mela. The GI tag Kari Ishad mango from Uttarakannada district will be an added attraction. Raw mangoes for pickles will also be on sale. Vedamurthy informed that mango is grown on 1.45 lakh hectares in the state this year. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
0: तो श्रोताओं, अब आपको देते हैं खेल के मैदान की हलचल। बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: And now in some business news, benchmark domestic equity indices declined over 0.6% today as renewed hostilities between the United States and Iran strained a fragile ceasefire and rattled investor sentiment. The Sensex slipped 516 points to close at 77,328 and the Nifty lost 151 points to settle at 24,176.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा के साथ। अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
6: Today we remember Abad Bihari. He was a participant in revolutionary activities in Uttar Pradesh and Punjab.
7: He came in contact with Raj Bihari Bose and participated in a plot to throw a bomb on Viceroy Harding on the 23rd of December 1912. He also played a major role in the bomb explosion in Lawrence Garden, Lahore, on the 17th of May 1913. Apart from this, he was deeply involved in writing and publishing the pamphlet Liberty to arouse nationalistic sentiments among the masses.
8: He was arrested in February 1914

0: So the Rock and Roll Hall of Fame describes him as perhaps the first ever rock star. And I said, hello, Satan.
1: I believe it's time. आज ही पुण्यतिथि है आत्माराम राव जी देशपांडे की, जो मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ये कवि अनिल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। सामाजिक शिक्षा विशेषज्ञ विदर्भ के प्रसिद्ध मराठी कवि अनिल के प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं फलवात, भग्नभूर्ति, संगाती और दशपदी। अनिल मालवाड़ के मराठी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। इनके कई गीतों के रिकॉर्ड भी बने। अब आपको सुनाते हैं आकाशवाणी के अभिलेखागार से एक पोइट्री रिसाइटेशन इन्हीं की आवाज में।

आज जयंती है गिरजा देवी की, जो भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं। इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इनकी एक कजरी बरसन लगी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। गायकी के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 1972 में इन्हें पद्मश्री, साल 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

आज जन्मदिन है रेमो फर्नांडिस का, जो भारत के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। इन्हें खासकर इंडी पॉप और फ्यूजन संगीत के लिए जाना जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत में पश्चिमी रॉक, पॉप और पारंपरिक भारतीय संगीत का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत किया। इनके प्रसिद्ध गीतों में हम्मा हम्मा भी शामिल है, जिसे बाद में फिल्म बॉम्बे में भी इस्तेमाल किया गया।

0: श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए इजाजत सर फिरोजी और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ सुपर्ब डे अहेड।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई

0: दूसरा नाम नहीं आया है, इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। In West Bengal, senior BJP leader Shubhendu Adhikari has been elected the leader of the BJP legislature party in West Bengal today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. BJP sources said Adhikari's name was proposed at the legislature party meeting and formally announced by Union Home Minister Amit Shah in the presence of newly elected BJP MLAs and senior party leaders.
0: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार। और देखो प्रियंका, आज हम बात कर रहे हैं जो लोक रंजनी है वो लोक गीतों पर आधारित हमारा ही कार्यक्रम है, और खास करके अगर हम बात करें तो लोक गीत का हमारे ग्रामीण परिवेश में अच्छा खासा महत्व है, क्योंकि यह गांव की जो संस्कृति होती है, जो परंपरा होती है, लोगों की भावनाओं को जीता जागता प्रस्तुत करता है। उस लगता है कि सामने सब कुछ हो रहा है, और लोकगीत केवल सच कहें तो मनोरंजन का ही साधन नहीं होता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक आधार भी माना जाता है।
0: बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करें हमारे किसान भाइयों की, तो जब फसल आती है तो बड़ी खुशी खुशी हर एक जो डिमांड है घर वाले की वो पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन फसल आने से पहले तो खर्चे ही खर्चे होते हैं, और इतने खर्चे होते हैं, और उस समय अगर कोई फरमाइश करने लगे तो फिर किस तरीके की नोक झोंक होती है, उसके बारे में हमारे जो आज के कलाकार हैं योगेश कुमार और उनके साथ ही सुना रहे हैं अपने लोकगीत के माध्यम से। तो सुनते हैं ये लोकगीत।

0: प्रियंका, देखो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपने गांव घर में क्या होता है, चाहे मेला हो, त्योहार हो या विवाह हो, हर अवसर पे देखा जाए तो लोकगीत गाया जाता है, और जो लोकगीत गाया जाता है वो इसी विषय से संबंधित होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, आनंदमय माहौल हो जाता है, जिससे लोगों का जो मनोरंजन तो होता ही है, खास तौर पे जो वहाँ पे सुनने वाले लोग होते हैं, जो परंपराओं से नहीं भी अवगत होते हैं, वो भी देखते, भाई हर कार्यक्रम पे, हर परंपरा पे एक एक गीत इन्होंने, चाहे तिलक हो, शादी विवाह, कुछ भी हो, सब पे एक
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: गाते हैं।
1: बिल्कुल। अगर शादी विवाह का जिक्र किया है तो भाई हम भी अपने कार्यक्रम में सुनवाते हैं रूपिया भारती की आवाज़ में ये लोकगीत, जो कि बारात के आने की खुशी में गाया जा रहा है।

0: लोक संस्कृति, लोकगीत और खास करके कहें तो आत्मा होती है लोकगीत हमारे गाँव की, हमारी परंपराओं की। प्रियंका, तो अगर बात करें शादियों में तो मेहंदी लगनी स्वाभाविक सी बात है, और सभी जब मेहंदी लगाती हैं तो फिर कैसे अपने भाव को व्यक्त करती हैं हाथों में लगे हुए मेहंदी पर?
1: बिल्कुल, इसी भाव को बता रही हैं पूनम त्यागी अपनी आवाज़ में, तो सुनते हैं ये लोकगीत पूनम त्यागी की आवाज़ में।

0: और साथ साथ ये भी बता दें कि लोक रंजनी कार्यक्रम के साथ साथ जो अगला कार्यक्रम भी हमारा होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। 6:30 बजे हमारा कार्यक्रम होगा ग्राम संसार,
1: और भाई 7:05 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। तो ये दोनों कार्यक्रम भी हम लेकर आपके साथ फिर से हाजिर होंगे
0: जी।
1: और इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।
0: तो इसी के साथ आज का हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी सुनने वाले हमारे श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और मेरे साथ हैं
3: अभिनव कुमार झा। नमस्कार साथियों।
2: और सबसे पहले ये बता देते हैं आज कार्यक्रम में क्या है खास। रोज की तरह आईपीएल पर तो चर्चा होगी ही, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रोमांच और भी बढ़ता जा रहा है। हर टीम को जीत की दरकार है और कल खेले गए मुकाबले के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ आज शाम होने

दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मुकाबले पर पूर्वावलोकन भी हम आज जरूर आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप जो ताशकंद में खेली जा रही है उस पर खास रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 शंघाई में खेला जा रहा है और उस पर जुड़ी भी खास आपको रिपोर्ट और वहाँ का ताज़ा हाल भी आपको बताएंगे। AFC अंडर 17 एशियन कप विमेन इंडिया वर्सेस लेबनान पर खास रिपोर्ट आपको सुनवाई जाएगी और साथ ही साथ एक खास रिपोर्ट जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है एक बहुत ही छोटे गांव पर आधारित, वो उससे जुड़ी भी भेंटवार्ताएं और चर्चा आपको सुनवाएंगे। ट्रैप इवेंट ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन अल्माटी कजाकिस्तान में जो खेला जा रहा है उसके जो 75 टारगेट्स के बाद जो रैंकिंग है उसके बारे में आपको बताएंगे। स्क्वैश की बात करेंगे, PSA वर्ल्ड चैंपियनशिप और इसके अलावा चेस और DPL भी ज़रूर होंगे।

0: आईपीएल का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल से पता चलता है अब शुरू हो रहा है आईपीएल की ताज़ा जानकारी। कल खेले गए मुकाबले की सबसे पहले बात करते हैं। जो मुकाबला 50वां मुकाबला था आईपीएल 2026 का और ये लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में था। इस 50वें मुकाबला ये इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और बारिश से प्रभावित मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे एलएसजी की शुरुआत दमदार रही। मिचेल मार्श और अर्शन कुलकर्णी की सलामी जोड़ी ने मिलकर पहले विकेट के लिए 56 गेंदों में 95 रन जोड़े और अर्शन एक छोर संभाल कर खड़े रहे तो दूसरे छोर से मार्श ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। मैच के 9वें ओवर में तेज बारिश शुरू होने के कारण मुकाबले को रोकना पड़ा। मैच दोबारा शुरू हुआ तो अर्शन 24 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शन के बाद मार्श को निकोलस पूरन के रूप में एक और बढ़िया जोड़ीदार मिला और मार्श ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। 14वें ओवर का अंत होते ही फिर से बारिश ने मैच में खलल डाला और मुकाबले को रोकना पड़ा। बारिश के कारण समय बर्बाद हुआ और इसकी वजह से ओवरों में कटौती की गई और मुकाबले को 19-19 ओवर का कर दिया गया। बारिश की वजह से दूसरी बार ब्रेक के बाद मार्श 56 गेंदों में 111 रन बनाकर जॉश हेजलवुड का शिकार बने। अपनी शतकीय पारी में मार्श ने 9 छक्के लगाए और पूरन ने 23 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 38 रन बनाए। वहीं अंत के ओवरों में कप्तान ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 10 गेंदों में 32 रनों की नाबाद पारी खेली जबकि एडन मार्करम 1 रन बनाकर नाबाद रहे और गेंदबाजी में आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड और कृणाल पांड्या ने एक एक विकेट अपने नाम किया। और वहीं खास प्रदर्शन रहा लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर प्रिंस यादव का जिन्होंने जब आरसीबी बैटिंग करने आई तो उनकी पहली 3 विकेटें अपने नाम करी जैकब बैथल कोहली और पाडिकल की। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं प्रिंस यादव।
1: सर, ड्रेसिंग रूम का माहौल पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा ही है। क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है बिल्कुल, बट ये है कि हमारी टीम एफर्ट्स कर रही है पूरा अपना और प्लेऑफ्स के बारे में ज़्यादा ना सोच के हम पर मैच बाय मैच सोच रहे हैं सर, अच्छा करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। भैया, विकेट के बाद मेरे को अच्छा लगा बट सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को ये है कि हम जीते मैच। अगर मैं विकेट लेता और हम हार जाते तो इतना वो नहीं होता, बट ये है कि सबसे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए है कि मेरी टीम जीती।
2: या अलग अलग तरीका हो या एक तरीका हो, बॉलर जब विकेट लेता है तो ये है कि अच्छा तो फील होता है, बट मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे आउट करके ही हम मैच जीत सकते थे तो वही हुआ और तो अच्छा फील हो रहा है भैया बिल्कुल। सर के साथ लगातार बातें होती रहती है, इनफैक्ट मोहम्मद शमी भैया भी है वहाँ पे, कैसे क्या डिलीवर करना है सिर्फ यही बातें हो रही है सर।
1: भैया से नए बॉल के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट सबसे अच्छी बात उनकी मेरे को ये लगती है कि जब भी कोई बॉलर बॉल डाल रहा होता है तो मिड ऑन या मिड ऑफ खड़े होते हैं, तो उससे ये होता है कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आपके साथ खड़ा है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है।
0: लखनऊ सुपर जायंट्स लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खराब रही थी और पारी के पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने बैथल को पवेलियन भेजा। बैथल ने 4 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद दूसरे ओवर में प्रिंस यादव ने विराट कोहली के रूप में आरसीबी को बड़ा झटका दिया और कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद रजत पाटीदार देवदत्त पाडिकल के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रनों की शानदार साझेदारी हुई और इस दौरान पाटीदार ने लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, लेकिन फिर प्रिंस यादव ने एक ही ओवर में आरसीबी को 2 झटके दिए। 11वें ओवर की पहली गेंद और प्रिंस ने देवदत्त पाडिकल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पाडिकल 25 गेंद और 34 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा को 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। और क्या कहते हैं रजत पाटीदार अपने प्रदर्शन और टीम के प्रदर्शन को लेकर, आइए सुनते हैं।
3: मिचेल मार्श ने मतलब काफ़ी अच्छी बैटिंग करी इस विकेट पे और विकेट भी अच्छा था, बैटिंग ट्रैक था और उसके साथ जिस तरह से उसने पावर प्ले में स्टार्ट किया हम पे प्रेशर आया था एक तरीके से। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि जिस तरह हमने हमारे बॉलर्स ने उसको कंट्रोल किया, फिर बीच में ब्रेक भी हुआ, बारिश भी हुआ, तो आई थिंक हमको टाइम भी मिला सोचने का। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था और जिस तरह हमने फिनिश किया था, आई थिंक मुझे लगता है मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आई थिंक द वे वी बोल्ड, द वे वी कंट्रोल द गेम, जैसा कि अब गेम में मुझे ऐसा लगा दो शॉट पीछे थे बस, नौ रन से आई थिंक मैच को हमने लूज़ किया है। और देव, आई थिंक देव बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है देव। आई थिंक वो लग भी रहा है मुझे, हम जिस तरह नेट्स में एक दूसरे के साथ हम बैटिंग करते हैं पेयर्स में, तो उसको देख के काफ़ी सीख भी रहा हूँ उससे। आई थिंक तो अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड में देव।
0: और अब बात कर लेते हैं आज शाम होने वाले मुकाबले की। 51वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज शाम अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली के लिए यह मैच करो या मरो का होने वाला है और इस मैच में हार दिल्ली के लिए प्लेऑफ के रास्ते बंद कर देगी। वहीं केकेआर भी जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी। दोनों टीमों के बीच सीजन का पहला मुकाबला है और दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद टीम के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट आई और पिछले 8 मैचों में डीसी 6 मैच हार चुकी है और कुल 10 मैचों में 4 जीत के साथ डीसी अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। एक और हार डीसी के लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद कर सकती है। वहीं केकेआर के लिए सीजन की शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही थी। टीम ने लगातार 5 मैच गंवाए थे और एक बारिश की वजह से स्थगित हो गया था। टीम बेहद असंतुलित और कमजोर भी नजर आ रही थी, लेकिन टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने पिछले 3 मैच जीते हैं और डीसी के खिलाफ भी जीत का चौका लगाने के लिए केकेआर कमर कसकर आया है। दोनों टीमों के अगर मैचेस की बात करें तो कुल 35 मैच खेले गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स 15 जबकि केकेआर 19 मैचों में विजयी रहा है और एक मैच का परिणाम नहीं आया है।

चाइना के शंघाई में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 से भारत के लिए बड़ी खबर ये है कि वुमेन रिकर्व में भारतीय तीरंदाज सिमरनजीत कौर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं दूसरी ओर कंपाउंड मेन में भी साहिल राजेश यादव सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और हमारी रिकर्व वुमेन टीम तो पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां वो 10 मई को चाइना के खिलाफ फाइनल खेलेगी। रिकर्व स्पर्धा की बात करें तो महिला एकल में आज तड़के तीसरे राउंड के मुकाबले खेले गए, जहां सिमरनजीत कौर ने चाइना की यू को 6-4 से हराया। चौथे राउंड में उनका सामना तुर्की की उज़्कान से हुआ, जिनको सिमरन ने एक दिलचस्प मुकाबले में 6-5 से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में उनके सामने थी चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी फोंग यू झू, जिन पर उन्होंने एक तरफा मुकाबले में 6-0 से जीत दर्ज की और रिकर्व महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहां उनका मुकाबला विश्व की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की कॉन्ग चे यंग से होगा, जो कि 10 मई को खेला जाएगा। देखा जाए तो सिमरनजीत कौर पदक से केवल एक कदम दूर है और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सेमीफाइनल की इस कड़ी चुनौती को पार करने के लिए वो किस माइंडसेट से उतरती हैं। वहीं दूसरी ओर दीपिका कुमारी ने भी रिकर्व महिला एकल में अपने तीसरे राउंड का मुकाबला वियतनाम की खिलाड़ी से 6-0 से जीता, लेकिन चौथे राउंड में उन्हें साउथ कोरिया की कैंग चे यंग के हाथों 6-4 से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे राउंड में ही भारत की तीसरी खिलाड़ी कुमकुम अनिल मोहोद को भी मंगोलिया के खिलाड़ी पर 7-1 से जीत मिली, पर वो भी अपने जीत के सिलसिले को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाई और चौथे राउंड में मेक्सिको की अलेक्जेंडर वेलेंसिया के हाथों 7-3 से हार गई। वहीं तीसरे राउंड में ही भारत की अंकिता भगत को चाइनीज ताइपे की फोंग यू झू ने 6-5 से हराया। अब बात करते हैं रिकर्व

0: पुरुष एकल की। उसमें भी अपने यूएसए प्रतिनिधि जैक विलियम्स को 6-0 से शिकस्त दी और चौथे राउंड में फ्रांस के जीन चार्ल्स ने उन्हें 6-0 से हरा दिया, जिसके साथ ही रिकर्व मैन में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। अब अगर बात करें आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के कंपाउंड मैचेस की, तो पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के साहिल राजेश जाधव ने ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी निको विनर को 147 के बराबर अंक के बाद शूट ऑफ में 9 के बदले 10 पॉइंट से मात दी। अब उनका सेमीफाइनल मुकाबला कल फ्रांस के वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी निकोलस गिरार्ड से होगा। पुरुष एकल के एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कुशल दलाल को डेनमार्क के खिलाड़ी मार्टिन के हाथों एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैच खत्म होने पर दोनों ही खिलाड़ियों के 147 पॉइंट्स थे साथियों, जिसके फलस्वरूप खेल शूट ऑफ में पहुंचा और वहां भी स्कोर 10-10 से बराबर रहा, जिसके बाद डेनमार्क के खिलाड़ी का तीर बुल आई से ज्यादा नजदीक होने के कारण उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। बात करें महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, तो वहां भी अदिति गोपीचंद स्वामी को अपने एस्टोनिया के प्रतिद्वंदी से वैसे ही हार का सामना करना पड़ा जैसे पुरुष एकल में कुशल दलाल को। अदिति और कुशल के मैच और शूट ऑफ के स्कोर्स तक बराबर रहे, मानो ऐसा लग रहा था कि उसी मैच को रिप्ले चला दिया गया हो, बस तीरंदाज बदल दिए गए हों। अदिति के साथ ही महिला कंपाउंड एकल में भारत की चुनौती समाप्त हुई।
1: और अब बारी है एक खास भेंटवार्ता और रिपोर्ट, जो एक खेल से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री रिलीज पर आधारित है और ये हमारे सहयोगी शाहिद आजमी के सौजन्य से है, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स श्री मनसुख मांडविया बता रहे हैं कैसे एक छोटा सा मध्य प्रदेश शहडोल का बिचरपुर गांव, जो मिनी ब्राज़ील के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ फुटबॉल के प्रति प्रेम और परिवर्तन ने कैसे अपने भविष्य को नई दिशा दी है। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में बीती शाम एक ऐसी प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसने खेल और सामाजिक बदलाव की एक अनोखी मिसाल को देश के सामने रखा। डॉक्यूमेंट्री का नाम है बिचारपुर जुनून फुटबॉल का, जिसे डीडी स्पोर्ट्स के सौजन्य से निर्मित किया गया है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव बिचारपुर की, जहाँ फुटबॉल अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि युवाओं की नई पहचान और बेहतर भविष्य की उम्मीद बन चुका है। खास बात यह है कि इस गांव और यहां के युवाओं के फुटबॉल के प्रति जुनून की चर्चा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है, तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहाँ से आ गया, यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है बिचारपुर, बिचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था, तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है।
2: इस विशेष स्क्रीनिंग में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विशेष रूप से मौजूद रहे। डॉक्टर मांडविया ने कहा,
4: एक बिचारपुर गांव और गांव में युवा कई व्यसनों की ओर आगे बढ़े थे, कई टाइप की समस्याएं थी। एक स्पोर्ट्स ने उसको कैसे दिशा दी, गांव को कैसे बदला, स्पोर्ट्स में क्या ताकत होती है, जब प्रसून जी बता रहे थे। दोस्तों, स्पोर्ट्स मेंटल एक्सरसाइज भी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी है। स्पोर्ट्स एक कल्चर है, स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट एवरी एनिमल। आप देखिए, जब आप जंगल में भी देखिए, जब एनिमल खुश होते हैं तब वो भी खेलते हैं। आप खेलते हुए और खिलते हुए भी देखते होंगे, यही सृष्टि का क्रम है, यही आप जीवंत होने का उदाहरण है। और इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी खेलने की, खुश होने की जो स्किल है, उसको ही स्पोर्ट्स कही जाती है। और दोस्तों, स्पोर्ट्स दोनों को एंगेज रखते हैं, माइंड को भी, तन को भी, मन को भी, दोनों को एंगेज रखने का ही फायदा ये हुआ। इस गांव में जो यहाँ आपके सामने आया, उसके पहले मैंने कहा कि जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, तो जरा उसकी पृष्ठभूमि मुझे ब्रीफ करिए। तो मेरी ऑफिस मुझे ब्रीफ कर रही थी। युवा 25 साल पहले गांव और युवा का मार्ग अलग था, लेकिन जब वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने लगे, फुटबॉल के साथ जुड़ने लगे, तो उसका मन भी काम में लग गया और तन भी काम में लग गया। तो जो दूसरा रास्ता था वो बदल के एक सही

0: रास्ते पे चल पड़े। ये तो ताकत स्पोर्ट्स की। लेकिन स्टोरी एक गांव की ये है कि उन्होंने ये संकल्प करा के हमें बदलना। और दोस्तों, परिवर्तन ही जीवन का परम सत्य है। हमें जो बदलना है तो हमें परिवर्तन करना होगा।
1: डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद बिचारपुर गांव के युवाओं ने फुटबॉल को अपना जुनून बनाया और पूरे इलाके की पहचान बदल दी। कई युवा जो कभी गलत रास्तों की ओर बढ़ रहे थे, आज मैदान में अपने सपनों और भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में जो खिलाड़ी नजर आए हैं या जिन पर फोकस किया गया है, उनमें एक है सुहानी, जिन्होंने अपने खेल कौशल के दम पर जर्मनी तक का सफर तय किया। उसने हमसे बात की।
2: मेरा नाम सुहानी कोल है और मैं 16 साल की हूँ।
3: आपका फुटबॉल में आना कैसे?
2: पहले मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फुटबॉल में। फिर मेरे कोच रहीम सर है, उन्होंने मुझे बोला कि तू फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दे। फिर मैं रहीम सर के पास रोज शाम को प्रैक्टिस में जाती थी, तो बस खेलने के लिए जाती थी। फिर मैं फर्स्ट टाइम 2023 में अपना फर्स्ट स्टेट खेली थी, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ, मैंने स्टेट खेला तो मैं नेशनल भी खेल सकती हूँ। फिर तब से मैंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया फुटबॉल पे और आज यहाँ पर हूँ इतने बड़े लेवल पर।
3: जी, आप जर्मनी की यात्रा की थी, वहाँ क्या आपने सीखा? जब पहली बार पैर रखा, फुटबॉल का गढ़ कहा था, वहाँ क्या सीखा आपने?
2: मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि आपके पास जैसा भी ग्राउंड हो, आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं। जैसे हमारे गांव में हमारे पास अच्छा पिच नहीं है और जर्मनी में आर्टिफिशियल ग्राउंड थे, तो हमने सीखा कि अगर हम मिट्टी वाले ग्राउंड में खेल सकते हैं अच्छा, तो हम आर्टिफिशियल ग्राउंड में भी अच्छा खेल सकते हैं।
3: आखिरी सवाल पूछूंगा, फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही हैं आप सुहानी?
2: मैं सोच रही हूँ कि मुझे बस एक बार तो नहीं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, वो भी बार बार, और मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूंगी।
3: फैमिली के बारे में बता दीजिए, फैमिली में और कौन कौन खेलता है?
2: मेरे फैमिली में तो ऐसे कोई नहीं है। मेरे दादाजी थे जो खेलते थे, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। मैं जब फुटबॉल नहीं खेलती थी तभी मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी।
1: वहीं इस डॉक्यूमेंट्री में प्रमुख रूप से दिखाई गई कोच ने बताया है कि बिचारपुर में फुटबॉल अब केवल खेल नहीं बल्कि गांव की संस्कृति और युवाओं की ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है।
4: हाय लक्ष्मी सहीस, मैं बिचारपुर फुटबॉल कोच, और मैं बताना चाहूंगी कि पहले जो भी फुटबॉल खेलते आ रहे हैं वो तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, और जब से मैं जानने लगी हूँ तब से मैं फुटबॉल को बहुत अच्छे से जानने समझने लगी, और मैं अपने भाई बहन के साथ फुटबॉल ग्राउंड जाती थी और डेली प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे ही फिर कोच आए और वो टेक्निक पे काम किए, मुझे फुटबॉल और अच्छे तरीके से सिखाए ताकि मैं एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर पाऊँ, और तब जाके मुझे स्टेट और नेशनल लेवल पे मैं खेली हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गाँव मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे गांव का इतना नाम हुआ है, और हमारे फैमिली का, गांव वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी।
3: अच्छा, ये बताइए, वहाँ फुटबॉल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्यों घर घर में, नस नस में फुटबॉल बसा हुआ है?
4: क्योंकि जिसकी फैमिली फुटबॉल फैन हो या फिर फुटबॉल खेलते आ रहे बचपन से, उनके बच्चे तो खेलेंगे ही, और मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, और पूरे फैमिली, पूरे गांव के जितने भी पेरेंट्स हैं सब सपोर्ट करते हैं कि आप फुटबॉल ही खेलो। हमारे गांव में सिर्फ फुटबॉल के अलावा कोई गेम होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आगे चल के हमारा जो गांव है वो सक्सेस होगा फुटबॉल के नाम से, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर फुटबॉल के बेस में अगर हमारा गांव इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाए।
1: अब जब बड़े बड़े टूर्नामेंट और प्रोफेशनल लीग्स सुर्खियों में रहते हैं, तब बिचारपुर जुनून फुटबॉल का जैसी कहानियां या याद दिलाती कि असली खेल क्रांति गांव की मिट्टी से निकलती है। आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी दिल्ली के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
5: और अब श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं कजाकिस्तान के अल्माटी, जहां आयोजित हो रहा है ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2026। उसके दूसरे चरण में आज से ट्रैप स्पर्धा की शुरुआत हो रही है, जो भारतीय दल के लिए अपनी छाप छोड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इससे पहले अल्माटी में ही खेले गए 4 और 5 मई को स्कीट स्पर्धा में भी भारत को पदकों के मामले में निराशा हाथ लगी थी। भारतीय निशानेबाजों की नज़र अब कजाकिस्तान की शूटिंग रेंज पर टिकी है। भारतीय पुरुष ट्रैप टीम में इस बार कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अनुभवी निशानेबाज जैसे पृथ्वीराज टोंडेमन और किनन चेनाई की अनुपस्थिति में युवा प्रतिभा विवान कपूर भारतीय चुनौती की कमान संभाल रहे हैं। उनके साथ टीम में एहवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, अली अमान इलाही और उदयवीर सिंह जैजी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं। महिला ट्राइब्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व

0: मनीषा कीर, प्रगति दुबे और नीरू कर रही हैं। विधि सिंह और वर्षा वर्मन भी उनका साथ दे रहे हैं। ट्रैप इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में पुरुष और महिलाएं कुल 125 लक्ष्यों पर निशाना साधते हैं। श्रोताओं, अंत में शीर्ष स्कोर वाले 8 खिलाड़ी फाइनल में प्रवेश करेंगे, जहां पदक का फैसला एलिमिनेशन राउंड के जरिए किया जाएगा। ये खेल पूरी तरह से आपकी प्रतिक्रिया समय और मानसिक मजबूती पर निर्भर करता है। वहीं आज ट्रैप इवेंट में 125 में से 75 टारगेट के बाद भारतीय खिलाड़ियों की क्या परिस्थिति रही, वो कौन से स्थान पर हैं, आइए जानते हैं। ट्रैप वुमेन में मनीषा कीर 69 स्कोर के साथ 17वें स्थान पर बनी हुई हैं। नीरू 68 स्कोर के साथ 21वें स्थान पर बनी हुई हैं। प्रगति दुबे 65 स्कोर के साथ 35वें, विधि सिंह 62 स्कोर के साथ 46वें और वर्षा वर्मन 61 स्कोर के साथ 48वें स्थान पर बनी हुई हैं। वहीं बात करें पुरुष वर्ग की तो उदयवीर सिंह 71 स्कोर के साथ 22वें स्थान पर बने हुए हैं। शपथ भारद्वाज 71 स्कोर के साथ 31वें स्थान पर बने हुए हैं। एवर रिजवी 68 स्कोर के साथ 55 स्थान पर। अली अमन इलाही 66 स्कोर के साथ 67वें स्थान पर और विवान कपूर 70 स्कोर के साथ 37वें स्थान पर बने हुए हैं। बाकी के 50 टारगेट कल लगाए जाएंगे और फिर देखना ये होगा कि कौन से खिलाड़ी टॉप 8 में आते हैं। जो टॉप 8 में आएंगे वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। साथियों,
1: बिल्कुल, इस बार हमारे शूटर से बहुत उम्मीदें हैं और प्रदर्शन की लगातार आपको कवरेज, आपको जो भी रुझान और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपको कार्यक्रम में दिए जाते रहेंगे। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्क्वैश की। इंडिया का 4 सदस्यों वाला पुरुष दल आज से मिस्र के गीजा में शुरू हो रही वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप में अपनी मजबूत छाप छोड़ने की कोशिश करेगा। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई अभय सिंह करेंगे और अभय साथ वीर चोटवानी, रमित टंडन और वेलवान सेंथिल कुमार भी चुनौती पेश करेंगे। यह चैंपियनशिप आज से 16 मई तक गीजा के पाम हिल्स क्लब और पीजीसी गोल्फ सेंट्रल मॉल में होगी। इंडिया के पुरुष सिंगल्स ड्रॉ में टॉप रैंक वाले खिलाड़ी अभय सिंह को इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अपने ही देश के खिलाड़ी वीर चोटवानी का सामना करना होगा और अभय अभी दुनिया में 22वें नंबर पर हैं और इस टूर्नामेंट में इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद माने जा रहे हैं। पर पूरे मुकाबले की विजेता को दूसरे राउंड में डिफेंडिंग चैंपियन मुस्तफ़ा असल या जर्मनी के राफेल कांद्रे के खिलाफ और भी मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वेलावन सेंथिल कुमार को भी एक मुश्किल ओपनर मिला है और वह फ्रांस के 6 सीडेड विक्टर क्रुएन से भिड़ेंगे जो अभी दुनिया के 5वें नंबर पर है। और इस बीच रमित टंडन और अपने कैंपेन की शुरुआत मिस्र के करीम एल टर्की के खिलाफ करेंगे। 40वें नंबर की रैंकिंग वाले भारतीय खिलाड़ी का मकसद टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए अपने से ऊंची रैंक वाले मिस्र के खिलाड़ी को हराना होगा। इंडिया पिछले साल शिकागो में हुए संस्करण में जल्दी बाहर हो गया था और इंडिया का सफर दूसरे राउंड में ही खत्म हो गया था। इस साल की प्रतियोगिता में भारतीय होनहार युवा महिला खिलाड़ी अनत सिंह हिस्सा नहीं लेंगी। इंडिया अभी भी वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में सिंगल्स कैटेगरी में अपने पहले मेडल की तलाश में है और देश को उम्मीद है कि लॉस एंजलिस में 2028 के समर ओलंपिक में स्क्वैश के डेब्यू से पहले वह इसमें सफलता हासिल करे। तो ये तो थी स्क्वैश की बात और आइए अब बात कर लेते हैं AFC अंडर 17 एशियन कप वुमेन की और चलते हैं अभिनव के पास।
0: AFC अंडर 17 विमेन एशियन कप 2026 के अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में भारतीय महिला टीम ने लेबनान पर 4-0 की धमाकेदार जीत दर्ज कर इतिहास रचने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। चीन के सुझाव में खेले गए इस मुकाबले में यंग टाइग्रेस पूरी तरह हावी रहीं। मैच की शुरुआत प्रतीका बर्मन ने 6 मिनट में गोल करके की, जिसके बाद अलवा देवी ने 35वें मिनट में गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में भी भारत का दबदबा कायम रहा और जोया ने 71वें मिनट में तीसरा गोल दागा और फिर 84वें मिनट में प्रतीका ने अपना दूसरा व्यक्तिगत गोल करते हुए भारत की जीत पर मोहर लगा दी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती हार के बाद भारत के लिए ये जीत अनिवार्य थी। साथियों, इस शानदार प्रदर्शन और बड़े गोल अंतर की बदौलत भारत ने ग्रुप बी में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। अब भारतीय टीम की क्वार्टर फाइनल में जगह पूरी तरह से अन्य ग्रुप के परिणामों पर टिकी है, क्योंकि शीर्ष दो सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी आगे बढ़ेंगी। भारत तीसरे स्थान की 3 टीमों में 3 अंक और -1 गोल अंतर के साथ फिलहाल दूसरे नंबर पर है। ग्रुप सी से तीसरे नंबर की टीम फिलीपींस 0 अंक और -13 गोल अंतर के साथ ओवरऑल 9वें नंबर पर है। आज देर शाम ग्रुप सी के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे और फिलीपींस का मुकाबला होना है। यदि फिलीपींस ये मैच 13 गोल अंतर से जीत जाता है तो भारत को गोल अंतर के मामले में पछाड़ कर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और यदि फिलीपींस 14 गोल अंतर से मैच गंवाता है तो उस स्थिति में चीनी ताइपे क्वालिफाई

0: ताशकंद उज्बेकिस्तान में महाद्वीपीय मंच पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए 12 पदक पक्के किए। सबसे आगे रहते हुए राखी, जो 46 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं, उन्होंने संयमित प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की, जबकि खुशी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कोरिया के खिलाफ पहले राउंड में RSC जीत के साथ अपना आक्रामक इरादा दिखाया। ममता 52 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने जॉर्डन के खिलाफ राउंड 2 में RSC जीत के साथ पदकों की संख्या में इजाफा किया। अन्य शानदार प्रदर्शनों की बात करें तो लक्ष्मी ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलिया के खिलाफ तीसरे राउंड में RSC जीत दर्ज की, जबकि नव्या ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चीनी प्रतिद्वंदी को 5-0 से हराकर दबदबा कायम रखा। इशिका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीत का सिलसिला जारी रखा और मंगोलिया के खिलाफ राउंड 2 में RSC जीत हासिल की। बाद के मुकाबलों में भी भारतीय दल ने कई दमदार जीत दर्ज की। हरनूर ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में और हिमांशी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में दोनों ने चीनी ताइपे के खिलाफ पहले राउंड में RSC जीत हासिल की, जबकि ज्योति ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन से मिली जीत के बाद आगे बढ़ी। गुरसीरत ने 80+ किलोग्राम भार वर्ग में तजाकिस्तान के खिलाफ 4-0 की ठोस जीत के साथ जीत का सिलसिला पूरा किया। दिन की एकलौती हार में ओवी ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में एक करीबी मुकाबले में उज्बेकिस्तान से दो तीन से हार गई। लड़कों की श्रेणी में नरेंद्र कुमार नेल्ला, जो 44 और 46 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने RSC जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जिससे सभी वर्गों में भारत का मजबूत प्रदर्शन और बढ़ा। 12 पदक पक्के होने और RSC जीत के साथ कई दमदार प्रदर्शनों के दम पर भारतीय दल एशियाई स्तर पर अपनी गहराई और उभरती प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखे हुए है। साथियों,
1: और अब बात कर लेते हैं चेस की। विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने कल भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी को सडन डेथ प्लेऑफ में हराकर टेपे सेगमेंट एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। मुख्य टूर्नामेंट में अपराजित रहने वाले अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन खिताबी मुकाबले में उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। टाई ब्रेकर की 2 बाजियों में दोनों खिलाड़ियों ने एक एक जीत दर्ज की, और जिसके बाद मुकाबला सडन डेथ तक पहुंचा, जहां कार्लसन ने बाजी मार ली। यह दूसरी बार है जब अर्जुन इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खिताब जीतने से चूक गए, और इससे पहले 2024 में भी वे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे थे। अर्जुन अंतिम राउंड में 4.56 अंकों के साथ एकल बढ़त पर थे, जबकि कार्लसन और यागिस्कान अपने आधे अंक पीछे थे। अगर अर्जुन अंतिम राउंड में एंडी वुडवर्ड को हरा देते तो वह सीधे चैंपियन बन जाते, लेकिन मुकाबला ड्रॉ रहने के कारण कार्लसन को बराबरी का मौका मिल गया। वहीं दूसरी ओर विश्व चैंपियन डी गुकेश ने सुपर रैपिड और ब्लिट्स टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग के 9वें और अंतिम दौर में अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआनो को हराकर संयुक्त 4था स्थान हासिल किया, और कुछ महीनों से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले गुकेश ने इस तरह से अपने फॉर्म में वापसी करी, और रैपिड वर्ग के बाद अब ब्लिट्स वर्ग में 18 दौर की बाजियां खेली जानी है। और रैपिड के अंतिम दिन 19 वर्षीय गुकेश ने फ्रांसीसी ग्रैंडमास्टर मैक्सिक वाचियर और लाग्रेव के खिलाफ हार के साथ शुरुआत की, और फिर 8वें दौर में स्लोवानिया के व्लादिमिर के साथ ड्रॉ खेला।
0: और श्रोताओं, अब समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा है, तो प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे अभिनव कुमार झा और मेरे सहयोगी दीपिका जसवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
4: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं, और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
3: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरिक कड़गम TVK को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन

0: समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from the BJP-ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has been seeking support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. VCK is likely to announce its decision after the meeting this evening or tomorrow. In another political development, the state BJP president Nayanar Nagendran has clearly said that the party gracefully accepted the election results. Interacting with media, he said the BJP does not wish to align with the TVK in any attempt to form the new government in the state of Tamil Nadu. Somnath Amritpur will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amritpur on the 11th of this month at Prabhas Patan Somnath. Speaking to the media, Gujarat Minister Jitu Bhai Vaghani said the Prime Minister will lead a 1 kilometer long mega roadshow from the Triveni helipad to the statue of Veer Amirji Gohil. Prime Minister Modi will also perform the Kumbh Abhishek, Dhwaj Puja and Mahapuja at the Somnath Temple. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. Raksha Mantri Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial. He described it as a significant development in advancing India's indigenous defense capabilities. Tara is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. It has been designed and developed by the research center Imarat Hyderabad along with other DRDO laboratories. India and Singapore have stressed the importance of bilateral cooperation in countering terrorism as strategic partners. The fifth meeting of the Joint Working Group on Combating Terrorism and Transnational Crime between India and Singapore was held in New Delhi yesterday. The Joint Working Group agreed that confronting terrorism requires concerted action in a sustained and comprehensive manner. The government has said that domestic LPG supply across the country is smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that government's effort has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. Ministry of Ports, Shipping and Waterways has said government continues to engage with every stakeholder to ensure the welfare of all Indian seafarers and uninterrupted maritime operations. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that the government continues its outreach to countries in the Gulf. Informed as part of that, Foreign Secretary Vikram Misri paid an official visit to the UAE yesterday. In Indonesia, 3 people were killed after Mount Dukono volcano erupted this morning. Rescuers have found all the survivors from a group of 20 hikers who went missing after the eruption. According to police, 15 people have been taken to hospitals to treat for their injuries. India's Simranjeet Kaur has advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. And with that, we end this news bulletin.
4: AM Akashvani Dehli Asti. Sanskrit Vartayaha Vishayosti Sanskrit Bhasha aur Pradyogika Samanvaya. Vartakarta Asti डॉक्टर भूपेंद्र कुमार श्रोतारः संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपरायाः मूल स्रोतः अस्ति यया वेदोपनिषद पुराण आयुर्वेद ज्योतिष गणित व्याकरण तर्क दर्शन आदि विषयाणां आद्य ग्रंथाः रच्यन्ते स्म संस्कृतं देववाणी इति नाम्नापि प्रसिद्धमस्ति एषा भाषा न केवलं धार्मिक ग्रंथानां वाहिका अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क सुसंगत व्याकरण व्यवस्था च अस्ति अपरपक्षे आधुनिक युगम सूचना प्रौद्योगिक्याः युगम इति कथ्यते एषः एव युगः यत्र कृत्रिम बुद्धि AI इति यंत्र शिक्षणं प्राकृतिक भाषा प्रक्रिया करणं NLP रोबोटिक्स अंतर्जालेन च अस्माकं जीवन शैलीं पूर्णतया परिवर्तयति एतादृशी परिस्थितौ यदि संस्कृत सदृशीं सुसंरचितां समृद्धां च भाषां आधुनिक प्रौद्योगिकी भी सह संयोज्यते तर्हि न केवलं संस्कृतस्य पुनरुत्थानं संभवति अपितु वैज्ञानिक जान।

0: नेतृत्वेन निर्वाचितः येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्। विधायक दलस्य सभायाम् अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत् तथा च केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठ नेतॄणां च उपस्थितौ औपचारिकरूपेण घोषितम्।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 11 दिनांके गुजरात राज्यस्थितस्य सोमनाथ मंदिरस्य दर्शनं करिष्यति। 1950-1990 वर्षे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपतिना डॉ. राजेन्द्र प्रसादेन नवीकृतस्य मंदिरस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। तस्याः ऐतिहासिक घटनायाः 75 वर्ष पूर्तेः स्मरणार्थम् एषा यात्रा आयोज्यते। अद्य प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य राष्ट्रिय दैनिके लेखे एषा सूचना प्रदत्ता। स्वस्य लेखे सः उक्तवान् यत् गत केषुचित् मासेषु सोमनाथ सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं तस्य कृते महान् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। अस्य वर्षस्य आरम्भे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सहभागित्वं कृतवान्। अयं कार्यक्रमः मन्दिरस्य उपरि जातस्य प्रथम आक्रमणस्य सहस्रवर्षपूर्त्यवसरे आयोजितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सोमनाथः भारतस्य सभ्यतायाः, शक्तेः, राष्ट्रिय एकतायाः, संघर्षशीलतायाश्च प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना इत्येताभ्यां ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा इति शस्त्रस्य प्रथमं साफल्यं उड्डयन परीक्षणं संपादितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्य सफलोड्डयन परीक्षणस्य कृते डीआरडीओ भारतीय वायुसेना डीसीपीपी तथा संबद्ध उद्योगान् अभिनन्दितवान्। सः एतत् भारतस्य स्वदेशीय रक्षाक्षमता संवर्धनस्य दिशि महत्वपूर्णं पदाक्षेपम् इति वर्णितवान्। तारा भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रप्रणाली इति अस्ति, या अमार्गनिर्देशित विस्फोटकान् सूक्ष्ममार्गनिर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। अन्याभिः डीआरडीओ प्रयोगशालाभिः सह सहयोगेन हैदराबादस्थितेन अनुसन्धानकेन्द्रेण अस्य परिकल्पना तथा विकासः कृतः। एषा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रप्रणाली स्वप्रकारे प्रथमास्ति, यस्याम् अत्याधुनिकाः अल्पव्ययुक्ताः प्रौद्योगिकयः उपयोजिताः सन्ति। एतत् न्यूनव्ययुतस्य शस्त्रस्य अग्निशक्तिं तथा लक्ष्यभेदन यथार्थतां वर्धयित्वा भूलक्ष्यान् प्रभाविरीत्या निष्प्रभाविकरोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विक आर्थिक स्थिरतायाः स्तंभरूपेण भारतस्य वर्धमान भूमिकायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान् तथा च अन्ताराष्ट्रिय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानं अवधानं प्रदत्तवान्। सुरीनाम देशे सुरीनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामं अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विकवृद्धेः IMF इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विकवृद्धेः 17% यावदस्ति।
2: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
2: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवनचक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधि दलस्य प्रमुखान संबोधयन आसीत।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृह्य LPG इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरणसंस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
4: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, PNG कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, RBI भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः CEO गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम। देखिए यमुना बहन, आज बहुत ही खास दिन है और हम सब के लिए ये गौरव का क्षण है क्योंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष का जो प्रसारण का दौर है वो आज पूरा हुआ है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी ने दशकों तक अगर देखा जाए प्रियंका, देश के कोने कोने तक समाचार, संगीत, संस्कृति, शिक्षा और जागरूकता का संदेश पहुँचाया है।

0: केवल एक रेडियो सेवा नहीं है बल्कि भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और भावनाओं को जोड़ने का सशक्त माध्यम भी है।
1: बिल्कुल। और देखिए, इस अवसर पर जहाँ मैराथन का भी आज सुबह सब प्रतिभागियों ने भाग लिया और जो विजेता थे उन्हें मेडल भी दिया गया, सम्मानित किया गया और बहुत ही अच्छा हेल्थ मोमेंट भी इससे जुड़ गया।
0: बिल्कुल, विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया जिसमें खास करके युवक युवतियाँ भी शामिल हुए और बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, फिट इंडिया की बात हम करें तो स्वस्थ रहना अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में।
1: देखिए, यमुना स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अभी आधुनिक जो डिजिटल का युग है वहाँ तक जो आकाशवाणी है निरंतर अपने साथ अपने श्रोताओं को जोड़े हुए है और लगातार जो प्रशंसक है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, युवक हैं, सभी इसकी लोकप्रियता इसमें फैली हुई है, सब जुड़ना भी चाहते हैं और हमारा भी यही ध्येय रहता है कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अधिक श्रोताओं को भी जोड़ें और सबको समान अवसर आगे बढ़ने का देते रहें।
0: बिल्कुल प्रियंका, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इसकी विश्वसनीयता की अगर हम बात करें, सरलता और जनसंपर्क हर पीढ़ी के बीच लोकप्रिय, जो अपनी लोकप्रियता है उसको बनाए रखा है, तो ऐसे में आज भी हम अपने श्रोताओं को खास करके बधाई देंगे, अपने आकाशवाणी की श्रोताओं को खास करके, कि वो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और उन्हीं से हम जीवंत हैं।
1: बिल्कुल, हम अपने कलाकारों को भी समय समय पर अवसर देते रहते हैं, साथ ही साथ हमारा जो कार्यक्रम है उसे किस तरह से बेहतर बनाया जाए उसके बारे में भी राय अपने कलाकारों से लेते रहते हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले एक ऐसी रागनी आपको सुनवाते हैं जिसमें भी स्वस्थ और निरोगी काया कैसे बनाए रखे उसी की बात की जाए।
0: बिल्कुल, वो संदेश दिया जा रहा है भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में, कलाकार जो हमारे हैं भूपेंद्र सिंह, और कैसे वो अपने जीवन में निरोगी काया रखना है इसके बारे में बताएंगे।

तुम स्वस्थ रहो और मस्त रहो, योग से आप दुरुस्त रहो। तुम स्वस्थ रहो और मस्त

0: फिटनेस की बात हो रही है प्रियंका, तो आज मुझे लग रहा है कुछ बातचीत ऐसी लेकर के आई हो जो स्वास्थ्य और फिटनेस से संबंधित है।
1: बिल्कुल, देखिए खो खो एक हमारा पारंपरिक खेल है और इसमें न सिर्फ हमारा शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि इसमें पूरा टीम वर्क होता है और अपनी टीम के साथ तालमेल सही बिठाने पर ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो जहां हमें तीव्रता से सारे निर्णय लेने होते हैं, शरीर की लचीलापन और तीव्र गति से हर तरीके का फैसला करना होता है जीत के लिए, तो बहुत ही जरूरी है खेलों के माध्यम से न सिर्फ
0: उठक बैठक बहुत ज़्यादा होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक पारंपरिक खेल और इसके लिए विस्तृत जो जानकारी है हम अपनी बातचीत के द्वारा अपने श्रोताओं को दिलवाएंगे और बातचीत का विषय है खो खो में फिटनेस और अभ्यास। और इसमें जानकारी दे रहे हैं खो खो टीम कोच सुधांशु मित्तल और इनसे बातचीत कर रही हैं मनजीत कौर।
2: हमारे साथ इस समय मौजूद है सुधांशु मित्तल जो कि प्रेसिडेंट है खो खो फेडरेशन से। सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में बेहद ही स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद आपका।
2: सर ये जानना चाहेंगे खो खो दिन प्रतिदिन बहुत ही प्रसिद्ध होता जा रहा है और ये एक भारतीय पारंपरिक खेल भी है, तो इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। जो हमारा यूथ है आज ग्रामीण से लेकर शहरों तक खो खो खेल रहा है, तो क्या कहेंगे?
3: ये एक बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए। देखिए हम लोग विदेश के खेल अपने यहाँ खेलते हैं, लेकिन ये सब रखना आंखों में कि भाई हमारे देश का खेल विश्व भर में खेला जाए, ये बड़ी चुनौती थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस चुनौती को स्वीकारा। आज खो खो का खेल विश्व के कोने कोने में ये खेल खेला जाता है। वो दिन दूर नहीं है जब हम 100 का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। खो खो की खासियत है, खो खो बहुत ही एक तेज खूब तर्रार गेम है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो चीजों के लिए आप देखते हैं, इसमें स्पीड है, इसमें स्टैमिना चाहिए होता है, इसमें रिफ्लेक्सेस है, इसमें स्ट्रैटेजी है, तो हर चीज वो जो कि एक अच्छे खेल में होनी चाहिए खिलाड़ी के लिए, वो सारी चीज इस खेल के अंदर मौजूद है और इसीलिए आज इसकी ख्याति बढ़ती जा रही है। और अभी हमने पिछले साल विश्व कप किया था जिसमें 23 देशों का टीमें आई थी, और अब कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप जिसको कि कॉमनवेल्थ गेम्स ने एंडोर्स करा है वो होने जा रही है 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। तो ये एक स्थिति है और रिसाल एशियन कप होगा, तो इसे लगातार खो खो जो है ऊंची छलांग मार रहा है।
2: बिल्कुल सर, और जो खो खो है वो हर जगह खेला जाता है, अगर हम गांव की बात करें शहरों की बात करें सब जगह खेला जाता है और यूथ इससे जुड़ रहा है, तो इसके नियमों के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे।
3: देखिए खो खो की खूबसूरती है कि इसमें पैसे नहीं लगते। अब एक शटल का डब्बा आप सोचिए 4,000 रुपए का आता था, कितने लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं? खो खो में कुछ लगता ही नहीं, और इसीलिए इसको हम मास स्पोर्ट कहते हैं। हिंदुस्तान के गली गली कोने कोने में खो खो खेला जाता है। आप किसी भी व्यक्ति से मिल लीजिए, आप उससे पूछे खो खो, उसकी आंख में चमक आ जाती है, वो कहता है मैंने भी खो खो खेला है। और इसीलिए ये व्यापक स्तर पर खेला गया है, इसकी जानकारी है, अब ये और प्रसिद्धि की ओर जा रहा है। खो खो की ये खूबसूरती नहीं कि हम लोगों ने इसके नियम कानून बदले हैं, हमने खो खो का कोर्ट भी छोटा कर दिया है, हमने खिलाड़ी जो फील्ड ऑफ प्ले में होते हैं वो भी कम कर दिए, हमने समय भी कम कर दिया, और हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा है, वो है वजीर का। तो इससे खो खो को एक अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो रोमांच होता है, जो मनोरंजन होता है, वो सारी चीजें इस खेल के अंदर हम लोगों ने डाल दी है।
2: सर किसी भी खेल के लिए फिटनेस एक अहम भूमिका निभाती है और खो खो एक ऐसा खेल है जिसमें फिटनेस ही एक कहें तो एकमात्र जरिया है डटे रहने का, क्योंकि 2 टीमें होती है और आपस में खो करके भागना होता है, तो फिटनेस के बारे में और अभ्यास के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए खो खो को अगर देखा जाए तो ये एक प्रिपरेटरी गेम भी है बाकी खेलों के लिए, क्योंकि इसमें स्टैमिना, स्पीड और रिफ्लेक्स 3 चीजें बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इसलिए अगर आपको सचिन तेंदुलकर जी का ध्यान हो, ये कहते थे कि मैं क्रिकेट खेलने से पहले खो खो जरूर खेल लेता था ताकि मेरे रिफ्लेक्सेस, मेरा स्टैमिना और स्पीड तीनों बढ़ जाए। तो ये किसी भी खेल के लिए प्रिपरेटरी खेल है। हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए बड़ा वैज्ञानिक तौर पे कैसे अपनी चरम सीमा पे पहुंचे की क्षमता की, इसका हमने पूरा प्रोग्राम बना रखा है। खो खो के अंदर स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग जो है किसी भी खिलाड़ी का हम उनका सारा बायोमैकेनिक और बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि उनके शरीर में किस चीज की कमी है, कहाँ तो न्यूट्रिशन में कमी है उनके, कहाँ उनकी कैपेसिटी है, उसमें चाहे मसल्स की हो, चाहे लिगामेंट्स की हो, चाहे पोस्चर की हो, चाहे टेक्निक की हो, ये सारी चीजें हम देखते हैं और उसको हम लोग वैज्ञानिक तौर पे देखने के बाद उनको हम रेक्टिफाई करते हैं ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को पीक कर सके। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, भोजन पे हमारा बहुत ज्यादा ख्याल है क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर जब तक उसको मिलेंगी नहीं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देगा। तो वो सारी चीजों को बड़ी वैज्ञानिक, और अच्छा इसमें और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है उसका मानसिक बल। हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे हम लोगों का बड़ा ख्याल है, तो हर प्लेयर के साथ एक साइकोलॉजिस्ट जो उसकी मनस्थिति को समझते हुए उसके मनस्थिति को कैसे ठीक रखा जाए और उसमें कैसे दृढ़ता आए एक जीते हुए खिलाड़ी बनने की। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में डाल रखी है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की, ताकि वो इनके जरिए अपने परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज कर सके।
2: बिल्कुल सर, अभी तो हम बात कर रहे थे फिटनेस की और आपने डाइट के बारे में भी बताया, और हम ट्रेनिंग की बात करें तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको किस तरीके की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और दी जाती है?
3: इसमें तीन एलिमेंट क्रिटिकल हैं, एक तो स्टेमिना, तो एक ट्रेनिंग होती है जिसमें उसके शारीरिक क्षमताएं जो बढ़ाई जाती है, भागने की क्षमताएं जो है बढ़ाई जाती है। दूसरा स्पीड, क्योंकि खो खो में एकदम से खड़े होकर आपको फटाक से भागना पड़ता है
2: जी,
3: और क्योंकि फेक बड़े होते हैं तो रिफ्लेक्सेस जो हैं वो खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इन तीनों की जो ड्रिल्स होती है, एक्सरसाइजेस होती है जो खेल के समय उनको हम सिखाते हैं कि कैसे इन चीजों को अपना और शार्पन करा जाए और कैसे इसमें उत्तीर्ण हो सके, ये सारी ड्रिल्स जो है एक्सरसाइजेस हम उनके लिए करवाते हैं।
2: और खो खो को हम देखें तो बहुत समय पहले से ही खो खो स्कूलों में खेला जाता है, गांवों में भी खेला जाता है, और अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से हमारे खो खो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वाकई काबिले तारीफ है। तो लीग्स के बारे में जरूर बात करेंगे कि किस तरीके की लीग्स आने वाले समय में होने वाली है।
3: देखिए, अभी खो खो की एक लीग चलती है जिसको हम अल्टीमेट खो खो कहते हैं, जिसके 2 सीजन हो चुके हैं। इस समय खो खो में बड़ा उत्साह है खिलाड़ियों के लिए क्योंकि देखिए नौकरियां, सरकारी नौकरियां, आज 4,500 खिलाड़ी खो खो के सरकारी नौकरी पा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को ले लीजिए, वहां पे कोई ऐसा खो खो खिलाड़ी नहीं है जिसको कि वहां पे दाखिला ना मिल सके। ऐसे ही सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो खो खो के खिलाड़ियों को अपने यहाँ जो है इन्वाइट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें खो खो को भी उन्होंने उसमें शामिल कर रखा है। और क्योंकि हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्वर्ण पदक जीत रहे हैं इसलिए अच्छी अच्छी नौकरियां उनको मिल रही हैं। तो खिलाड़ी के लिए खेल का उत्साह और भविष्य में उसकी जो सिक्योरिटी है, दोनों खो खो आज उसको दे रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि खो खो कुछ साल पहले था उससे एकदम से लोगों में उत्साह आया है और इतना उत्साहित होकर खो खो खेले।
2: बिल्कुल सर, और बेहद ही शानदार प्रदर्शन इस समय हमारी भारतीय टीम कर रही है, भले ही महिलाओं की बात करें भले हम पुरुष की बात करें। अगर हम बात करें ग्रास रूट लेवल पर कि जो स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी लीग होनी चाहिए जिससे कि वो अपने फिटनेस का भी ध्यान दे सकें और खेलों से भी जुड़ सकें।
3: बिल्कुल, आपने अच्छा कहा और यही हमारा प्रयत्न है। हमने क्या करा है, जैसे अभी तक तो राष्ट्रीय लीग थी, अब राज्यों में लीग चालू हो रही है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में लीग चालू हो जाएगी। तो जब नीचे के स्तर पर खेल उतरता है तो स्वाभाविक तौर पे लास्ट माइल का जो खिलाड़ी है उस

0: को खेलने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो चीज जो है वो लोगों को, वो खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू मिल जाएगा उनको आगे बढ़ने के लिए।
1: और लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने अभी तक काफी बेहद ही शानदार प्रदर्शन दिखाए हैं अपनी अपनी लीगों में, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ से जो खो खो खेलना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से हमारा यूथ खो खो से जुड़ सकता है?
0: यूथ से ये कहना चाहूंगा कि अपनी माटी का खेल जो है, इसकी सुगंध, इसका सौंधापना, उसको सूंघिए और अपनाइए इसको, क्योंकि अब ये सौंधापना विश्व भर में फैल रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब ओलंपिक में भी खो खो होगा, एशियन गेम्स में भी होगा और कॉमनवेल्थ में तो जल्दी होने वाला है। इसलिए ये ऐसा खेल है जिससे उनका भविष्य सुदृढ़ होगा और मनोरंजन की दृष्टि से खो खो निहायत ही मनोरंजक खेल है, इसको अपनाए वो।
1: और हाल में जब लीग हुई थी तो बेहद ही शानदार प्रदर्शन हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने किया था, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, मगर बेहद ही दमदार प्रदर्शन द्वारा उन्होंने सभी का मन जीत लिया। और ये भी चलते चलते आपसे पूछेंगे, क्योंकि बच्चों की जैसे हम लोगों ने बात की कि आपने कहा कि शुरुआत बेहद ही जल्दी होने वाली है, तो बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे कि खो खो वो खेलें और अपने जो हमारा ग्रामीण खेल है उससे वो जुड़े?
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि शारीरिक क्षमताएं जितनी इस खेल को खेलने से बढ़ने वाली हैं, वो किसी दूसरे खेल से नहीं होने वाली हैं। तो इसको अपनाएं, आपका खिलाड़ी के रूप में भविष्य इस खेल को अपनाने से है, क्योंकि मैंने ये कहा ये खेल तो प्रिपरेटरी खेल है, इसको खेलने के साथ साथ किसी और खेल के प्रति भी आकर्षण होगा, तो ये खेलना उनको हमेशा मदद करेगा। जैसा मैंने कहा, इसके तीन जो गुण हैं जो कि खासतौर से है कि स्पीड, स्टेमिना और रिफ्लेक्सेस, ये तीनों चीजें जो है किसी भी खिलाड़ी के लिए आवश्यक होती है। इसमें स्ट्रैटेजी, जो मेंटल स्ट्रैटेजी है, उसकी इतनी इस आदत पड़ जाती है कि वो किसी भी खेल में उत्तीर्ण हो जाएगा।
1: बिल्कुल सुधांशु जी, बेहद ही अहम जानकारी आपने खो खो के दी नियमों के बारे में ही बताया, और एक जैसे आपने एक नया नियम बताया था कि परिवर्तन किया है वजीर, तो उसका क्या
0: जी
1: महत्व है चलते चलते ये भी जरूर जानना चाहेंगे।
0: देखिए, खो खो पहले मिट्टी पे था, वो मैच पे आया है जैसे कोई भी अंतरराष्ट्रीय खेल है। और वजीर की खूबसूरती है कि खो खो में जो चेजर होता है वो एक ही दिशा में जा सकता है, लेकिन वजीर जो है दोनों दिशा में जा पाता है। इससे जो है ये ज्यादा मनोरंजक हो गया और उसको पकड़ना, जो खिलाड़ी भाग रहा है उसको पकड़ना आसान हो गया है। इसलिए इसमें मनोरंजन भी बहुत हो गया है और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि अपने को कैसे बचाया जाए। ये जो नया नियम है, इसने खेल के अंदर बड़ा नया उत्साह पैदा कर दिया है।
1: और हमारे खेल प्रेमियों और यूथ के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा?
0: खो खो अपनाओ, तुम्हारी माटी का खेल है और भारत को गौरवान्वित करो।
1: बिल्कुल, और आकाशवाणी को समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खो खो में फिटनेस और अभ्यास, खो खो टीम कोच सुधांशु मित्तल से अभी बात कर रहे थे हमारे साथी मंजीत कौर।
3: और देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि खो खो खेलने से न सिर्फ आप खो खो में ही माहिर होंगे, बल्कि उससे आपकी स्टेमिना, स्पीड और जो आपका लचीलापन है वो बरकरार रहेगा, जिससे कि आप दूसरे खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसमें भविष्य की बात की तो उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए भी इसमें आगे बढ़ने का, तो अगर आपके पास भी इस खेल में अवसर हैं तो ज़रूर उसका लाभ उठाइए।
2: बिल्कुल, और फिटनेस अपनी बनाए रखिए। खास करके बात करें कुछ स्वास्थ्य को लेकर के, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हम बात करते हैं। भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और जिसका उद्देश्य देश के सभी लोगों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी।
3: और देखिए, सबसे अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो नवजात शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य पर इसमें विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि अगर स्वस्थ माँ होगी तभी वो एक स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है।
2: बिल्कुल,
3: और इससे ही हम आगे की जो हमारी पीढ़ी है वो स्वस्थ होगी। और इसके साथ साथ जो बीमारियाँ हम देखते हैं मौसम के साथ साथ, मलेरिया, टीबी, डेंगू, कुष्ठ रोग जैसे कई ऐसे संक्रमण हैं जिसके ऊपर भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है कि सबको इस इन सब बीमारियों से निजात मिल पाए और सेवाएं उनको मिल पाए। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न केंद्रों के द्वारा मुफ्त में दवाएं और सेवाओं भी प्रदान की गई है, ताकि कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह सके।
2: बिल्कुल, और मातृ और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो उसको कम करना है इसका उद्देश्य है इसका। संक्रामक और गैर संक्रामक जो रोगों की बात करें तो उसकी रोकथाम भी करना है। गरीब और कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी देना, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, गैर सरकारी अस्पतालों में सुधार भी करना है, उसके साथ साथ और एक बात और कहीं, आशा कार्यकर्ता भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आगे बढ़ाने में। तो थोड़ा हमें भी जागरूक होना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना होगा, तभी किसी मिशन को सफल

0: बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, तो ये तो रही हमारी इस योजना के बारे में बातचीत, और अब करवाते हैं
0: मनोरंजन
1: और रितेश दलाल की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे रितेश दलाल की आवाज़ में ये रागनी।
1: और सच कहें तो आज हमारा जो ग्राम संसार कार्यक्रम ये चल रहा है उसमें स्वास्थ्य को लेकर के हम काफ़ी सचेत हैं। और आकाशवाणी का जो 90 वर्ष पूरा हुआ उसमें भी देखा जाए तो मैराथन का आयोजन किया गया, और साथ ही साथ जो हमारा बातचीत का विषय था खो खो में फिटनेस और अभ्यास, इस पर भी फिटनेस को लेकर के बात की गई। और ख़ास करके योजना की हम बात करें तो उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो योजना थी उसमें भी स्वास्थ्य को लेकर के हमने सचेत किया।
0: बिल्कुल, देखिए बातचीत हमने की लेकिन सबसे पहला प्रयास हमारी तरफ से ही होना चाहिए। अगर हम सुबह की बात करें तो हमें थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए, और फिर अगर आप दौड़ना चाहें जिस जैसी भी आपकी स्टेमिना है, लेकिन रुकना नहीं है, चाहे दौड़ें चाहे भागें चाहे
1: कुछ भी करें, साइकिल चलाएं,
0: हाँ योगा करें, जिस तरीके का भी व्यायाम आप करना चाहते हैं तो हल्का फुल्का व्यायाम हमें अपनी अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। और एक बात और बता देंगे, जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा समाचार के बाद कृषि जगत, उसमें आपको फल सब्जी और मिलेट्स की बातें हम करेंगे, उसके स्वास्थ्य के प्रति क्या लाभ है उसे बताएंगे, और साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर भी योजना के बारे में हम बताएंगे।
0: बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण अपने श्रोताओं को याद दिला देते हैं कि कल है शनिवार, और शनिवार को आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसके लिए हमारे श्रोता फोन से जुड़ते और हमें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में जानकारी देते हैं। तो जिन भी श्रोताओं ने फोन किया या जो भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम, और साथ साथ ये भी बता दें हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर, कार्यक्रम संयोजक हैं शिव नंदन लाल। तो अब करते हैं सभी भाइयों बहनों को अपना राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम TVK को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली VCK पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ECI नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में

0: उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए, इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम।
1: देखिए भाई, गर्मी का मौसम है और गर्मी में शरीर को ठंडा रखना और हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि पानी। तो कहा जाता है कि भाई रोज़ कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए, जिससे कि हमारी जो शरीर की उसमें पानी की कमी ना होने पाए और हम तरोताज़ा रहें। और इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेय पदार्थों को अपने खान पान में शामिल कीजिए, जैसे नींबू पानी है, आम पना है, बेल का शरबत है, लस्सी है, पुदीने का सेवन कीजिए, जो कि हमारे शरीर को ठंडक देते हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है सत्तू को घोल बना करके उसकी पीजिए, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और तरावट अपने शरीर में बनाए रखता है। और ख़ास करके आपने फलों की भी बात की है, तो फल की हम बात करें तो तरबूजा है, खरबूजा है, देखने में लाल और खाने में स्वादिष्ट। और साथ ही साथ खरबूजे की बात करें, खीरे की बात करें, तो पानी की कमी को वैसे ही पूरा कर देता है।
1: बिल्कुल, और देखिए खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, पालक, पुदीना, तमाम तरह की ऐसी गर्मियों में हमें प्रकृति ने मौसम के अनुसार ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा जो है कम ना हो पाए और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। और नई नई डिशेज़ अगर हम इनकी बनाते हैं तो भाई एक ये भी रहता है कि जब बदलाव होता है ना खान पान में, तो उसका भी आनंद आता है कि एक तरीके के भोजन से जैसे बोर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं। तो अगर बेल के शरबत की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें पोषण

0: तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और इसकी तो तासीर होती है वो भी ठंडी होती है
1: और
0: और
1: पेट
0: अभी
1: के लिए बहुत ही
0: हाँ
1: लाभ
0: और
1: है।
0: बाजार में अभी देखेंगे भी आपकी भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। जब मौसम के अनुसार हम फल सब्जियों का चयन करते हैं तो हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती है, हमें वाजिब दाम में वो बाजार में उपलब्ध भी हो जाती
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और सबसे बड़ी बात है बच्चों की, अगर हम बात करें तो बच्चे बड़ा नानुकुर करते हैं कुछ भी खाने में, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती, तो जैसे आपने कहा उसका परिवर्तित रूप हम कुछ कर करके पिला सकते हैं, खिला सकते हैं। तो जैसे आप खाने की बात करें, हरी सब्जियों में बहुत ही, तरोई की सब्जी हमें नहीं खानी है तो हमें भिंडी नहीं खानी है, हमें पालक नहीं खाना, तो ये पालक पनीर खा लेंगे भाई, नहीं कुछ और ऐसा बनाएंगे जो उससे अच्छा बन सके, पालक का कोफ्ता भी बना लेते हैं हम लोग। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बना करके हम उनको खिला सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा।
0: हाँ और ये भी एक गर्मियों में बाहर की चीज़ों से परहेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस समय देख रहे हैं कि पेट की गड़बड़ सबकी चल रही है, तो जो भी खाना है आप घर पे बनाएं, क्योंकि घर पे हम उसे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। बाहर तो कई बार क्या होता है, अगर हम मान लो फ्रूट चाट भी खा रहे हैं तो उसमें भी कप का कटा हुआ है, वो कैसा उसमें मिर्च मसाला डला है, मक्खियाँ भी भिन बनाती रहती हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि आप घर पर ही ला के और स्वच्छता के साथ उसे काट धो लें पहले और फिर काटें और फिर उसका सेवन करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर पहले से कटी फटी चीज़ें होती हैं उनसे हमारा पेट भी गड़बड़ हो जाता है। तो अपने खान पान का रखें ध्यान और मिर्च मसाले का कम से कम प्रयोग कीजिए इस समय। और जैसे रात के समय में हल्का खिचड़ी का या दलिये का सेवन आप करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
1: कुल मिला के ये कहना चाह रही प्रियंका कि गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करें, तली वाला पदार्थ बिल्कुल ना खाएं पिए, बाहर की चीज़ें कटे फटे फल पर बिल्कुल ध्यान ना दें, उसे ना खाएं, घर में लाएं, अच्छे से धोएं फिर खाएं। और रही बात खान पीन की, जब हम अपना खान पान अच्छा रखेंगे स्वास्थ्य भी हमारा बहुत ही अच्छा ही होगा।
0: बिल्कुल। और देखिए अनाज की बात करें तो उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव हम मौसम के अनुसार करते रहना चाहिए। अब तो देखिए रागी का डोसा भी बना सकते हैं और बाजार में
1: बिस्किट
0: भी
1: है, बहुत सारी चीज़ें बन रही।
0: अब देखिए इससे हमारे किसान भाइयों को फायदा है। जहाँ पे मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो उसे खाने में तो वो पौष्टिक है, इसलिए अन्न का नाम दिया गया है, लेकिन उसको उगाना भी कहते हैं कि भाई ये बंजर भूमि में भी हो जाता है और देखभाल की भी अधिक आवश्यकता नहीं होती। और अब तो जब से मिलेट वर्ष पूरे साल हमने मनाया तो उससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और एक फिर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी परंपराओं की तरफ लौटें और अपनी थाली में से जगह दे रहे हैं, क्योंकि इसके स्वास्थ्य लाभ बहुत ही अधिक है। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे काफ़ी हट्टे कट्टे होते थे और अभी हम देख रहे हैं कि नौजवानों में ही जान नहीं है, क्योंकि हम अपनी परंपरा से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को एक बार फिर से नए तरीके से, आप उसे नई नई डिशेज बना के अगर बच्चों को भी खिलाएंगे तो आदत तो उनकी अभी से बन जाएगी, तो फिर वो भी धीरे धीरे उसका स्वाद लेंगे।
1: कुल मिला के ये भी कहना चाह रही प्रियंका कि कम लागत में अधिक मुनाफे वाली चीज़ खेती बाड़ी हम कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और रही बात कि श्री अन्न की बात, तो उसमें थोड़े से बदलाव, जैसे आपने कहा आटे की रोटी की बात होती है, हम लोग रोटी भी खाते हैं लेकिन रोटी जो हम खाते हैं सिर्फ आटे का अगर खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मक्का, थोड़ा सा रागी, और अगर समय देखें तो तासीर गर्म होती है बाजरे की, तो उसे ना मिलाएं। और थोड़ी सी ये मक्के के साथ और रागी के साथ थोड़ा सा चना, भुना हुआ चना, उसका भी थोड़ा सा सत्तू मिला लें तो बहुत ही मिस्सी रोटी, स्वादिष्ट मिस्सी रोटी तैयार होगी। आप उसे जब खाएंगे चाव से तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और पाचन तंत्र भी आपका सही रहेगा।
0: बिल्कुल। और अब श्रोताओं का करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपदेश।

0: जयप्रकाश शर्मा की आवाज में अभी आपने सुना ये उपदेश। और प्रियंका, आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, तो भारत सरकार की एक विशेष परियोजना है जिसका उद्देश्य है उन्नत तकनीकों, बेहतर बीजों, पोषक तत्वों के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसल जैसे कि कपास, जूट, गन्ने का उत्पादन बढ़ाना और मिट्टी की उर्वरता को पुनर्जीवित करना।
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य की जैसे हमने बात की, तो चावल, गेहूं, दालें और जो मोटे अनाज हैं और तिलहन का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी करना है, और साथ ही साथ जो कृषि उत्पादकता में है उसमें सुधार लाना है, और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराना है, और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता की जैसे बात की, और साथ ही साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा देना है, और खाद्य सुरक्षा कैसे हो सके इसे सुनिश्चित करना है। और ख़ास करके जो हम कृषि तकनीक की बात कर रहे हैं, तो आजकल देखा जाए तो जो गांव में जो खेती किसानी बाड़ी कर रहे, तो पहले जो होता था तो ये हम इस पे मशीन पे नहीं डिपेंड होते थे, वैसे ही हम अपने पुराने प्राकृतिक तरीके से काम करते थे, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कृषि यंत्रों का एकदम चलन है, और कृषि यंत्रों के जरिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है, खास करके जो नव युवा हैं उनको कहीं बाहर जाके पलायन करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो शिक्षा ले सकते हैं, और कृषि शिक्षा लेकर के अपनी कृषक जो जीवन चल रहा है, जो उनकी एक पीढ़ी आ रही है उसको बढ़ा सकते हैं, उसी में उन्नति खेती कर सकते हो।
1: बिल्कुल यमुना बहन, आपने कृषि यंत्रों की बात की, तो सचमुच कृषि यंत्रों से तो कहते हैं ना घंटों का काम मिनटों में होने लगा है, और अभी मजदूरी भी इतनी महंगी हो गई है कि अगर मशीन से हम काम करते तो वो हमें ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और देखा गया है कि समूह बना के हमारे जो किसान भाई हैं वो मशीनरियों का प्रयोग भी कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी मिल रही है। और नई तकनीकों की बात करें तो सिंचाई की जो नई तकनीकें जैसे फव्वारा की विधि है या ड्रिप के द्वारा जो है उसमें कम पानी में

0: अधिक उपज ले रहे हैं, इसके साथ साथ मल्चिंग के द्वारा सब्जियों की जो खेती की जा रही है या स्टेकिंग के द्वारा जो बेल वाली सब्जियों की खेती की जा रही है, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो नई तकनीकों से जुड़ने वाले हमारे किसान हैं वो बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रख रखाव में बदलाव आया है उस तरीके से मतलब सब्जियां जो होती हैं 2-3 महीने में हमें वो अपनी उपज दे देती हैं और उसकी तुड़ाई भी 3-4 बार हम कर पाते हैं, तो इससे हमारे जो किसान भाई हैं वो नई तकनीकों का प्रयोग करके अधिक लाभ कमा रहे हैं और सब्जियों की खेती में बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। पारंपरिक खेती में जहाँ गेहूँ और सिर्फ सरसों या गेहूँ करते थे, तो अगर आपके पास भी छोटी ज़मीन है तो ये ज़रूरी है कि आप नई तकनीकों का उपयोग करके सह फसली भी कर सकते हैं जिससे कि आप अधिक लाभ ले सकते हैं। तो नई नई तकनीकों का प्रयोग कीजिए और अपनी आय को दुगना कीजिए, यह सरकार का भी लक्ष्य और हमारे कार्यक्रम में भी हम अपने श्रोताओं से यही बात करते रहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और सोधी मिट्टी से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हमारे किसान ना हो तो हमारी थाली में भोजन नहीं आ सकता है, तो रुपये पैसे खा करके तो काम चल नहीं सकता प्रियंका। तो खेती किसानी जो हमारे जुड़े हुए हमारे किसान लोग, उनके लिए हम यही चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक लाभ पाए और अपने खेती से जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ी को भी उससे जोड़ें और कृषि जो यंत्र है उसका सदुपयोग करें और सरकार जो योजनाएं बना रही है उसका पूरा पूरा जागरूक होकर के लाभ उठाएं।
0: बिल्कुल, और अब सुनवाते हैं अतुल कुमार की आवाज में आपको ये रहा।

0: अतुल कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश।
1: भाई धरती की तो विशेष भूमिका होती है खेतीबाड़ी में, और अगर अभी फसल कटाई के बाद खेत खाली हो गए और खेतों में गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे ताकि सूर्य के तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे हुए कीटों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं, और उसके बाद आप खेत की तैयारी कीजिए और हरी खाद आप बो सकते हैं जिसमें कि ढेंचा, सनई, लोबिया इत्यादि आप बो सकते हैं। और इसके लिए आपको खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखनी है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि हरी खाद 40 दिन के आसपास इसकी कटाई हो जाती है और इसे हम मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि हमारी जो मिट्टी होती है उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है और उसमें पोषक तत्वों की फिर हमें कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हरी खाद से ही उसमें काफ़ी तत्व जो उसमें मिला दिए जाते हैं उससे हमारी जो भूमि होती है वो भुरभुरी हो जाती है और काफ़ी उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।
0: बिल्कुल प्रियंका, और टमाटर, मटर, बैंगन फसलों में अगर देखें तो फलों के फल छेदक कीट से बचाए हेतु किसान में देखें तो किसान खेत में जो है पक्षी बसेरा लगाएं और वे कीट नष्ट करने के लिए फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें, साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी करते रहें, और साथ ही साथ देखें तो यदि कीट की संख्या अधिक हो तो एक तरीके से छिड़काव करना होता है बीटी 1.10 की बात करें तो पानी की दर छिड़काव करें, फिर भी प्रकोप अगर अधिक हो तो 15 दिन बाद उस कीटनाशक दवा डालें। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो फसल होती है उस पर विशेष ध्यान देना होता है जिससे जो हमारी खेती किसानी हो फलती फूलती रहे और अच्छा हम उत्पादन पाते रहें।
1: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई रखें इन सब बातों का ध्यान, और अब आपको सुनवाते हैं प्रवीण कुमार की आवाज़ में ये राग।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रवीण कुमार की आवाज में ये रागनी।
1: बिल्कुल, और चलते चलते अपने कार्यक्रम का हम पता बता देते हैं। पहले ईमेल का है feedback@gmail.com और जो हमारा पत्राचार का पता है कृषि एवं गृहकांश कमरा नंबर 610 नौ प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 110001। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार बारा सर और कार्यक्रम के संयोजक हैं
0: शिवनंदन लाल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

श्रोताओ, जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी ये गजल, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं भूपिंदर की आवाज में एक और गजल।

0: और श्रोता, इसी के साथ हमारा गजल कवाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मैराथन में विजय रही प्रतिभागी ने अपने विचार साझा किए।
6: मेरा नाम भूमिका वार्ष्णेय है। मैं अभी डिप्टी कमांडेंट के पद पे कार्यरत हूँ CISF में और पार्लियामेंट सिक्योरिटी में पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मैराथन में पार्ट लेके, और बहुत ही यूनिक डिस्टेंस था 3.5 किलोमीटर का, जिसको मुझे करने में बहुत मजा आया। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे जो है इसमें प्राइज भी मिल गया, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस ऑडिट का उद्देश्य स्कूलों में मौजूद कमियों और जरूरी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। ये निर्णय रूपनगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय के निरीक्षण के बाद लिया गया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने कक्षाओं में विद्यार्थियों से बातचीत कर पेयजल, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता और गर्मी से बचाव की व्यवस्थाओं सहित शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से जरूरी सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली के विकास मंत्री और करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने आज सोनिया विहार में 70 लाख रुपए की लागत से सड़क और नालों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र में तैयार लिंक गलियों का भी लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट।
7: इस दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि करावल नगर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया विहार में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और सभापुर में भी जल्द यह परियोजना शुरू होगी। इससे जल भराव और गलियों की समस्या दूर हो जाएगी। श्री मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक और पार्षदों के पास विकास कार्यों के लिए हमेशा फंड की कमी रहती थी, इसलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम पार्षदों को क्षेत्र के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए का फंड देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, पुस्ता सड़क को बेहतर बनाने और क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए लगातार काम कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को नई दिल्ली में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रमुख ध्यान बाढ़ का पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर रहेगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में वृद्धि करने पर भी चर्चा होगी। बैठक में सामुदायिक जागरूकता, जानमाल का नुकसान रोकने के लिए आसान कार्यक्रम तथा आवश्यक राहत और चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 14 आरोपियों को गीता कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह ऑनलाइन नौकरी दिलाने, वर्क फ्रॉम होम और हाई रिटर्न का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल और टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार मामले में अब तक 8 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी के लिंक सामने आए हैं। आगे की जांच जारी है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्कूली विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क प्रकोष्ठ और दिल्ली सरकार

0: के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि 18 मई से 5 जून तक 4 यातायात प्रशिक्षण पार्क में ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए सड़क प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि रोड रडार मिशन के अंतर्गत दिल्ली की लगभग 18,000 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण हॉटस्पॉट, धूल, कचरा और खुले में जलाने जैसी गतिविधियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। इसके लिए हर जिले में 13 फील्ड सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो रोजाना सड़क सर्वे कर MCD 311 ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज करेंगे। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज शाहदरा के रामनगर वार्ड का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और जन सुविधाओं का जायजा लिया। उप महापौर ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई, स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इससे विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी प्रक्रिया को करीब से समझा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा परिसर, अभिलेखीय दस्तावेजों और शताब्दी यात्रा कॉफी टेबल बुक का अवलोकन किया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों और एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लास को लेकर सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अवकाश के दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 मई से 23 मई तक विशेष रिमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। इन विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शिक्षकों को सुबह 7:20 से 11 बजे तक स्कूल में मौजूद रहना होगा। प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का होगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर आज दिल्ली नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री वाही ने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजारों, झुग्गी, बस्तियों और धर्मस्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हर 15 दिन में नियमित कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद तालाब में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों में जल उत्पादन लगभग 40-50% तक प्रभावित हुआ है। इसके चलते स्थिति सामान्य होने तक कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति धीमी रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में ITO, डिफेंस कॉलोनी, राजघाट, तिमारपुर, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, करोल बाग, सिविल लाइंस, पटेल नगर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय विमान कंपनी इंडिगो इस वर्ष 15 जून से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। इस हवाई अड्डे से किसी विमान कंपनी की ये पहली उड़ान सेवा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश भर के 16 से अधिक शहरों से सीधी उड़ान के माध्यम से जोड़ेगी। इनमें बेंगलुरु और हैदराबाद महानगरों के साथ साथ अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई और श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। 15 जून को पहली उड़ान लखनऊ से नोएडा के लिए होगी। ये उड़ान लखनऊ से सवेरे 7:05 पर रवाना होकर सवेरे 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी। नोएडा से बेंगलुरु के लिए भी पहली उड़ान शुरू की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों से लोगों के संपर्कों को सशक्त बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन,

और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इससे पहले कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में प्रस्तुत है रूपक आवाजों का सुनहरा सफर, रेडियो नाटक। शोध, आलेख, स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी। ये रूपक उन कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और अभिनय प्रतिभा से रेडियो नाट्य विद्या को निखारा और पल्लवित किया, और हम इसे उन सभी श्रोताओं को भेंट कर रहे हैं जो हमारे नाटकों को सुनते आ रहे हैं। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, तब रेडियो नाटक देश में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। तब मनोरंजन का प्रमुख साधन वो नाट्य मंडलियां हुआ करती थी, जिनके प्रभाव से रेडियो नाटक भी अछूते नहीं रह सके। इनमें पारसी रंगमंच, नौटंकी और अन्य लोक शैलियां शामिल हैं।
2: देवी, मेरी तपस्या में आखिर कहां कमी रह गई? आज मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ?
3: महाराज, अब आपको भला मैं क्या बता सकती हूँ?
4: अपने मुंह से भला अपनी कैसे कहूँ? अपने मुंह से भला अपनी

0: शुरू शुरू में किसी भी नाटककार से रेडियो के लिए नाटक लिखवाना कठिन था, क्योंकि उनकी राय में ऐसा कोई नाटक हो ही नहीं सकता था जिसमें शुरू से आखिर तक बातचीत ही बातचीत हो और सुनने वालों की समझ में ये ना आ सके कि ये बातचीत हो कह रही है। लेकिन धीरे धीरे वो समय आया जब रेडियो नाटक श्रोताओं को ना केवल समझ आने लगे बल्कि उनकी रेडियो नाटकों में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। आकाशवाणी के जाने माने कलाकार श्री नीरज शर्मा।
1: देखिए, रेडियो नाटक वो फलसफा है जो हमें जीने का पूरा सिद्धांत सिखाता है। हम जो नहीं हैं, वो बनकर जी सकते हैं। और एक बड़ी खास बात है, आप फिल्म देखिए, टेलीविजन देखिए और रेडियो सुनिए। फिल्म देखने के लिए आपको कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, टेलीविजन देखने के लिए कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। टेलीविजन की साउंड ऑफ कर दीजिए, आप पिक्चर कितनी देर देख लेंगे। लेकिन रेडियो, रेडियो के जब आप ऑन करेंगे और उस पर नाटक आ रहा है तो आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रही हो महिलाएं, नाश्ता कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, वो आवाज़ उनके कान में पड़ेगी, उनको सब सुनाई देता रहेगा। तो रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और नाटक उसका जीवन है, उसका प्राण है, जिसको हमने कोशिश की हम लोगों ने जीवंत रखने की और आगे भी रखेंगे।

0: आदिकाल से ही नाटक, जिसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है, भारत में प्रधान कलाकृति के तौर पर माना जाता रहा है। लेकिन इस शास्त्र के साथ साथ रेडियो नाटक के अलग अस्तित्व को स्वीकार करना किसी भी लेखक या निर्देशक के लिए आसान नहीं था। शुरू में बम्बई और कलकत्ता के रेडियो स्टेशनों से कभी कभी नाट्य कार्यक्रम प्रसारित होते थे। उनमें श्रोताओं को उस समय के जाने पहचाने रंगमंचीय कलाकारों द्वारा रंगमंचीय शैली में प्रस्तुत मराठी, गुजराती, बंगला, हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय रंगमंचीय नाटकों के अंश ही सुनने को मिलते थे।
1: मैं कुछ अधिक ही बलहीन हो रहा हूँ, आखिर मैं प्रजा बालक हूँ, ये मुझे शोभता नहीं है। लक्ष्मण ले आओ।

0: दिल्ली रेडियो स्टेशन में रेडियो नाटक का सही और पुख्ता स्वरूप नजर आया सन 1940-41 में, जब उर्दू और हिंदी के जाने माने नाम सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर और उपेंद्रनाथ अश्क यहाँ के स्टाफ में शामिल हुए। उन दिनों कृष्ण चंदर और सादत हसन मंटो आकाशवाणी के ड्रामा एकांश में काम करते थे। शुरू में नाटकों का लाइव प्रसारण होता था। इफेक्ट्स के लिए नाटक स्टूडियो में पर्दे लटके होते थे, बीचों बीच एक पंखा लगा होता था और भी कुछ उपकरण लगे होते थे। क्योंकि नाटक लाइव प्रसारण होते थे, इसलिए सभी तरह के इफेक्ट्स भी उसी समय तैयार करने होते थे, चाहे वो घोड़े दौड़ने का हो, हवा आने या तूफान आने का। उन दिनों इफेक्ट्स के लिए कुछ रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध थे, लेकिन ज्यादातर इफेक्ट्स स्टूडियो में ही तैयार किए जाते थे।
1: पहले जब रेडियो नाटक लाइव हुआ करते थे, तब की कुछ बातें मुझे याद हैं, मैं सुनाता हूँ। एक प्ले की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तीन कैरेक्टर थे उसमें। दो कैरेक्टर की बातचीत चल रही थी आपस में। बात करते करते किसी झोंक में एक कैरेक्टर, ठीक है ऐसा नहीं हो सकता, ये कहता हुआ एग्जिट मार गया। पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठे थे, उन्होंने कि लाइव प्ले चल रहा है, मैं क्या करूँगा। अचानक ही उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने गलत एग्जिट मार दी है, और जो व्यक्ति माइक्रोफोन पर खड़ा था वो भी सोचने लगा कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि आगे तीन चार पेज लंबा सीन था। अचानक जिन्होंने एग्जिट ली थी वो आए, अरे रामलाल जी वो मेरी कैप यहाँ रह गई, देखें कहाँ है, हाँ हाँ ये रखी है, इस कैप के बगैर मैं चल नहीं पाता। हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस विषय पर हम बात कर रहे थे उस विषय में ये जोड़कर उन्होंने आगे का सीन शुरू कर दिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें बताया भी जाता था, हम देखते भी थे कि आकाशवाणी के स्टूडियोज़ की कॉरिडोर में ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले यानी 9 और 9:30 के बीच में कलाकार अपने हाथ में स्क्रिप्ट लेकर और पसीने आ रहे हैं और स्क्रिप्ट से मार्किंग करते करते करते करते चले जा रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे रहते थे।
0: रेडियो नाटक की जब हम बात करते हैं तो रेडियो नाटकों में भाषा का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो चीज श्रोता देख नहीं सकता, कानों के माध्यम से एक चित्र की तरह वो उस चीज को देख सके। शब्दों से ही चित्रों का निर्माण करना होता है। रंग रूप की झांकी भी प्रस्तुत की जा सकती है। रेडियो नाटकों की भाषा ऐसी होती है जिससे लगे कि शब्द बोल रहे हैं, चित्रों का निर्माण कर रहे हैं।
1: रेडियो नाटक बहुत ही दिलचस्प विधा है, समझ में आ जाए तो बात क्या बात है, बहुत मजा रहता है। असल में इस वक्त तो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन एक समय था कि जब रेडियो नाटक लाइव होते थे, लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। 70s और 80s की बात है कि जब रात को 9:30 बजे नाटक ब्रॉडकास्ट होते थे, तो आमतौर पे घरों में हम लोग क्या करते थे कि घर की लाइट ऑफ कर दी और नाटक सुनने लगे। तो नाटक सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे आपके सामने शब्द चित्र बन गया। यही रेडियो नाटक है कि जब आप बोलें तो सुनने वालों को शब्द चित्र बन जाए, चलचित्र की भांति उनके सामने सब उनको दिखाई देने लगे।
0: जब रेडियो नाटक लिखे जाते हैं तो संवादों को कैसे लिखना है, इस बात का खास ख्याल रखना होता है। नाटक के पात्र शब्दों के माध्यम से जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहा जाता है। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो के लिखे नाटक 3 खामोश औरतें का एक अंश।
2: क्यों बहन, सुनी थी आपने इस खामोश औरत की?

0: आते। माफ करना बहन, मैंने वाकफियत के बगैर ही आपसे गुफ्तगू शुरू कर दी। दरअसल उस औरत की बातों ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था।
1: नहीं भिन्नो, इसमें माफी की क्या बात है?
0: मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ तशरीफ ले जाएंगी?
1: खंडवा।
0: खंडवा? तो आप खंडवा जाएंगी? ये खंडवा कहाँ हुआ?
1: झांसी के पास।
0: झांसी के पास, अच्छा। आपके साथ कौन है?
1: मेरा भाई।
0: तो वो स्टेशन पर आपके भाई थे? बड़े के छोटे?
1: बड़े भाई।
0: क्या बरस बड़े होंगे आपसे?
1: 2 बरस।
0: और आपका नाम?
1: महमूदा।
0: मेरा नाम शमशाद है।
1: जी अच्छा।
0: आपके भाई साहब का नाम?
1: खान महमूद उमर खान।
0: खान महमूद उमर खान।
1: जी।
0: मेरे भी 2 भाई हैं।
1: अच्छा।
0: एक मुझसे बड़ा, एक छोटा।
2: मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन रंगमंच के लिए लिखा गया था, लेकिन रेडियो के लिए भी मोहन राकेश ने ही उसका रूपांतरण किया।
3: माँ, माँ, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ, ऐसी वर्षा, दूर दूर तक की घाटियां भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगोकर आ गई हूँ।
2: इस पूरे संवाद में एक तस्वीर सी उभर कर सामने आई है श्रोताओं के सामने। संवाद जब लिखे जाते हैं तो पात्रों के मुताबिक ही लिखे जाते हैं। आकाशवाणी के रेडियो नाटकों से जुड़ी हुई जानी मानी कलाकार माला कुमार अपनी यादों को साझा करते हुए।
0: रेडियो नाटक एक इतना सुंदर गहरा माध्यम है जहाँ आप अपने तन मन धन से और अपने पूरे आपकी जो अंतरात्मा है उसमें आप लीन होकर अपने संवाद बोलते हैं एक माइक के थ्रू और अपने सह कलाकारों के साथ, जिसमें एक स्टूडियो है और उसके ज़रिए आप तक सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, एक पूरा नाटक तैयार होता है और एक ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत मीडियम है। और मैं इससे जुड़ने का मुझे जो एहसास है, जो एक्सपीरियंस है, वो सर आँखों पर और इससे सुंदर मीडियम मुझे कहीं नहीं लगता। सबसे ज़्यादा जो मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, इनर सेटिस्फैक्शन, वो एक रेडियो नाटक के माध्यम से ही होता है। और बहुत से नाटकों में किया है, इसमें तरह तरह के भावनाएं, तरह तरह के इमोशंस को अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी सांसों के ज़रिए जो करने को मिलता है, वो मुझे लगता है कि कैमरा में भी बहुत कुछ होता है इस तरह से, लेकिन उसमें आपके चेहरे से आपको वो समझते हैं दर्शक कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर रेडियो नाटकों में आपका कोई चेहरा नहीं देखता है, आप कितने भी उम्र के हों, एक जवान रोल आप कर लेते हैं, आप 50 साल की हैं, आप 20 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, आप 20 साल की हैं, 60 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, एक वृद्धा का रोल कर सकते हैं, ये सब आपकी आवाज़ का खेल है।
2: रेडियो नाटक में कई बार नरेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है। नरेशन का तात्पर्य उस अंश से है जिसमें पात्र वही कार्य संपन्न करता है जो कहानीकार करता है। ये पात्रों का आपस में संवाद नहीं होता बल्कि एक पात्र का ही वक्तव्य होता है। इसके जरिए देश काल का परिचय दिया जाता है, जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं, विवरण दिए जाते हैं, घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ा जाता है। नरेटर यानी सूत्रधार, जो बातें संवादों में नहीं आती और जिनका नाटक में आना जरूरी है, उन्हें नरेशन में रखा जाता है और सूत्रधार के जरिए वो बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर सूफी कवित्री लल्लेश्री पर लिखे गए नाटक प्रेम का सुर आस्था का संगीत, इस नाटक में जहलम और चिनार को नरेटर बनाया गया। जहलम और चिनार सूफी कवित्री लल्लेश्वरी की कहानी के लिए पृष्ठभूमि बनाते हैं, कहानी शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में आकर कहानी की कड़ियां जोड़ते हैं और घटनाओं पर टिप्पणी करते हैं।
4: ललदत्त यानी लल्लेश्वरी हमारी सूफियाना विरासत और भक्ति परंपरा की महान कवित्री, हमारे देश में अनेकता में एकता की कड़ी है लल्लेश्वरी। लल ने अपना फलसफा कश्मीरी भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनके वाक्य आंखों में सूफी सनातन पंथ इस्लामी सिद्धांत और शैवनाथ सभी मौजूद थे। लल के लिए प्यार ही खुदा था और आपसी भाईचारा बंदगी। लल ने बंधुओं से बंदगी, आपसी भेदभाव मिटाकर धर्मों की समानता पर बल दिया।
5: मैं समय की धारा के साथ आज आ पहुंचा हूं धरती के इस स्वर्ग कश्मीर की वादी में। आज इसी वादी में घूमते घूमते मैंने सदियों से बह रही झेलम को देखा तो मन में आया कि जैसे दादी नानी की कहानियां पुरखों से चली आ रही हैं, उसी तरह इस प्राचीन नदी ने भी तो अनेक राजाओं का शासन देखा होगा, अनेक साम्राज्यों का पतन देखा होगा। कितनी महान हस्तियों को कभी शिकारे से इस पार कभी उस पार पहुंचाया होगा। इसमें चल रहे चप्पुओं की मधुर आवाज ने कितने संगीतज्ञों को उद्वेलित किया होगा, प्रेरणा दी होगी। सदियों से इसके किनारे खड़े वादी की धरोहर, हर मौसम में रंग बदलते चिनार खुद झेलम के हर रंग से परिचित हैं। साक्षी हैं ये दोनों हमारी वादी की सभ्यता के, इसकी संस्कृति के। इन दोनों का एक अटूट रिश्ता है।
2: अगर रंगमंच या फिल्मों की हम बात करें तो यहाँ पर मूक अभिनय भी हो सकता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। संवाद ही रेडियो नाटक है। संवाद रहित रेडियो नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लिहाज से रेडियो नाटक की कला संवाद लेखन की कला है। रेडियो नाटकों से जुड़े अपनी यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के जाने माने नाट्य कलाकार नीरज शर्मा।
6: मुझे एक प्ले की बात याद है, पंडित दीनानाथ जोशी बहुत सीनियर कलाकार थे, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, और वो अपनी स्क्रिप्ट पे ऐसे मार्किंग करते थे कि दूर से भी उनकी स्क्रिप्ट नजर आ जाती थी कि इसमें क्या लिखा है, पेन से गड़ा कर देते थे। अच्छा, खास बात थी वो उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू में पढ़ते थे। तो एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास था धरती धन ना अपना, मैं था उसमें, सुचित्रा जी थी, वीना जी थी। तो एक कुछ रोमांटिक सीन था तो मैं और वीना जी हम लोग उस रोमांटिक सीन के रिहर्सल कर रहे थे, तो ज़रा आवाज़ें हल्की हल्की हमारे मुंह से निकल रही थी। मैं भी उन दिनों बहुत नया था तो बहुत ज़ोर से नहीं बोल रहा था और वीना जी भी मेरे साथ साथ हल्के हल्के बोल रही थी। पंडित दीनानाथ जोशी दूर बैठे थे, बोले अरे भाई ज़ोर से तो बोलो, हमें भी तो सुनाई दे, स्क्रिप्ट में कहाँ है। तो डायरेक्टर महोदय बोले, पंडित जी ये सीन आपके सुनने के लिए नहीं है। ये बोला सब मिठाका गूंज गया। एक दफ़ा की बात है कि एक प्ले रिकॉर्ड हो रहा था कल नहीं लौटेगा, दीनानाथ जी उसका निर्देशन कर रहे थे और वो एक भाई बहन की कहानी थी। भाई ने तीज पर बहन को धानी चुनरिया ला के दी और झूला झूलते हुए बहन धानी चुनरिया के गीत गाती है, भाई उसका रिकॉर्ड कर लेता है। होता यह है कि शादी के बाद वो उसको लड़की को मार देते हैं। तो सीन ये था कि भाई उसकी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर रो रहा है और माँ आकर उसे चुप कराती है। तो दीनानाथ जी बोले, भाई नीरज ये सीन हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे जब सिर्फ तुम दोनों हो गए, यानी माँ और बेटा। तो एक ख़ास दिन हमको बुलाया गया, वो रिकॉर्डिंग रख दी गई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको प्ले किया गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गोपाल सक्सेना जो थे वो असिस्ट कर रहे थे दीनानाथ जी को, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, इशारा मिला और हमने उसको सुनना शुरू किया और धीरे धीरे उस पर रिएक्ट करना शुरू किया। तो रिएक्शन करते करते, रिएक्शन देते देते सच में रोना आ गया और वाकई में रो पड़ा उसके अंदर। माला जी आई जो माँ का रोल कर रही थी, माला गुप्ता, उन्होंने मुझे चिपका लिया सीने से अपने और कहा, नहीं बेटा ये वो तेरी सब कुछ नहीं थी, वो मेरी भी बेटी थी, ये डायलॉग था, ये कह के मुझे चुप कराया। सीन वाइंड अप करके जैसे हमने ग्लास के उधर कंट्रोल रूम में देखा तो दीनानाथ जी सर पे हाथ धर के बैठे हुए थे और गोपाल जी अवाक, आंखें बाहर मुंह खुला ऐसे बैठे थे। अब समझ में नहीं आया कि रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी। तो मैं कंट्रोल रूम में गया और जाके मैंने पूछा, जी रिकॉर्डिंग हो गई? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा, जी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक हो गया? तो दीनानाथ जी बहुत ही दुखी मन से मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी क्यों, क्या हुआ? कल टेप खत्म हो गया। गोपाल जी की तरफ इशारा करके बोला, मैंने इसे कहा था कि बड़ा टेप ले, टेप खत्म हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। आप ये मानिए कि घड़ों पानी पड़ गया ऊपर से नीचे तक, कि इतना इमोशनल सीन एक बार जो हो गया वो दोबारा होना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने कोशिश की, सीन को किया। सीन करने के बाद जब सुनने लगे जाके तो गोपाल जी एकदम से अपनी कुर्सी से उछल पड़े, कहते मैं जोड़ दूंगा।

0: जोड़ दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, लास्ट की जो सिसकियां थी मैं उनको जोड़ दूंगा। और गोपाल जी ने वाकई उस सीन को जोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि ये सीन दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन वो किस्सा आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि क्या ज़माना था। अगर वो नहीं जुड़ पाता तो शायद वो सीन नहीं हो पाता उस तरीके से।
1: रेडियो नाटक और उसके लेखन का सारा दायित्व उसके डायलॉग्स पर ही है, उसके संवादों पर ही होता है। संवादों के माध्यम से कहानी कही जाती है, पात्रों का परिचय दिया जाता है, जरूरत के मुताबिक उनकी रूपरेखा, वेशभूषा, उनका काम जैसी बातों से श्रोताओं को परिचित करवाया जाता है। आसपास के वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, पात्रों के भाव और विचारों को बताया जाता है और उनके आपसी संबंधों पर रोशनी डाली जाती है।
2: रेडियो नाटक सब विधाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आवाज पे बेस्ड है और ये किसी भी एक्टर की ट्रेनिंग के लिए भी मुझे लगता है कि काफी फायदेमंद है। क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी आवाज से खेलकर अपने सारे एक्सप्रेशंस को कन्वे करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू भी पता चलती है और आपको ये भी पता चलता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। और ये आपका बाकी विधाओं में भी काम आता है, चाहे आप फिर आप स्टेज पे जाएं, चाहे आप कैमरा के आगे जाएं। और मतलब जैसे खुद का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे आज तक किसी ऑडियो के आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप अपनी आवाज को थोड़ा सा उठाइए, मैं कैमरा की बात कर रहा हूं। तो ये इसलिए क्योंकि मैं आप आवाज के जरिए अगर आप कन्वे कर पाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है।
1: रेडियो नाटकों के अलग अलग रूप हैं, पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक वगैरह। मोनोलॉग है स्वगत नाटक। मोनोलॉग का अर्थ है वो नाटक जिसमें एक ही पात्र बोलता है, इसे स्वगत नाटक और एक पात्रीय नाटक भी कहते हैं। इसमें केवल एक पात्र रहता है। आइए सुनते हैं एक पात्रीय नाटक पन्ना धाय का एक अंश।
3: सांझ पड़ी नकरे छड़ी।
4: पन्ना वो देख कहाँ है? हाँ,
5: तुम यहाँ क्या करने आए हो?
4: क्या करने आया हूँ? मैं उस बीज को नष्ट कर दूंगा। उससे पहले पेड़ बन के वो मेरे रास्ते का रोड़ा बने, मैं उसे समाप्त कर दूंगा।
5: तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते, तुम तो उसके संरक्षक हो। नहीं, मैं उसकी शैया के पास से नहीं हटूंगी।
1: रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटकों में पद्य नाटक का भी बहुत अहम रोल होता है, इसे काव्य नाटक या गीति नाटक भी कहते हैं। पद्य नाटक की विशेषता को समझने के लिए गद्य नाटकों और पद्य नाटकों के अंतर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गद्य नाटकों की अगर हम बात करें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने का माध्यम है, हमारे चिंतन और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आइए सुनते हैं पद्य नाटक ब्लैक होल का एक अंश।
6: मैं काल हूं, पता नहीं कब जन्मा मैं, ये भी नहीं जानता कि रहूंगा कब तक। मेरे भीतर छुपे हैं अनंत ब्रह्मांड और उनके असंख्य रहस्य।
7: नहीं पहचाना? अरे, इतने संकेतों के बाद भी आप जान न सके कि मेरा नाम कल्पना है और मैं आपके विचारों को पंख देने आपके पास उड़कर आ गई हूं, इसी अनंत शून्य के अंधकार से। कल्पना तो ईश्वर भी करता होगा और हमारे आपके जैसे साधारण जन भी, मगर ईश्वर की कल्पना थोड़ी विचित्र होगी, है ना? कुछ से कहीं अधिक असाधारण, कहीं ईश्वर ही तो कल्पना नहीं, अर्थात कल्पना का ईश्वर, मेरा ईश्वर।
1: जाने माने कलाकार और रेडियो नाटकों से जुड़े हुए श्री योगेंद्र टिक्कू अपनी यादों को बांटते हुए।
8: मैं काफ़ी सालों से आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ हूं और कुछ ऐसा भी है कि मैंने बाकी सारे माध्यम में भी बहुत काम किया है, अलग अलग विभिन्न माध्यमों में, टीवी हो, फिल्म्स हो या थिएटर हो, सबसे जुड़ा हूं मैं। मगर जितना सुकून और सुख मुझे आकाशवाणी पे ड्रामा करके

0: मिलता है वो मुझे और कहीं शायद उतना नहीं मिलता, क्योंकि ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और आसान नहीं है। ये एक तरह से आपकी कलाकारी को मांझता है, आपको परिपक्व करता है, ताकि आप जब आपकी वॉइस एकदम स्ट्रांग होती है, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, तो आप किसी भी माध्यम में जाके, चाहे वो फिल्म्स हो, टीवी हो, थिएटर हो, कहीं पे भी जाके आप अपनी कला को और निखार सकते हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली कहूँगा कि मुझे अच्छे प्लेस करने का मौका मिला है।
1: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ।
2: वैसे तो बहुत सी विधाएं हैं जहां से हम तकरीबन आर्टिस्ट गुजरे हैं, लेकिन इससे गुजरने पर एक ये एहसास हुआ कि सिर्फ आवाज़ के माध्यम से और एक ध्वनि का जो एक अलग अपना एक इफेक्ट होता है उसके थ्रू एक कंप्लीट एक दृश्य को पूरे जहन के अंदर उतार के रख देना, मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग थिएटर में बैठ कर के थिएटर देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल उस तरह का एक मंचन और उस तरह का दृश्य प्रारूप जो है वो मन में और दिमाग में उतरता चला जाता है। हालांकि ये विधा मुझे बाकी विधाओं से थोड़ी सी कठिन सी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें जो एक सुकून और एकाग्रता एक का जो संगम नज़र आता है वो अलग तरह का है।
1: कई नाटक संगीतमय नाटक होते हैं जिनमें कहानी के साथ साथ नाटक के साथ साथ संगीत और गीतों का भी मिश्रण होता है जो सुनने में श्रोताओं का मन और ज्यादा लुभाते हैं। आइए अब सुनते हैं संगीतमय नाटक मिर्जा साहिबा का एक अंश।
3: साहिबा से मुझे मिलवा।
4: तो ये बात है, जानती थी, तब से जानती हूं। जब तू मस्जिद से घर लौटता हुआ मासी के घर साहिबा को मिलता था, मैंने तो अल्लाह से कई बार दुआ मांगी कि तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। शायद शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। चल चल मेरे साथ चल।
3: चल मासी, चल चल।

0: ये था यादों का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला। आज रेडियो नाटक कितनी सीढ़ियां पार करके यहाँ तक पहुँचा है और श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में अभी आप सुन रहे थे रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक। शोध आलेख स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

श्रोताओं, लता और मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। बात तो बिल्कुल सही कही है, जब मंजिल एक हो और राही दो तो प्यार तो होना ही है। कहते हैं ना, मिल बांट कर रास्ता कट ही जाता है। देखिए, बाधाएं तो आएंगी और उनका हल भी निकलेगा, बस साथी आपका बेहतर होना चाहिए। और इसीलिए जब भी अपनी मंजिल की ओर आप आगे बढ़ें तो अपने साथी का चुनाव हमेशा सही करें और चलते चलें लहरों के साथ, ताकि पता ही ना चले कि दिन है या फिर है रात।

0: श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना साहिब फिल्म से लिया हुआ ये गीत। संगीत था बप्पी लाहिरी का। कहते हैं ना कि जीवन भी एक गाड़ी के ही समान है, जिसमें अगर हम पेट्रोल की बात करें या कहें कि ईंधन आपकी ज़िंदगी का जो है वो है आपकी ऊर्जा। जितनी ऊर्जा और आनंद के साथ आप इस जीवन को जिएंगे उतना ही मज़ा आएगा। और देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो बस धारा में बहते जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप खुद ही कहने लगेंगे कि चलती का नाम ही तो गाड़ी है। गाड़ी थम जाने पर जिस तरह से बेकाम हो जाती है, ठीक उसी तरह से ज़िंदगी भी है। चलती रहे तो फिर सब कुछ अपना, और जो थम गई तो फिर हर पल बस सपना।
1: अरे बम बम कक।

0: श्रोताओ, जितना मस्ती भरा ये गीत है ना, उतना ही मस्ती भरा जीवन आपको अपना जीना है। और इसके साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतमालिका अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
4: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

0: के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकाली हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के

लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरीब बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बायबाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: कल सुबह सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इदाराजाती बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सी उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं। अरकान कानून साज असेंबली हैं कांग्रेस के 5, जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम नेज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: आज टीवी के पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था, हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के

0: ये मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनुष्यात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवात की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी पांच बच्चों को मनुष्यात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनुष्यात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनुष्यात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जबकि मुनशियात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये मौशरे माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नज़र कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दो दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफिन तक पहुंचा दिए गए। ये आकाशवाणी है। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकत दारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 5वीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के उसूल का एआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्मे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की

शहर की सूरतहाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। यह आला सतही जायजा फाल हुकुमरानी, शहरियों पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेशगी वार्निंग निज़ाम, वसाइल की फरोख और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि उसे एक माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट सीजनिंग और फाइनेंसिंग समिट के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकाती एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निमटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें एक माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नज़र एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज़ शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम, सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक़वामी सेहत हुकाम के तआवुन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में ज़मीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया ज़मीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ज़मीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ, मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजव्वज़ा अराजी की पैमाइश के इकदाम क़िता अराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्ज़ों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी, सफाई और बाज़ाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की ज़मीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान यह फैसला किया गया। जस्टिस GS कुलकर्णी और अद्वैत सेठना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी मनसूबाबंदी की इंतहाई नाकिस पेशरफ्त पर तनकीद की और कहा कि यह कानून 5 दहाइयों से ज्यादा नाफिजुल अमल है। ख्वातीन के कौमी कमीशन NCW ने संगीन जंसी जराइम के मामलों में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई, सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमीन के लिए मौजूदा पैरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 में ख्वातीन के रिकर्व इनफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंग यू जू को सीधे सेटों में 0-6 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ एक जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की किम जियोंग से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले BJP के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। TVK के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मनुष्यात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: करंट अफेयर्स। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम करंट अफेयर्स। आई एम टीना झा। टुडे वी बी टॉकिंग अबाउट सोमनाथ, भारत्स इनविंसिबल स्पिरिट। To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padmashree Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. तो पहला सवाल हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी से। पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है।
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी है, बरसों से है, आज से नहीं, और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं। उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है। बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया। कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
2: जी,
1: 5,000 साल पहले का है। 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया। सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर्, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी। मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ईस्वी सन 1400, तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनर्निर्माण किया। ये सोमनाथ की बात है
2: जी।
1: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए। एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमारपाल ने किया, भीमदेव ने किया, पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया, महिपाल देव ने किया। एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों, शैव दोनों मिलकर किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो महारानी अहिल्याबाई ने भी किया, इस परंपरा की कड़ी में सरदार वल्लभ भाई आए। 1947 के नवंबर में जब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की घोषणा हुई थी नवाब के द्वारा, उसके खिलाफ आरजी हुकूमत हुई थी और आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ को मुक्ति दिलाई, तब उसी दिन सरदार वल्लभ भाई जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में उन्होंने बड़ी सभा की और बाद में वो वहां से, दिवाली का दिन था, वो सोमनाथ गए, उनके साथ महाराजा जामनाथ

0: फर्स्ट एवर टाइम.
1: राइट
0: सो यू नो कल्चर एंड सिविलाइजेशन स्ट्रैडल सो मेनी डिफरेंट सेक्टर्स. इट्स नॉट जस्ट फेथ और रिलीजन, इट्स फूड, यू नो, इट्स आर लैंग्वेज, इट्स आर प्रैक्टिसेस, इट्स आर लाइफस्टाइल. सो इट्स अक्रॉस सेक्टर्स.
1: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
0: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians, as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much, and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength, and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years, and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
1: थैंक यू मैम, इट्स बीन वंडरफुल हियरिंग योर इनसाइट्स ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाएं, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें.
2: अग्रताक्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात. दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज,
1: जी
2: ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात. तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब वो कर सकते हैं. हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए. फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतिकरण हो, तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूं तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए.
1: जी
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए. ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है. तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5,000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है. साहब सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, 4 सभ्यताएं सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए. और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और खास करके युवा वर्ग के लिए ज़रूरी है कि हम इस जगह के बारे में जानें कि इसने इस देश को क्या दिया है और आज

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने श्री रामकृष्ण वर्मा के राजस्थानी गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे श्री कैलाश पात्रा का वायलिन पर बजाया गया राग जो कौंस।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुना श्री कैलाश पात्रा का वायलिन पर बजाया गया राग जोग कॉन्स। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े।

0: participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan in Somnath. Speaking to media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं और अब समय हो चला है आपके मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिवादन कार्यक्रम फिल्म संगीत में, जिसे लेकर आज मैं हूँ आपके साथ सविता। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी को यही जो गीतों की नगमे हैं ये लेकर आई हूँ और आप सभी के साथ इन सबको बांटूंगी। और जैसे कि अगर बात करें फिल्मी गीतों की और गीतों में भी ऐसे गीतों की जिनका कभी कभार फिल्म में होना तो है लेकिन वो फिल्म की कहानी से कहीं पर भी जुड़े नहीं होते हैं, यानी कि वो जो कहलाते हैं गीत, ये गीत कहलाते हैं आइटम सॉन्ग्स, यानी कि वो ऐसे गीत जो फिल्म में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं और इन गीतों की अलग ही धुन होती है और कभी ये गीत पूरी फिल्म से भी ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं, यानी जितनी फिल्म को पसंद किया जाता है उससे भी कहीं ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है उसका वो आइटम सॉन्ग या वो एक ऐसा गीत जिसका फिल्म से कोई वास्ता नहीं है, उसमें हीरो हीरोइन का कोई भी रोल नहीं है लेकिन जिस भी अदाकार या अदाकारा पर वो फिल्माया गया है उसने उसे एक नई ऊंचाई दी है। कुछ ऐसे ही गीत आज आपके लिए पेश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं 90 के दशक का एक ऐसा गीत जिसने एक बार फिर से आइटम सॉन्ग्स को फिल्मी फलक पर उतार दिया था और ये गीत था रेमो फर्नांडिस की आवाज में फिल्म बॉम्बे का गीत।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सही गीत फिल्म बॉम्बे का, जो कि साल 1995 में आई, और गीत हम्मा हम्मा के बारे में बात करें तो इस गीत ने एक बार फिर से रिमिक्स कल्चर का ट्रेंड शुरू कर दिया था। और कहा यह जाता है कि इसके रिदम और बीट्स इतनी खूबसूरत थी कि सभी को बेहिसाब पसंद आए, और ये फ्यूजन का बड़ा अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। AR रहमान की भी आवाज़ इस गीत में हो, उनके संगीत ने तो बस इस गीत को कुछ और ही बना दिया, शानदार गीत बना दिया। रेमो फर्नांडिस की आवाज़ थी। और बात करें अगर इस गीत को किस पर फिल्माया गया, तो आप जानते हैं कि गीत फिल्माया गया था सोनाली बेंद्रे के बारे ऊपर, और सोनाली बेंद्रे वही अभिनेत्री जिन्होंने बड़ी स्क्रीन पर कई अच्छी और हिट फिल्में दी, अपने किरदारों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन सोनाली बेंद्रे के लिए ये एक डेब्यू सॉन्ग था, और इस गीत से ही वो स्क्रीन पर एक बड़ा अपीयरेंस लेकर आई। और इस गीत में वो सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए आई थी, क्योंकि पूरी फिल्म बॉम्बे में उनका कोई किरदार नहीं था, लेकिन इस गीत ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। तो चलिए, कुछ ऐसे ही आइकॉनिक सॉन्ग्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनका फिल्म से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये गीत अपने आप में बेहद खास हैं, और इन गीतों को जब भी आप सुनते हैं तो उस फिल्म की याद आ जाती है। लेकिन फिर भी उस फिल्म में वो गीत है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई किरदार उस फिल्म का नहीं है। बिल्कुल अलग अलग किरदारों पर फिल्माए गए ये गीत आज भी बेहद सुपरहिट हैं। तो एक ऐसा ही गीत आप सभी के लिए अगला आ रहा है, ये है अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाज़ों में।

0: जी हाँ, ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म में किसी तरह से भी अगर कहें तो कुछ फिल्म के साथ नाता नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत चर्चित रहा और इस गीत को सभी ने पसंद किया गया। अगर बात की जाए इस गीत की तो ये गीत एक मेले के सेलिब्रेशन पर पिक्चराइज किया गया है और फिल्म में देखेंगे आप तो इस गीत के बाद स्थितियाँ कुछ अलग बदल जाती हैं। और इस फिल्म में ममता कुलकर्णी का कोई किरदार नहीं था, वो सिर्फ इस डांस नंबर के लिए स्पेशली इस फिल्म में अपीयरेंस दी थी उन्होंने। और इसी तरह के गीतों को आज हम लेकर आए हैं तो एक और गीत की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा गीत जो कि एक आइकॉनिक गीत बन गया और वाकई बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया गया, उतनी ही खूबसूरती से इसे फिल्माया गया और जिस अभिनेत्री पर ये फिल्माया गया है वो अभिनेत्री भी अपने आप में वाकई गजब है।
1: ખૂબ ખૂબ આભાર આપણા ગુજરાતમાં હાલોલ અને એની આગળ બહુ જ નામનું ગામ છે ત્યાં મજૂર વર્ગ બહુ છે તો મને એક ગીતની ફરમાઈશ કરી હતી અને ત્યાં કઈક થાકીને લોકો સાંજે મોજું કરતા હોય ત્યારે કઈક

बहुत ही खूबसूरत गुजराती टच के साथ ये गीत आवाज़ भूमि त्रिवेदी की और गीत फिल्माया गया प्रियंका चोपड़ा पर। और वाकई फिल्म रामलीला में इस गीत का कोई जो है वो ओर छोर नहीं था, लेकिन ये गीत एंटरटेनमेंट के लिए बना और वाकई बहुत हिट भी रहा। अगले हिट गीत की तरफ चलेंगे, लेकिन हिट तो आप और हम हैं। जी हाँ, आपके और हमारी जोड़ी भी तो हिट है, तभी तो आपके जो इतने सारे संदेश हम तक पहुँचते हैं और इन्हें कार्यक्रम में शामिल करने का वक्त भी हो चला है। चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले जो संदेश हम ले रहे हैं, ये संदेश हमें मिला है नंद किशोर घटे का, जो कि हमें बीड शहर महाराष्ट्र से संदेश भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत पसंद आ रहा है इन कार्यक्रम। इन्होंने लिखा है नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगला संदेश हम तक पहुंच रहा है, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं मैसोल सीतामढ़ी से। लिखने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कोआथ बिहार से है शेख जफर हसन और नरगिस जफर, ये सभी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इन्हें कार्यक्रम पसंद भी आ रहा है। हरिंदर छिंदा जी का भी हमारे पास ये संदेशा मिला है, जो कि गांव नथाना पंजाब से हमें लिख रहे हैं। इनके साथ है जसवीर जस्सी और सीता और गीता। संदेश के साथ है सतीश अनेजा जी जुड़े हुए हैं, इनके साथ है बिमला अनेजा जी, जो कि हमें चंडीगढ़ सिटी से संदेशा भेज रहे हैं और कह रहे हैं सविता बहन को प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आप हमारे साथ ऐसे बने रहते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। जैसे कि आज हम गीत भी कुछ ऐसे ही लेकर आए हैं जिनका फिल्मों से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन उस फिल्म में इस गीत के होने से एक अलग ही जान आ गई है। तो ऐसे ही गीतों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। संदेश हमें मिला है ये नेपा नगर मध्य प्रदेश से मिला है, पद्मा टॉकीज, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का एक कह रहे कि कार्यक्रम हमें पसंद आ रहा है, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम को। तो संदेश के साथ जुड़े हुए कह रहे हैं कि आपके अंदाज में जो आप फिल्में और जो गीत लेकर आते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। लिखने वाले हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से, जिन्होंने हमें मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से संदेशा भेजा है। राजकुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से लिखकर भेज रहे हैं मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू, और कह रहे हैं हमें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि जो आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से अनवर अली आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजकुमार डूडी भी अपने पूरे परिवार के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें गाँव फरासी हिसार से लिखकर भेजते हैं। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और कह रहे हैं कि किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिए, कार्यक्रम हमें पसंद आ रहा है। मेरठ कैंट से हमारे पास संदेश आया है, लिखकर भेजने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गोड, और कह रहे हैं कि आपकी आवाज हमें बहुत मीठी लग रही है और गीत हमें पसंद आ रहे हैं। संदेश के साथ जुड़े हुए हैं ये हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो संदेश के साथ ये पूरा फूल वाले परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमें मुंबई सिटी से लिखकर भेज रहे हैं। अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ, आरजू जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले और कापस हिड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से लिखकर भेजा है। बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और कार्यक्रम को सुन रहा है। संदेश हमारे पास ये आया है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबे पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। किशन सपकाल जी भी अपने पूरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें शास्त्री नगर बीड शहर से संदेशा भेज रहे हैं। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये संदेश हमें मिला है मजनू काटेला से, कमल बालूजा, मधु सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। अमर ये है आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य, जो कि हमें गंज डुंडवारा से संदेशा भेज रहे हैं।

संदेशे के साथ जुड़े हुए मुकेश बत्ता जी, जो कि हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ये कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमें संदेशा भेजते हैं। और पूरा जो बत्ता परिवार है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हार्दिक बत्ता, इनके साथ है वंश बत्ता और नीलम बत्ता जी। संदेशे के साथ ये रश्मि झरना और भरत कुमार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा ही ये हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और पसंद करते हैं। ये राजकोट गुजरात से हमें संदेशा भेजने कह रहे हैं कि सविता दीदी आपका हार्दिक स्वागत है, आज आप कुछ अलग ही अंदाज में फिल्म सॉन्ग सुनवाने जा रही हैं, जो सॉन्ग के कारणों से फिल्म हिट हुई है। जी बिल्कुल, और कई कई फिल्में इतनी हिट नहीं हुई लेकिन उनके ये गीत बहुत हिट रहे हैं। तो चलिए, अब हमारे पास ये जो संदेश आया है, ये संदेशा वड़िंगखेड़ा पंजाब से आया है, मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का संदेश के साथ है। ये है पूरा गाव्या मल्होत्रा परिवार, इसके साथ है हमारे साथ पूरा गफ्फार परिवार, अनिल वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, जो कि सदर बाजार कुरावली से हमें संदेशा भेज रहे हैं। संदेश के साथ हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। संदेशा हमारे पास मिला है आयुष यादव का और अनिल भागवत चैनवती शाहदरा, और इन्होंने शाहदरा से हमें संदेशा भेजा है। इसके अलावा हमारे पास संदेशा आया है अनिल चैनवती, श्रद्धा, आयुष, गौरी और ये सब हमें संदेशा सिहुनी से लिखकर भेज रहे हैं। संदेशे के साथ पूरा नारायण खर्चे परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे कार्यक्रम को हमेशा सुनता है। ये हमें एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से संदेशा भेज रहे हैं नारायण खर्चे, और ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और समस्त खर्चे परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदेशे के साथ प्रकाश वर्मा जी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आपको प्रेम नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। दुर्गेश नागपुरे, राधे राधे श्याम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गुरमीत सिंह मीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदेशे के साथ जुड़े हुए हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांशा और सूरज कुमार ढाकसे, जो कि हमें संदेशा भेज रहे हैं खंडवा, मध्य प्रदेश से। इसके अलावा संदेशा हमें सुखविंदर सिंह जोड़ा का मिला है, कृष्णा पार्क दिल्ली से संदेशा भेज रहे हैं, स्वीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से हमारे साथ पिंटू दीवाना के अलावा राजेंद्र सिंह ओब्राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि किसी भी गीत में बस हमारा नाम ले लीजिएगा। छोटे अंसारी जी भी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और अपनी पुरानी याद को लेकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें संभल से संदेशा भेज रहे हैं। इनके साथ हैं आलम अंसारी और असद अंसारी जी। रवि कुमार और राहुल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल, जो कि हमें अंबाला हरियाणा से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये पूरा स्वीटी दीवाना परिवार, इनका संदेशा हम पहले ले चुके हैं, इन सभी का संदेशा हमें मिला है। तो राजेंद्र जाजोरिया, उषा जाजोरिया, कृष्णा, पूजा, कोमल और आरव जाजोरिया भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाजी मसहद अली और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलावर खान, इनके साथ पूरा परिवार है ये, कि हमें दिल्ली रघुवीर नगर से संदेशा भेज रहे हैं। दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक संदेशा हमारे पास और आया है, ये संदेशा हमें लिखकर भेजा है राहुल ने और ये कह रहे हैं कि सविता दीदी बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और बिल्कुल अलग तरह की थीम लेकर आज आप कार्यक्रम में आई हैं। और राहुल जी हमें संदेशा दिल्ली से भेज रहे हैं, राहुल के साथ हैं संध्या और इनके साथ हैं इवांश, एकांक्ष और कविश, ये सभी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा परिवार कार्यक्रम को सुन रहा है, खासकर मेरे जो बड़े भाई हैं दिव्यांश, उनको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिरमेरी कुराइया और कलारी से संदेशा हमें मिला है इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, ये हमें चिरमेरी कुरासिया कलारी से संदेशा भेज रहे हैं। तो आप सभी के संदेशों को अभी फिलहाल हमने कार्यक्रम में ले लिया, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। एक और गीत ऐसा ही जिसका फिल्म से कोई नाता नहीं रहा लेकिन इस गीत ने उस फिल्म को भी हिट करवाया और इस गीत ने तो बस कुछ अलग ही रंग चमा दिया और वाकई ये गीत था भी कुछ ऐसा ही जिसने
और काफी रंग चढ़ा।

जी हाँ, अलीशा शेनॉय और शंकर महादेवन की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म बंटी और बबली से। फिल्म में इस गीत ने कुछ अलग ही जान भर दी। वैसे तो फिल्म भी बहुत खूबसूरत थी, अदाकारों ने अदाकारी बहुत खूबसूरती से निभाई, लेकिन फिल्म के अगर इस गीत की बात की जाए तो ये फिल्म का जो एक सुपरहिट सॉन्ग कहा जा सकता है, इस गीत ने एक अलग ही पहचान दिला दी। इसमें जोड़ी रही ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की, और इसी फिल्म के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी हो गई। तो चलिए, अब ये बात तो भाई उनकी पुरानी हो गई, अब नई बात ये करते हैं कि आपके संदेश कुछ और भी हमें मिल रहे हैं। अभी ये संदेश हम तक पहुंचा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल का। इनके साथ है कमला रानी, गीतिका रानी खोरवाल और भानु प्रकाश। साथ में हमारे पास और भी कुछ संदेश पहुंचे हैं। ये संदेश हमें पहुंचा है, लिखने वाले हैं, कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम बहुत पसंद आ रही है और बहुत ही प्यार से आप कार्यक्रम को पेश कर रही हैं। कह रहे हैं, प्यारी बहन, आदरणीय बहन को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सविता जी, आपको हमारा प्यार भरा आदाब, और दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहेंगे और खैरियत से रहेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी सारी दुआओं के लिए। और कह रहे, किसी भी गीत में बस हमारा नाम शामिल कर लीजिएगा, हमें कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, बिल्कुल अलग तरह के गीत आज आप लेकर आए हैं। ये लिख कर भेज रहे हैं हमें जैन मंदिर वाली गली कुरावरी से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। और हमारे पास एक और ये संदेशा आया है, ये आया है, कह रहे हैं कि भाई आज हमारे बच्चे तारुष का जन्मदिन है, प्लीज़ आप रेडियो पर एक बार उसे शुभकामनाएं दे दीजिएगा। तो तारुष को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और हमेशा स्वस्थ रखें। लिखकर भेजने वाले हैं ये जबलपुर से, इन्होंने संदेशा भेजा है हमें, लिखा है सचिन, अर्चना, तारुष और

आकांक्षा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें संदेशा भेजा और आपके साथ ही हमने आपके जो भाई हैं, आपके जो मित्र हैं, उनको भी हमने जो है कार्यक्रम में शामिल कर लिया और उनको हमने जो जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये हमें भी अच्छा लगा कि आप हमारे साथ इस कदर जुड़ते हैं कि अपने साथ किसी भी चीज़ को साझा करने की आप ये सोचते हैं कि आप अपनी चीज़ को हमारे साथ साझा करें। साझा करने की बात आती है तो साझा करते हैं हम ये एक और संदेशा जो हमें लिखकर भेजा है दुर्गेश नांगनपुरे ने, जो कि कह रहे हैं कि कार्यक्रम एक बार फिर से बता दें, बहुत पसंद आ रहा है। प्रकाश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ पलारी से हमें संदेशा भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है, बस इस कार्यक्रम को ऐसे ही चलाए रखिएगा। बस अब कार्यक्रम जो है वो अपने मुकाम पर आने ही वाला है। अब कार्यक्रम में बहुत कम समय बचा है कि आपको बहुत सारे गीत सुनाएं, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत गीत आज हम लेकर आए हैं, तो एक और गीत सुनते हैं, फिल्म फिजा का ये गीत। इस फिल्म में भी ये एक आइटम सॉन्ग था और फिल्माया गया था सुष्मिता सेन पर। आजकल ये गीत बहुत चर्चित हो रहा है।

सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने का वक्त हो चला है। और अंतिम गीत भी हमने ऐसा ही लिया है जो फिल्म में मेन हीरोइन पर ना पिक्चराइज करके, बल्कि फिल्म की जो ये गीत है, ये गीत किसी और हीरोइन पर पिक्चराइज किया गया। जो गीत अब हमको सुनवा रहे हैं ये रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया है। फिल्म मन का गीत है, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, और फिल्म में मुख्य किरदार निभाए आमिर खान और मनीषा कोइराला ने। लेकिन ये गीत जो था विशेष तौर पर आमिर खान और रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज्ड है, और गीत बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही चर्चित भी रहा। तो इसी गीत के साथ फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि। लेकिन छोड़े जा रही हूँ आपको इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय मध्य रात्रि के 12 बजने को हैं

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिलकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापड्डी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी है कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच के आदेश दिए। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार से सिफारिशें करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना ना करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत के सामने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की कांग च्योंग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिगार्ड का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

गीत दिया, संगीत दिया, वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही, क्योंकि उसके अंदर आत्मा थी संगीत की, हमारे देश की मिट्टी की। इस गीत की गूंज आज भी हमारी वादियों में वैसे ही लहराती है जैसे उन्होंने पहली बार बनाई थी। जी हाँ, उनका संगीत गीत सभी के दिलों को छू जाता है। सलील दा का बचपन असम की चाय के बगानों में बीता। वहाँ उन्होंने मजदूरों और गरीबों का संघर्ष बहुत ही करीब से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके संगीत और लेखन का आधार बने। उनके पिता डॉक्टर थे और उसके साथ साथ संगीत प्रेमी थे। घर में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत भी सुना जाता था। यहीं से सलील दा के भीतर संगीत की गहरी समझ विकसित हुई। वे बांसुरी बहुत अच्छा बजाते थे और युवावस्था में ही उन्होंने गीत लिखना शुरू कर दिया था। लीजिए उनकी फिल्म 2 बीघा ज़मीन से ये गीत सुने।

सन 1953 में निर्देशक विमल रॉय ने उन्हें फिल्म दो बीघा जमीन में संगीत देने का अवसर दिया। इस फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ और सरिल्दा हिंदी फिल्म जगत में स्थापित हो गए। इसके बाद उन्होंने मधुमति, आनंद, छाया, माया और अनेक फिल्मों में यादगार संगीत दिया। उनकी धुनों में भारतीय लोक संगीत और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का अद्भुत मेल सुनाई देता है।

एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा एक कतरा।

0: सच है क्या जिंदगी ख्वाब है।
1: साथियों, सलील चौधरी एक ऐसे कलाकार जिन्होंने 13 भाषाओं की फिल्मों में संगीत रचा। सुनने में एक चमत्कार सा लगता है, एक अविश्वसनीय बात सी लगती है, लेकिन ये सच है। 13 भाषाओं के लिए फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। इनमें 75 से अधिक हिंदी फिल्में, 41 बंगाली फिल्में, 27 मलयालम फिल्में और कुछ मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, ओडिया और असमिया फिल्में शामिल हैं। भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी संगीत प्रतिभा को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। वे एक बहुत ही कुशल संगीतकार और संगीत संयोजनकर्ता थे। इनको बहुत सारे वाद्य यंत्रों पर महारत हासिल थी। बांसुरी, पियानो, ऐसराज, बहुत सारे वाद्य यंत्र ये बजा सकते थे। यही वजह है कि उनकी गीतों में एक गहराई नज़र आती है, एक झनक सुनाई देती है, एक धमक सुनाई देती है, एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जो सुनने के बाद कई दिनों तक हमारे मन में यूं ही गूंजती रहती है और हमारा मन ऐसे ही गुदगुदाता रहता है, खिलखिलाता रहता है और झूमता रहता है। तो लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं उनकी ही एक बेहद खूबसूरत सी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, फिल्म छाया से। आवाज़ तलत महमूद की।

साथियों, सलिल चौधरी ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया था। आइए उनकी कुछ फिल्मों के को याद करते हैं और उन गीतों को याद करते हैं जो उन्होंने बनाए और जिन्हें उन्होंने अमर कर दिया। यह एक युग होता है, एक समय होता है, एक दशक होता है जिसमें इतिहास लिखे जाते हैं और वो इतिहास बार बार याद किए जाते हैं। वो इतिहास लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। और सलील चौधरी का वो दौर, उनकी वो रचनाएं इतिहास रची और उन रचनाओं को लोगों ने बार बार बार बार याद किया। और आज हम अपने कार्यक्रम शुरू के सफ़रनामा में सलील चौधरी के उन खूबसूरत यादगार सदाबहार गीतों को याद कर रहे हैं। 1953 में फिल्म आई धोबी का ज़मीन, जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया। 1954 में आई विराज बहू, 1954 में नौकरी, 1955 में अमानत, 1955 में आई फिल्म तंगवाली, 1956 में रात भोरे, ये बंगाली फिल्म थी, और 1956 में आई परिवार, 1956 में ही एक और फिल्म आई जागते रहो, आवाज़, अपराधी कौन, 1957 में ये फिल्म आई थी, और ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। आपको ये फिल्म तो याद ही होगी, एक गांव की कहानी, 1957 में आई ये फिल्म जिसने धूम मचा दी थी। और 1957 में ही फिल्म आई थी गौतम बुद्ध, लाल बत्ती, मुसाफिर, जमाना, हीरा मोती फिल्म 1959 में आई थी, नदी 1959 में आई थी, और जवाहर फिल्म 1960 में आई थी। एक के बाद एक खूबसूरत, बेहतरीन, लाजवाब संगीत से उन्होंने गीतों को

निखारा, संवारा और एक से बढ़कर एक उदाहरण उन्होंने स्थापित किए। परख फिल्म आई थी सन 1960 में, जिसके सभी गीतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सुहागरात 1960 में आई और उसने कहा था 1960 में आई। जी हाँ, ये फिल्म एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। आइए उनकी और फिल्मों को याद करते हैं, लेकिन उससे पहले उसने कहा था फिल्म का ये गीत आपको सुनाते हैं, जिसे आवाज़ दी है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने।

वाह क्या खूबसूरत गीत, एक साथ इतने सारे प्रयोग। आपने इस अकेले गीत में सलील चौधरी जी के सारे प्रयोगों को सुन लिया। जी हाँ, क्योंकि वो एक साथ एक ही चीज़ पर काम नहीं कर रहे थे। 1960 में उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी गीत दिए और उसी दौर में वे बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु में भी वो गीत दे रहे थे, तो उसकी झलक भी उनके गीतों में सुनाई देती थी। पॉज, चुप्पी, झिंगूर की आवाज, बगानों में आवाज की गूंज और न जाने क्या क्या। आपने इसी गीत में सुना वेस्टर्न म्यूजिक और भारतीय शास्त्रीय संगीत का अद्भुत मिलन, यही उनकी विशेषता थी। और जब हम 1960 के दौर की बात कर रहे हैं साथियों, तो उसी दौर में एक और फिल्म आई थी जिसके गीत ने धूम मचा दिया था, लोगों की आत्मा को हिला दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1961 में आई फिल्म काबुलीवाला की। इसका हर गीत लोगों की दिलों को छूता है, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो विदेशों में जाकर बसते हैं और जब वहाँ बैठकर वो अपने देश को याद करते हैं। और वो कैसे याद करते हैं, वो जब आप इस गीत को सुनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे एक दर्द, एक प्यार, एक स्नेह का भाव बिना कहे ही सहज ही अभिव्यक्त हो जाता है। तो आइए फिल्म काबुलीवाला का ये गीत आपको सुनाते हैं। आवाज़ मन्ना डे ने दिया है।

सलील चौधरी का हर अंदाज इतना खूबसूरत था जिसे सुनने के बाद हम एहसासों की गहराइयों में चले जाते हैं। जी हाँ, अब अगला गीत आपके लिए हम लाए हैं फिल्म परख से, क्योंकि बात हम कर रहे हैं सन 1960 की, और 1960 की ही एक फिल्म आई परख। इस फिल्म में सलील चौधरी ने जो गीत दिए वो प्रयोगों का मिश्रण है। जी हाँ, बात कहने से तो आपको उतना महसूस नहीं हो पाएगी या अनुभव आप नहीं कर पाएंगे जिसे जितना कि आप सुनकर महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, उस गहराई को आप महसूस कर पाएंगे। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सलील चौधरी केवल शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि वो पाश्चात्य संगीत का फ्यूज़न भी अपने गीतों में किया करते थे। तो फिल्म परख का एक गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं। लता मंगेशकर की ये आवाज़ है, और इस गीत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बारिश की बूंदों की छनक सुनाई देती है, छमछम सुनाई देती है, और जब बारिश आती है तो ये गीत सहज ही अपने दिलों में गूंजने लगता है। भावनाओं का एक समंदर है ये गीत। जी हाँ, और वैसे तो वो बहुत सारे चीज़ों को का मिश्रण अपने गीतों में प्रस्तुत करते थे। उनका कोई भी गीत एक विशेष राग पर आधारित नहीं होता था, वो राग के साथ साथ उसमें और भी शैलियाँ वो मिश्रित कर देते थे। लेकिन ये गीत मुख्य रूप से वृंदावनी सारंग पर आधारित है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने और भी फ्यूजन्स जैसे लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और ऑर्केस्ट्रा इसका मिश्रण इस गीत में किया है। आइए हम भी भीगते हैं इस गीत के भावनाओं में और सुनते हैं 1960 में आई परख फिल्म का ये गीत।

वाह क्या गीत है। बस मन करता है कि सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। हर शब्द इतना गहरा है कि उसकी गहराइयों में उतरते चले जाएं। सलिल चौधरी को भारतीय संगीत जगत में उनकी योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए थे। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। उनकी फिल्मों और संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। फिल्म मधुमति और आनंद के संगीत को आज भी भारतीय सिनेमा के श्रेष्ठ संगीत में गिना जाता है। उनकी रचनाओं ने भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयां दी। जी हाँ, सलिल चौधरी को फिल्म फेयर अवार्ड संगीत के लिए दिया गया, फिल्म मधुमति के लिए, और नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन उन्हें मिला मलयालम फिल्म संगीत के लिए। बंगाली, हिंदी और मलयालम संगीत में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें अनेकों राज्य सम्मान भी प्राप्त हुए थे। आइए उनकी एक फिल्म जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका एक बेहद ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म है रजनीगंधा।

साथियों, आपने कैमरे में फोटो को कैद करते हुए देखा होगा, कागज़ पे समय को लिखते हुए देखा होगा, लेकिन पूरे दिन के हर पहर में एक खास तरीके का मनोभाव होता है। शाम के वक्त गोधली का जब समय होता है, यानी जब आप दिन भर काम करके थकान में भरे हुए, दिन भर की बातों से, दिन भर के काम से उलझनों में उलझे हुए, सुलझन को सुलझाते हुए जब घर वापस आ रहे होते हैं, उस समय जो आपके मन की स्थिति होती है, मन का जो ऊहापोह होता है, उसको संगीत के माध्यम से चित्रांकित कर देना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। और सलील चौधरी ने अपने गीतों में ऐसा ही असंभव से कार्य ऐसे ही असंभव से कार्य कर दिखाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं की फिल्म 1971 में आई आनंद की। जी हाँ, उनका एक गीत है जिसमें उन्होंने इस पल को, इस क्षण को, इस ऊहापोह को, इस उलझन को अपने संगीत में जीवंत कर दिया है। और आप जब इसको सुनेंगे तब आपको भी उस समय का अनुभव होने लगेगा, जबकि इस एहसास को हम अपने मुख से, अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर पाते हैं, पर सलील चौधरी ने ऐसा कर दिखाया है। एकांत, पॉज, ये सब कुछ सलील चौधरी के संगीतों में उपस्थित है। आइए उन्हीं की इस फिल्म आनंद का गीत हम सुनते हैं और उसे महसूस करते हैं।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

सलील दा का विवाह सबिता चौधरी से हुआ, जो स्वयं भी एक प्रसिद्ध गायिका थी। दोनों ने मिलकर कई यादगार गीत प्रस्तुत किए। साथियों, 5 सितंबर 1995 को भारतीय संगीत जगत का ये महान सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया, लेकिन सलील चौधरी का संगीत आज भी अमर है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आइए आज के कार्यक्रम का ये गीत सुनते हैं और इसी के साथ आज का शुरू का सफरनामा भी यही होता है संपन्न। हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में हम सलील चौधरी जी जैसे और भी कई कलाकारों की जीवन से संबंधित बातें आपके लिए लेकर आएंगे और सलील चौधरी को यूं ही याद करते रहेंगे। आइए इस गीत को सुनते हैं। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनल ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की। इस बीच डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिरकर से राज्य में नई सरकार के गठन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आग्रह किया है। श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और निर्वाचित विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और भारत गुयाना के स्वास्थ्य संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। कैरेबियन देशों की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर फ्रैंक एंथोनी से मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूजो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी इन द स्टेट इलेक्टेड हिम द लीडर इन अ मीटिंग हेल्ड इन कोलकाता यस्टरडे, पेविंग द वे फॉर हिम टू बिकम द फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। Addressing the media, you

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 1:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद महल का ये गीत, आवाज येसुदास की।

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म आनंद में, और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मधुमति से।

0: इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध

0: एडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच की शिकायत की है। इस बीच मुन्नारकुड़ी से अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के विधायक एस कामराज के लापता होने और उनके वापस चेन्नई लौटने की खबरों से सियासी सरगर्मी तेज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने वाला पत्र फर्जी था। उन्होंने यह भी कहा कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एडापाडी पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जाँच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक जारी रहेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस मार्ग तथा लेबनान की संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वाज आल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकंड नेम वाज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. इन

0: अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। और लीजिए अब सुनिए समाचार। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी

0: विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थ के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में नियमित प्रवासन मार्गों के विस्तार और विविधीकरण तथा भारत में प्रवासन संबंधी वैश्विक समझौतों के कार्यान्वयन की प्रति भारत की सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony which was to take place today will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government as he again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has majority numbers. The Indian Union Muslim League, headed by Professor Khadir Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to Tamiraga Vetriga Karagam. Meanwhile, the missing MLA, S. Kamaraj of the AMMK from Manarkudi, has returned to Chennai, as said by Mr. T.T.V. Dhinakaran, had returned to formally launch a complaint. Interacting with the media, he said that the letter offering unconditional support to the TVK, which was in circulation in WhatsApp to the media, was forged. He also said that the letter the lone MLA Kamaraj had earlier signed was in support of Edappadi Palaniswamy to become the chief minister. He said that the forged letter will be given to the police for further investigation by Kamaraj. AMMK is in the

वाकई बहुत ही खूबसूरत एहसास है ज़िंदगी की राह में जब हम इतनी दूर चले आते हैं, इतना लंबा वक्त जो है तय करते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने के उस मोड़ पर भी वो एक छांव की तरह हो, ऐसा ही साथ हर किसी को मिले। ये तो दिल से दुआ जो होती है वो सबके लिए ही होती है। कहते हैं ना कि हम सफ़र ऐसा चुनना चाहिए कि जो सिर्फ रास्ता ना दिखाए बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने में आपका पूरा पूरा साथ निभाए। कहते हैं कि हम सफ़र वो है जो हर मोड़ पर साथ निभाता है। बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल आप सुन रहे थे, आवाज़ जग

प्रोग्राम गज़ल गीत में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल। आइए सुनते हैं अगली गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: चश्मे हवस।
1: गजल गीत का प्रोग्राम यहीं संपन्न कर रहे हैं। आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गजल मेहदी हसन की आवाज में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले कल कोलकाता में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
3: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
2: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एड्डापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि

सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रात भर ईरानी सेना के साथ हुई गोलीबारी के बाद अमरीकी सेना ने 2 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। इन हमलों में उस युद्ध विराम का सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में अमरीका अब भी प्रभावी होने का दावा करता रहा है। अमरीका युद्ध समाप्त करने, जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान की विवादित परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुने येल्ला वेंकटेश्वरा राव का मृदंगम वादन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना येल्ला वेंकट स्वरा राव का मृदंगम वादन। गायन था मदिरी मंगलम रामा चंद्रन का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानकारी लेंगे योग पवन मुक्त आसन और सेतुबंध आसन की। इसके बाद आप सुनेंगे 5:20 पर देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वर रंजनी हम आपके लिए प्रसारित करेंगे सुबह

0: 5:30 पर। 6:10 पर आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में आज का विषय है धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा। रामचरित मानस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45 पर। इसके अलावा 7:10 पर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमृता दत्ता के गाए कुछ भजन, गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानेंगे थैलेसीमिया डे के बारे में। 9:15 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम धरती आकाश मिट्टी दी महक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा सुबह 11:10 पर। सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गायन। महिला कार्यक्रम घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:10 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 1:10 पर। आज की फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा। इसके अलावा 2:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं तलत महमूद, ब्रज माधुरी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:03। कार्यक्रम बोलती कहानियां, इसका प्रसारण समय रहेगा 3:30 पर। इसके अलावा आप सुनेंगे बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो आपको मनोरंजन तो करेंगे ही, साथ में ज्ञानवर्धक भी हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कल कोलकाता में श्री शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी के को समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश

0: कामराज के समर्थन के साथ पलानी स्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। मौसम विभाग ने कल से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Suvendu Adhikari will take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. PM Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Nabin, Union ministers and chief ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier yesterday, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP legislature party. The legislature party meeting was held in Kolkata in the presence of Home Minister Amit Shah. Mr. Shah, who presided over the meeting, said that all the proposals were received in favour of Suvendu Adhikari. Following his election as BJP legislature party leader, Mr. Adhikari met West Bengal Governor R.N. Ravi and staked claim to form the first BJP-led government in the state. The BJP registered a historic victory in assembly elections, ending TMC's 15-year rule. In Puducherry, the National Democratic Alliance chief ministerial candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailash Nathan and staked claim to form the next government. Mr. Rangasamy handed over letters of support from the majority of MLAs to the Lieutenant Governor. The Defence Research and Development Organisation and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation, TARA, weapon off the coast of Odisha on Thursday. TARA is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. Consulate General of India in Dubai has expressed grief at the death of an Indian crew of a ship who died at sea. In a social media post, the Consulate General termed the incidents as unfortunate, saying it is in touch with the owner of the ship and is ascertaining further details. The consulate assured that it will render all possible assistance in this matter on priority. The maritime confrontation in the Gulf intensified yesterday as Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed to have captured an oil tanker in a special operation in the Gulf of Oman, even as U.S. Central Command said its forces disabled 2 Iranian-flagged tankers attempting to enter Iranian ports in violation of the ongoing American naval blockade. CENTCOM Commander Admiral Bradley Cooper said U.S. forces remain committed to full enforcement of the block

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुने कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग पवनमुक्त आसन और सेतुबंधासन की।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी, जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आए, यानी नितंब के पास लेकर आए। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुल नुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाएं और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शव आसन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी

0: ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते तो आप अपनी हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतु बंद आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करे योग, रहे निरोग। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने जानकारी ली योग पवन मुक्त आसन और सेतुबंध आसन की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमिया रंजन बनर्जी का गायन राग ललित में।